संभो या संबोधन है। दो संबोधन यहां शिवजी के लिए शंकराचार्य जी ने प्रयोग किया है। पहला संबोधन है संभो और दूसरा संबोधन है पशुपति। पशुपति संबोधन में पशुपति, शंभु संबोधन में शंभो। क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचम अखिलम, अखिलम प्रपंचम, पांच का खेल, पांच वस्तु को उपादान कारण के रूप में लेकर और उसी के पंचीकरण अपंचीकरण आदि के द्वारा समस्त स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों की रचना की। अपंचीकृत पंचों से सूक्ष्म जगत की और पंचीकृत पंचों से स्थूल जगत की रचना परमात्मा ने की है, इसीलिए इस जगत का स्थूल और सूक्ष्म उभय जगत का नाम है प्रपंच। श्री जैसी अखिलम प्रपंचम श्री जैसी, आपने इसकी रचना की है, आपने इसकी सृष्टि की है, इस प्रपंच को आपने ही बनाया है। किस लिए बनाया है? बनाने का प्रयोजन क्रीडार्थम, मैं इस संसार में खेलूं क्रीडार्थम, इसलिए हमने भूमिका में कहा था स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी साधन सापेक्ष क्रीड़ा करके आनंदित हूं, ऐसी इच्छा परमात्मा की हुई, इसकी शिवजी की हुई, माया वृत्ति से ये इच्छा हुई। परमात्मा को ये जो इच्छा हुई है मैं संसार में क्रीड़ा करूं, खेल खेलूं और खेलकर आनंदित हूं, इस इच्छा के चलते प्रपंचम अखिलम सृजसी, अपने ही सृष्टि की है, खुद अपने ही इस प्रपंच को बनाया है। क्यों बनाया? खेलने के लिए बनाया। तब फिर क्रीड़ा मृगास्ते जना संसार में आपके बायक और जो भी है आपके अलावा जो है सब क्या है? क्रीड़ा मृग है। क्रीड़ा मृग अर्थात खेल के खिलौने, खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं ना उनको क्रीड़ा मृग बोलते हैं। वास्तव में बच्चे सभी के अच्छे होते हैं, बच्चे सभी के अच्छे होते हैं, इंसान को भी गधा भले ही अच्छा न लगे गधे का बच्चा बहुत आनंद देता है, उसकी चाल ढाल ही बड़ी निराली होती है, बड़ा आकर्षण होता है, मतलब भोला भाला पना दिखता है, कुत्ता भले ही पस अच्छा न लगे, कुत्ते के बच्चे बड़े आनंददायक होते हैं। किसी की भी

0: चाहे बकरे के देख लो, चाहे गाय के बछड़े देख लो, बिल्ली को देखकर व्यक्ति इतना आकर्षित नहीं होता है, बिल्ली के बच्चों को देखकर आकर्षित होते हैं। इसलिए जब मृग देखते हैं या मृग के शावक देखते हैं, मन में एक अलग प्रकार की स्फुरणा अलग भाव प्रकट होता है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम। जनाः क्रीडा मृगाः, ते क्रीडा मृगा। संसार में जितने भी जीव हैं वो सब आपके क्रीडा मृग हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, ध्यान देना, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, चाहे सरीसृप हो चाहे पक्षी हो चाहे कीट पतंग हो, ये सब आपके खिलौने हैं। इन सब से आप क्रीड़ा करते हो, खेलते हो, खेलने के प्रयोजन से आपने इनका निर्माण किया है, बनाया है, इनकी रचना की है। तो शंकराचार्य जी आके क्या कहते हैं,
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Shivaya Namah. Shaivam.org in Anbaan Neergale, Ningal Ketkavirupadu Shiva Keetanegal. Paadal Sudha Ananda Varadi Iyatriya எப்படி பாடினரோ ராகம் கர்நாடக தேவகந்தரி, பாடியவர் ஸ்மிருதி ஸ்ரீதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஹ.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाथ सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

आ अहम् अभि दुद्रोहायत वा शेपे उत अनृतम् आपाह अद्या अनु अचारिषम् रसेनासम् अगस्महि

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

मयि धेह्यक्षीतिरसि मामे इक्षेष्ठ अमुत्रामुष्मिल्लोक इह च एषा ते ए अग्ने समित्तया वर्धस्व चाचप्यायस्व वर्धिषीमहि च वयमाचप्यासिषीमहि एतत्ते ए देवसवितर्यज्ञम् प्राहुर्बृहस्पताये ब्रह्मणे तेना यज्ञमावतेना यज्ञपातिं तेन मामाव मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तानोतु अरिष्टं यज्ञज्ञसमिमं दाधातु विश्वे ए देवास इह मा आदयन्तामो।

सूर्या या ऊधो अदित्या उपस्था उरुधा आरा पृथिवी यज्ञे अस्मिन् देवा आगातु विदो गातु मित्वा गातु मीता मनासस्पत इमंदे एव यज्ञग स्वाहा वाते धाः संबर्हिरंताज्ञ हविषा आघृतेन समा आदित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः।

0: पञ्चदशोऽद्वितीयः
1: ॐ नमः शिवाय. You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: तो ये नमस्कार का प्रसंग था. भगवान शिव दक्षिणामूर्ति क्यों हुए और भगवान शिव को शिव के रूप में न मानकर दक्षिणामूर्ति के रूप में क्यों लिया गया और दक्षिणामूर्ति रूप को क्यों शंकराचार्य जी इतने महत्व देते हैं. हालांकि भगवान शिव का जो अन्य रूप है वो तो शिवानंद लहरी में सब स्पष्ट हुआ है, लेकिन शिवानंद लहरी में जो शिव का स्वरूप स्पष्ट हुआ है उससे कुछ हटकर ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में उस शिव का भिन्न रूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है. दक्षिणामूर्ति में तो सगुण साकार का प्रतिपादन किया है शिवानंद लहरी में. शिवानंद लहरी में तो सगुण साकार का भी प्रतिपादन किया है, स्वरूप वर्णन किया है, और सगुण निराकार का भी है. प्राय करके शिवानंद लहरी में सगुण साकार और सगुण निराकार दोनों स्वरूपों का प्रतिपादन करते हुए शिव भक्ति की है, लेकिन दक्षिणामूर्ति में शुद्ध निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए शिव भक्ति की गई है. आप लोग कभी प्रसंग हो शिवानंद लहरी पढ़ें, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है. बिल्कुल संवाद के रूप में, इतने विनम्रता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं शंकराचार्य जी. यहां तक कह देते हैं कि जैसे कोई बेटी अपनी मां के सामने कोई बात नहीं छुपाती, कोई दर्दी रोगी अपने डॉक्टर के सामने कोई बात नहीं छुपाता है, कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के सामने कोई बात नहीं छुपाता है, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के सामने कोई बात नहीं छुपाता है, इसी तरह भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने कोई बात नहीं छुपाते. बिल्कुल बाल लीला जैसे एक प्रेमी की तरह, एक बालक की तरह, एक बच्चे की तरह प्रस्तुत होते हुए कहते हैं संवाद के रूप में. लेकिन यहां वो चीज नहीं है, क्योंकि वहां सगुण साकार का रूप है, इसलिए उनको सगुण साकार दिख रहा है. और सगुण साकार जो दिख रहा है तो हम आपके सामने जैसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, ठीक उसी तरह संवाद कर रहे हैं. एक बार की बात है, शिवानंद लहरी का थोड़ा सा संकेत कर दूं. एक समय की बात है, भगवान शंकराचार्य जी को भगवान शिव का किरात रूप दिखाई पड़ा. किरात रूप का अर्थ है हाथ में धनुष बाण लेकर जंगल में आखेट के लिए, शिकार के लिए निकलने का रूप, जो किरात रूप है, भील, कोल, किरात है न? तो वो रूप दिखाई पड़ा. भगवान शंकराचार्य जी ने पूछ लिया शिव जी से कि महाराज किधर जा रहे हो. भगवान शिव ने कहा कि जंगल में जा रहे हैं, कुछ शिकार खेलेंगे. बोले महाराज आपको शिकारी खेलनी है, धनुष्बाण है, तो आप ईमानदारी से बताओ कैसे पशु चाहते हो, सीधे साधे निरीह निर्दोष शुद्ध शांत ऐसे पशु को मारना चाहते हो कि कुछ बदमाश टाइप के उद्दंड टाइप के पशु को मारना चाहते हो। भगवान शंकराचार्य शिव जी तो असमंजस हो गए, क्या प्रश्न किया तुमने ऐसा, सामने जो पशु आ जाए उसको मारेंगे, हमारा प्रयोजन है? नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं, वो सीधे साधे पशु को मारकर क्या फायदा हुआ आपको, दो चार कुछ खाने के लिए मांस मिल जाएगा इतना ही ना है, तो उस प्रयोजन के साथ साथ और भी प्रयोजन सिद्ध हो जावे ऐसा पशु मारो। तो क्या बोले, जो पशु उद्दंड हैं उच्छृंखल हैं अमर्यादित हैं अनियंत्रित हैं सारे जंगल में अशांति मचा रहे हो, तो ऐसे पशु को मारोगे तो खाने के लिए मांस भी मिल जाएगा, जंगल में शांति भी हो जाएगी, और क्या, दो फायदा, एक तीर से दो फायदा हो जाएगा, एक पंथ दो काज बोलते हैं, एक रास्ते में चलो तो दो काम करते हुए चलो। तो बोले वो कहां मिलेगा, बोले आपको हम बता देंगे, ये जो मेरा मन नामक बंदर है वो बड़ा उच्छृंखल है, देखो इतने घुमाकर शंकराचार्य जी ने कहा ओपन में, ये मेरा मन नामक बंदर है इतना उच्छृंखल है इतना उद्दंड है कि जैसे सामान्य बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ उछलते कूदते हैं, इसी तरह ये मन नामक बंदर एक विषय से दूसरा विषय, दूसरे विषय से तीसरे विषय, तीसरे विषय से चौथे विषय, कभी भी शांति से ये नहीं बैठता। और जैसे जंगल में अशांत उद्दंड पशुओं का साम्राज्य हो तो वहां कौन बैठकर शांति से भजन करेगा, भाई भजन कर पाएगा वो? तो हमें ये समस्या है, और आप क्योंकि शिकारी हो हाथ में धनुष्बाण ले चुके हो तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप इस मन बंदर को अपना बाण का लक्ष्य बनाओ, और इससे दो प्रयोजन हो जाएगा आपको, एक तो आखेट शिकार खेलने का आनंद भी मिल जाएगा, हमको इधर शांति भी मिल जाएगी, वही परेशान कर रहा है, ये सगुण साकार का स्वरूप है। इस तरह भगवान शंकराचार्य जी शंकर भगवान शिव से सगुण साकार के रूप में प्रस्तुत होते हैं, ऐसे अनेक अनेक श्लोक हैं शिवानंद लहरी में, सौ सौ श्लोक हैं, लेकिन वहां पर निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन कम किया है। अति मंद बुद्धि वालों को भगवान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए सगुण साकार स्वरूप का प्रतिपादन करके शिव भक्ति में निष्ठा बने, परमात्मा में निष्ठा बने, इसके लिए अति मंद बुद्धि वालों के लिए सगुण साकार भक्ति के रूप में प्रस्तुत हुए, और उसमें उसके अलावा जो अति मंद तो नहीं है लेकिन कुछ मंद हैं, मंद के भी ये अलग अलग कैटेगरी हैं, स्टेज है, एक बिल्कुल अति मंद, दूसरा मंद, जो मंद अधिकारी हैं जो कि गूढ़ रहस्य का वो समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सगुण निर्गुण निराकार भक्ति, भक्ति के माध्यम से उस तत्व को समझाया। तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र निर्गुण निराकार शिव स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए, शिव भक्ति में निष्ठा रखते हुए शिवाद्वैतवाद को प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है, प्रकरण है, उसी को आधार बनाते हुए विचार करेंगे। हम प्रसंग उठा रहे थे कि दक्षिणामूर्ति पर इतना शंकराचार्य जी की निष्ठा क्यों है, तो पुराण में उपनिषद में ये प्रसंग आता है, विशेष करके छांदोग्य उपनिषद का ही प्रसंग है। एक समय की बात है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के संकल्प से चार सनत कुमार की उत्पत्ति हुई, चार आचार्यों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वह शुद्ध संकल्प से उत्पन्न हुए थे, परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए थे, वह कर्मज नहीं थे। जैसे आप और हम किसी के संकल्प से उत्पन्न नहीं हुए हैं, हम कर्मज हैं, अपने ही कर्म के माध्यम से, कर्म के प्रेरणा से हम पैदा हुए हैं। और आप कह सकते हो कि हमारे माता पिता के संकल्प से हम पैदा हुए हैं, बिल्कुल शत प्रतिशत गलत है। ये तो हम पैदा हो गए, उन्होंने पैदा करने की योजना से पैदा नहीं किया है, और विशेष करके आज तो यही समस्या है। नहीं तो हमारा वैदिक सनातन धर्म तो ये कहता था पहले, संतति को जन्म देने के लिए भी पहले प्रिपेयर्ड होकर, प्लान होकर तब संतति को जन्म दो। उसके लिए गर्भाधान संस्कार का विधान है। अब आज गर्भाधान संस्कार का विधि को कौन पालन करता है, किसी को पता ही नहीं है क्या है गर्भाधान। उसकी एक विधि है, उसकी प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि आज के शत प्रतिशत, सौ में से सौ गृहस्थी ये गर्भाधान विधि को जानते नहीं है, और जब जानते ही नहीं है तो उसको मानना या उसका पालन करने की तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं है। कितनी शुद्ध विधि है वैदिक सनातन धर्म, तभी जाकर संतति जो है माता पिता के अनुकूल होते थे। तो आज कोई प्री प्लान तो है ही नहीं, विवाह करना है किस प्रयोजन से, गर्भाधान किस प्रयोजन से, पुंसमन किस प्रयोजन से, ये सारी चीज आज कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों जो पहले पुंसमन करते थे छह महीने में, पिछली बार हम अमेरिका में गए तो वहां क्या बेबी शावर करने लगे, क्या है भाई ये, तो नौ महीने के बाद, आठ महीने के बाद बेबी शावर, तो कुछ नहीं ले, सब फूल लेके गए वो हाई

तो वैदिक सनातन धर्म सनत कुमार जो है केवल शुद्ध परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वह कर्मज नहीं थे। तो हम अपने माता पिता के संकल्प से भी उत्पन्न हुए, हम तो अपने कर्म से उत्पन्न हुए हैं और जीवन भर कर्म का फल भोगना है। कर्म समाप्त होने के बाद जाना है, फिर कर्म रहेगा तो कर्म भोगने के लिए फिर आएंगे, कर्म भोगेंगे, कर्म समाप्त होगा जाएंगे। तो सनत कुमार नित्य निरंतर वेदांत चिंतन करते हुए विरक्त होकर प्रवृत्ति धर्म का पालन करते हुए विचरण करते थे। चांदक उपनिषद का प्रसंग जोड़ो यहां, उसी से दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का संबंध है। तो एक समय की बात है कि नारद जी घूमते हुए पहुंचे, वहां सत्संग चल रहा था। तीन भाई श्रोता के रूप में बैठे हैं, एक भाई वक्ता के रूप में बैठे हैं, दूसरे दिन दूसरा भाई वक्ता बन रहा है, तीन भाई श्रोता बनते, तीसरे दिन तीसरा भाई वक्ता बनता है, तीन भाई श्रोता बन, चौथे दिन चौथा भाई वक्ता बनता है, तीन भाई श्रोता बनते हैं क्रम से, क्योंकि ये चारों के चारों ज्ञान गुण में कोई कमी नहीं थे, चारों के चारों परिपूर्ण थे, विद्वान थे, सत्संगी थे, चारों के चारों निवृत्त मार्गी थे, ऊर्ध्वरेतक थे, परिव्राजक थे। नारद जी पहुंच गए, उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत सुंदर सत्संग करते हो, दिव्य ज्ञान की चर्चा करते हो, और उम्र से देखने में ऐसा लगता है कि आप बहुत छोटे हो, फिर भी ज्ञान गुण आपके बहुत दिव्य हैं, महान हैं, ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं देखा है। आपको ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है किससे प्राप्त हुआ? क्योंकि गुरु परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त, आचार्यवान पुरुषो वेदा, श्रुति का कहना है। कोई व्यक्ति जब तक आचार्यवान नहीं होता है तब तक वो चाहे कुछ भी पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर ले, वो ज्ञान नॉलेज हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता है। इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकता है और अविद्या का अज्ञान का नाशक नहीं हो सकता है, ये ध्यान देना। नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना अलग चीज है, अज्ञान का नाश करना अलग चीज है। वो इन्फॉर्मेशन अज्ञान का नाशक नहीं होगा, वो जानकारी मूला विद्या का नाशक नहीं होगा, क्योंकि तुला विद्या तो अनंत अनंत है और आपकी इन्फॉर्मेशन अनंत अनंत है। तो कौन ज्ञान कितने अज्ञान को नाश करेगा? तुला अज्ञान कभी भी नाश नहीं कर पाएगा। तो आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्यादेव विद्या विधिष्ठा प्रातिष्ठति, आचार्य के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही वह प्रतिष्ठित होता है। तो गुरु करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो गुरु तो करना ही पड़ेगा। तो नारद जी ने पूछ लिया सनत कुमारों से कि आपके गुरु कौन है, आपकी परंपरा क्या है, ब्रह्म विद्या की परंपरा क्या है? सनत कुमारों ने कहा कि हम तो जन्मना ज्ञानी हैं, हमको गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे सनत कुमार आजकल भी बहुत जगह घूमते हैं, गुरु तो बनने की उनको बहुत शौक है, गुरु बनाना उनके लिए लज्जास्पद हो जाता है। तो पूछो कि तुम्हारे गुरु कौन है, बोले कौन किसका गुरु, हम स्वयं गुरु। तो वो अपने से कोई अन्य को गुरु मानना उनके लिए हीनता बोध होता है, हम स्वयं गुरु, हम स्वयं ज्ञानी इत्यादि। तो सनत कुमारों ने भी यही जवाब दिया, हमारे कोई गुरु गुरु नहीं है, हम ये ज्ञान तो हमको जन्मना प्राप्त हुआ है। तब नारद जी ने कहा कि देखो शास्त्र विधि है, कोई भी चीज हो शास्त्र विधि से प्राप्त करना चाहिए, गीता में तो कहा ही है ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार न तो सिद्धि समाप्त होती,

न सुखम न पराम गति। यदि शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हुए कोई कर्म करता है तो उस कर्म से न उसका चित्त शुद्ध होगा, न वह इस लोक में सुख शांति को प्राप्त कर पाएगा, न उसको परम गति की प्राप्ति होगी। तो नारद जी ने कहा कि आपने यदि गुरु धारण नहीं किया है तो शास्त्र विधि का उल्लंघन हुआ है, और वैदिक विधि का शास्त्र विधि का जो उल्लंघन करता है वह सीधा प्रत्यवाय का भागी बनता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, इस वाक्य का क्या अर्थ, क्या कैसे संगति करोगे? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन, इसका क्या संगति करोगे? तो सनत कुमार भी विचार करने लगे, बात तो तुमने सही कही है, शास्त्र विधि का उल्लंघन हो ही रहा है, अब क्या करें? नारद जी तो चल पड़े, इतनी समझाए और चल दिए। अब सनत कुमार चारों भाई ने बैठकर विचार किया कि गुरु तो करना ही चाहिए, शास्त्र विधि तो पूरी करनी चाहिए। आज भी हमसे आकर पूछते हैं, गुरु करना कोई जरूरी है महाराज? कहते हैं, तो हम कहते हैं कि शादी करना जरूरी है, जो गुरु करना जरूरी नहीं है तो शादी करने क्या जरूरत है, बोलो है? शादी करना जरूरी है। अब तुम यदि शादी करना जरूरी है कहते हो तो हम ये कहेंगे कि गुरु करना जरूरी है। लव कर लो तो खत्म हो गया, शादी क्यों करते हो? बोले नहीं तो समाज में बदनामी होगी, शादी कर लेंगे तो प्रतिष्ठा होगी। तो हम भी ये कहते हैं कि गुरु कर लोगे तो प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा तुम कुछ क्या होगे? तो स्वच्छाचारी होगे। और राजस्थान में तो निगुरो गाली ही करते हैं, गुरु न बिना गुरु का तो निगुरो, निगुरो माने बहुत बदनाम है, बहुत बुरे अर्थ में ये शब्द प्रयोग करते हैं मारवाड़ी भाषा में। तो गुरु तो होनी ही चाहिए। सनत कुमारों ने विचार किया तो तब फिर गुरु करना चाहिए, किसको गुरु करें, किसको गुरु माने? तो अपने से छोटे को क्या गुरु मानेंगे, बड़े को गुरु मानना है। तो हमको तो पैदा किया ब्रह्मा जी ने, उन्हीं को गुरु मनाते हैं, चलते हैं उन्हीं के पास। पैदा तो तुमने संकल्प करके हमको किया, अब दीक्षा भी देकर उपकृत करो, दीक्षित करो। तो वापस चले गए, लेकिन दूर से देखा ब्रह्मा जी तो, ब्रह्मा ये न कुलालवन्यमितो ब्रह्मांड बांडोदरे, ब्रह्मा जी तो प्रपंच की रचना करने में इतनी व्यस्त हैं। वो नारद सनत कुमारों ने देखा दूर से, जीवों का लाइन लगा हुआ है, हमको शरीर दो, हमको शरीर दो, हमको शरीर दो, क्यों में है शरीर लेने के लिए? ब्रह्मा जी उनके कर्म को देखते हैं, किसी को मनुष्य का शरीर बनाए ले, थोड़ी सी गीली मिट्टी रखा और एक सांचा रखा है उन्होंने, सांचे बहुत होंगे, मिट्टी एक ही है उनके पास। तो किसी को स्त्री का शरीर चाहिए तो उसको देखा, इसको स्त्री का शरीर चाहिए तो वो सांचा लाया, मिट्टी डाला, बनाया, ले जा इसी में घुस जा। तो तुम लोग इसी में घुस गए हो। और किसी जीव आया तो उसको पुरुष का शरीर, उसके कर्म से पुरुष को शरीर प्राप्त करना है, मिट्टी वही थी, उसको दूसरा सांचा लिया, उसमें डाला और ले, तो पुरुष शरीर दे दिया, उसमें घुस गया। तो तुम लोग उसी में से, हम भी उसी में से हैं, वो तो इसी में व्यस्त है। और कोई गधे का शरीर लेना है उसको, वो सांचा लाया, वो मिट्टी डाला, गधे का शरीर दिया, ले जा। किसी को हाथी का, किसी को चींटी का, डाई कितने होंगे वो ब्रह्मा जी के पास है, सांचा कितने होंगे, बा कल्पना करो, 84 लाख। इसी में लगे हुए हैं। तो सनत कुमारों ने देखा कि इसको गुरु बनाना तो गलत है, हम बचपन से जन्मना निवृत्त मार्ग के हैं, ये प्रपंच में पड़ा हुआ है, और यदि इसको हमने गुरु मान लिया तो फिर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, शास्त्र वचन है। इसने कहा कि तू भी प्रपंच में लग जा रचना करने में, ले तो हम तो प्रपंच में फंस गए, जीवन बर्बाद हो जाएगी, तो इससे अच्छा उनके आगे जाओ ही नहीं। तो सनत कुमार गए ही नहीं, तो अब किसके पास जाए? बोले इनसे भी पिताजी, इनको भी पैदा किया जिसने।
विष्णु के पास जाते। गए विष्णु के यहां तो दूर से देखा तो विष्णु तो क्षीर सागर में शेष सैया में सोए हुए हैं, जय विजय पंखा कर रहे हैं, भूदेवी श्रीदेवी पांव दबा रही हैं और सारा अलंकार उनके शरीर में है, अलंकार प्रियो विष्णु। बड़ा दिव्य। और कहां हमको ये हमारी ये धारणा है कि स्त्री की छाया का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए साधक को, और कहां दो दो पत्नियों से वह पांव दबा के बैठा है। ले ये तो और लंपट है, स्त्री लंपट है, क्या करें। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे गुरु बनाया जा सके। योगी भोगी गुरु बना सकता है, भोगी गुरु को गुरु को भोगी को गुरु बनाओगे तो वो भोग में लगाएगा और योग मार्ग का कैसे उपदेश करेगा। इससे अच्छा उसके नजदीक ही मत जाओ। फिर चले गए कैलाश भगवान। अब किसके पास जाए, बोले इनसे भी बड़े भगवान शिवा हैं, हमने सुना है कि उन्हीं के पास चलते हैं। तो गए कैलाश, वहां तो और भी आपत्तिजनक दृश्य देखा। भगवान शिव पार्वती को वामांगे च विराजति यस्य भूधर सुता, अपने बाएं पांव में जंगा पर पर्वत पुत्री पार्वती को भूधर सुता, उसको अपने जंगा पर, यह भी नहीं कि जमीन में रखा हो, अपने जंगा पर रखा है बाएं तरफ, और बायां हाथ उनके कंधे पर ले जाकर आलिंगन कर रहे हैं। और ये दृश्य जब देखा सनत कुमार, अरे रे रे रे, ये तो ब्रह्मा से भी लंपट, विष्णु से भी, विष्णु तो पांव दबा रहा था, ये तो अपने गोद में बिठा रहा है और आलिंगन कर रहा है। और करते करते आलिंगन करते करते सनत कुमार ने देखा कि भगवान शिव तो पार्वती के आधा आधा शिव अर्धनारीश्वर हो गए। ये तो इतना आसक्त तो हो गया कि आधा जीवन ही उसका स्त्री का हो गया। लिव जी, अब इसको कैसे गुरु माने। कहां हमारा सिद्धांत तो बिल्कुल विरक्ति का, और कहां इनका सिद्धांत तो परम आसक्ति का। और जो परम आसक्त है वह विरक्ति का उपदेश क्या करेगा, अनासक्ति का उपदेश क्या करेगा, खुद ही आसक्ति में बड़ा हुआ है। तो श्रद्धा नहीं हुई है, और श्रद्धा न हो तो गुरु करना बेकार है। गुरु करने के लिए गुरु कैसा है क्या है वहां मूल्यांकन या परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वहां फलीभूत होती है। तो सनत कुमारों को श्रद्धा नहीं हुई तो क्या है? निकल पड़े। भगवान शंकर अंतर्यामी सब जानते थे, ते आए तो बहुत अच्छे गुरु खोजते हुए चल रहे हैं, लेकिन दोष के चश्मा लगाकर है तो दोष का चश्मा आंख में जब तक रहेगा वो गुण दिखेगा नहीं, दोष ही दिखता रहेगा। तो ये लोग वापस गए, कल्याण तो करना ही चाहिए, लक्ष्य इनका उत्तम है, इनके लक्ष्य अनुसार फल देना चाहिए। पार्वती को कहा कि देवी तुम बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। ये चाहते हैं कि हमसे भी बड़ा हुआ कोई होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, उसको गुरु मानना तैयार हैं ये। तो इनकी जैसी निष्ठा है वैसा ही गुरु प्राप्त हो, ये भगवान शिव की प्रेरणा हुई। तो खुद सनत कुमार तो 16 वर्ष के और भगवान शिव 6 वर्ष के, 6 वर्ष के छोटा सा बटुक बनकर वह सनत कुमारों के पीछे से दौड़ते हुए, शरीर में कुछ नहीं है, एक कॉपीन है और कंध में जनोई है, और दौड़ते हुए सनत कुमारों से आगे निकल गए। सनत कुमारों ने देखा कि ये छोटा बालक ये हमसे भी छोटा उम्र और हमसे भी विरक्त है, तो ये कौन है, देखो तो सही, बड़ा अद्भुत है। हम जिसको गुरु चाह रहे हैं, जैसा गुरु चाह रहे हैं वैसा ये है।
उसी को पकड़ो, सब दौड़े बेचारा शिष्य तो बूढ़े 16 वर्ष के बूढ़े हुए नहीं सनत कुमार, और 6 वर्ष के शिव दक्षिणामूर्ति वो तो बहुत तेज दौड़ के चले गए आगे। देखते देखते इतनी तेजी से दौड़ के निकल गए, सनत कुमार उनके नजदीक पहुंच ही नहीं पाए, तो मन ही मन दुखी हुए कि हम जैसा गुरु चाहते थे वैसा दिखाई तो पड़ा, लेकिन वो तो इतनी जल्दी से कहां गायब हो गए। थोड़े दूर के बाद रास्ते में एक बड़ वृक्ष था, वहीं भगवान शिव बैठ गए दक्षिण की तरफ मुंह करके, 6 वर्ष के बालक, और ध्यान मुद्रा में बैठे, बिल्कुल ध्यान मग्न बैठे। थोड़ी देर के बाद सनत कुमार जब पहुंचे तो जिस बालक को दौड़ते हुए देखा था वो बालक तो शांत बड़ वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठा है। देखो ऐसे घोर जंगल में कुछ नहीं है, इतना छोटा उम्र का बालक है, फिर भी क्या निश्चिंत, क्या ज्ञान, क्या शांत मुद्रा, जो हो इसी को गुरु, इससे बढ़कर हमको अब गुरु मिलने वाला नहीं है। तो बैठ गए सनत कुमार वहीं, तो ध्यान में बैठे हैं, तो बैठे रहे। तो कुछ दिनों के बाद भगवान शिव ने स्वयं हाथ उठाकर, कंधे तक अपने हाथ को लाकर, अंगूठा और तर्जनी को जोड़कर, 3 उंगलियों को सीधा करके, ये चिन्ह मुद्रा इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, इसको दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में यो भद्रया मुद्रया भद्रा मुद्रा भी बोलते हैं। 3 नाम है, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा और भद्रा मुद्रा, इसके द्वारा उपदेश किया है। जीव ब्रह्म की एकता, त्रिगुणात्मिका जगत से असंगता जीव की, ब्रह्म से जुड़ने पर जीव शांति को प्राप्त होता है, जगत से जुड़ने पर जीव अशांत होता है, बीच में जीव है जगत और ब्रह्म के बीच में, और ये ब्रह्म की तरफ झुके तो इसका कल्याण है, जगत की तरफ लागे तो इसका जन्म मृत्यु है। ये उपदेश जीव ब्रह्म के अद्वैत वेदांत का उपदेश, ये ज्ञान प्राप्त करके इसी को संकेत करके कहा, चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरोर युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। वो सनत कुमारों के भी परम गुरु भगवान शंकर, उन्हीं को दक्षिणामूर्ति शिव कहते हैं। वो 6 वर्ष का उम्र के बालक रूप है, भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं और कांप में जने हुए है, कौपीन है, बाल रूप है, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हुए, जो शिव का स्वरूप है वही गुरु मूर्ति है, वही ज्ञानदाता गुरु हैं, उनसे संबंधित ये स्तोत्र है। इस मूल स्तोत्र की प्रसंगता सुरेश्वराचार्य जी, शंकराचार्य जी के परम शिष्य सुरेश्वराचार्य जी ने इस 10 स्तोत्र में मानस उल्लास नामक वार्तिक लिखी है, व्याख्या लिखी है, उसी को आधार बनाते हुए हम ये आने वाले दिनों में 27 दिन तक, कल से 27 है ना, कल से 27 दिन तक हम इस पर विचार करेंगे। और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र आप लोगों के प्रार्थना वगैरह में भी होगी तो लेके आओ, तो साथ साथ उच्चारण करने का लाभ भी हो जाएगा और विचार करेंगे, यहां समय हो गया है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: நமஸ் சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நமஸ் சிவாய.
1: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் .org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹிந்தி ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் நாயன்மார் புராணம். தி டைட்டில் இஸ் இயற்பகை நாயனார் புராணம், பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பக்தி ஜனோ, ஆஜ் ஹம் சுனேங்கே ஔர் ஏக் நாயன்மார் ஜோ கி தக்ஷின் பாரத் கே சந்த் தே, ஜின்கா நாம் ஹே இயற்பகையார். இயற்பகையார் காவேரி பட்டினம் கே சம்பன்ன ஸ்ரேஷ்டி தே. பகவான் பர் உன்கி பிரேமாசக்தி ஔர் சம்பர்ண பாவனா அசாதாரண தி. உன்கி மான்யதா தி கி சாரி தன் சம்பதா ஔர் பரிவார் சப் ஷிவ் கா ஹி ஹே. ये वे स्वयं तथा अपनी अपनी पत्नी और बच्चों पर भी भगवान के भक्तों का अधिकार मानते थे. एक दिन उनके पास एक शिवयोगी आए और आकर बोले, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम भक्तों की हर इच्छा पूरी कर सकते हो. तुमसे कुछ मांगने की यदि मैं आशा करूं तो तुम मना तो नहीं कर दोगे? यरपगयार ने कहा, आप निसंकोच कहिए, जो भी आप चाहेंगे अवश्य मिलेगा. तब शिवयोगी बोले, मैं तुम्हारी प्रिय पत्नी की कामना करता हूँ. इयरपगयार ने एक क्षण भर भी विचार न करते हुए अपनी पत्नी को भेंट स्वरूप उन्हें दान में दे दिया. पत्नी से परामर्श करने पर पहले वो भी हक्की बक्की और चौंक गई, लेकिन पति के वचन के विरुद्ध न जाने की और उनकी पति के प्रति श्रद्धा इतनी थी कि उन्होंने उनकी बात मान ली. हिंदुस्तान या दक्षिण भारत या कहीं भी कहें तो पत्नी का स्थान पति के जीवन में सबसे उच्च माना जाता है, क्योंकि पत्नी पति के साथ पूर्ण रूप कहलाती है, वो पति की अर्धांगिनी है. इयरपगयार के इस संकल्प को सुनकर उनके सगे संबंधी उनके विरुद्ध बोल उठे, यह तो अनुचित है, यह आप कैसे दान कर सकते हैं? इस पर इयरपगयार ने कहा कि मैंने जो कह दिया कि मेरी पत्नी शिव भक्त योगी के लिए है तो वही है, आप सभी अभी जा सकते हैं. तब उनके परिवारजनों ने उन पर उस शिवयोगी पर आक्रमण कर दिया. इयरपगयार ने भी तलवार उठा ली और अपने सारे परिवारजनों को वध कर दिया. इसके बाद अपनी पत्नी और शिवयोगी को एक स्थान तक उन्होंने पहुंचा दिया और कहा, यह अभी से आपकी संपत्ति, यह अभी से आपकी हुई. यह कहकर वो मुड़ गए पीछे. तभी उनके पीछे से शिवयोगी की आवाज आई, दुहाई है इयरपगय मुनिराज, दुहाई है, आप सच में शिव के परम भक्त हैं. इयरपगय ने पलट कर देखा कि पत्नी अकेली खड़ी है, शिवयोगी का कहीं पता नहीं, और उधर साक्षात शिव नंदी पर विराजमान आकाश में दर्शन दे रहे थे. नटराज शिव ने इयरपगय की अनन्य भक्ति और शिव भक्ता पर अटूट विश्वास के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की. इयरपगय अभिभूत होकर प्रभु दर्शन करते रहे. इधर मायावश मरे हुए बंधुजन और परिवारजन पुनः जीवित हो उठे. इयरपगय का यह चरित्र आज भी रहस्यपूर्ण माना जाता है. भक्त इसका समाधान करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं. चेकिलर कहते हैं, व्यक्ति मूल्यांकन के जीवन में मानदंडों का हम प्रयोग करते हैं, उनसे इयरपगय का जांच पाना संभव नहीं. उनका नाम ही स्पष्ट करता है, इयरपगय अर्थात संसार की सहज प्रकृति के शत्रु. जहां तक इयरपगय का संबंध है, वे अपना अहम पूर्ण स्वरूप से विगलित कर चुके थे. स्वयं को अपनी चल अचल संपत्ति को भगवान के दासों की संपत्ति मानकर जीवन यापन करने वाले इस मानव को हम सामान्य नहीं मान सकते. यह शिव की ही भक्ति है. कुछ लोग कहते हैं कि ये इयरपगय भक्ति में इतने पागल हो चुके कि अपनी पत्नी तक का दान कर दिया था, लेकिन यह ऐसी भक्ति और ऐसी विचार रखने वाले लोग दुनिया में बहुत कम ही होंगे. इसलिए आज हम इयरपगय को सत स्वरूप भगवान के भक्त स्वरूप नमन करते हैं. ओम नमः शिवाय.
1: ओम नमः शिवाय.
3: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग.
1: ओम नमः शिवाय.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: யத் கர்மா சரிதம் மயாச்ச. தப் மே ஜோ சேஷ்டா கர்த்தா ஹூ. ஹம் சபி கிரீடா மிருகா ஹை, இஸ்லே ஹம் ஜோ பி சேஷ்டா கரேங்கே, சாய் உடேங்கே, சாய் பேடேங்கே, சாய் சோயேங்கே, சாய் ஹசேங்கே, சாய் ரோயேங்கே. யத் கர்மா சரிதம் मया यत कर्म आचरितम, मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं भवत प्रत्ययी भवत्ये बतत, सारी क्रियाएं आपकी प्रसन्नता के लिए ही हैं। क्योंकि शंभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम मत्चेष्टितम निश्चितम। मत्चेष्टितम, मेरे द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है वह चेष्टाएं, वो क्रियाएं मैं अपने मर्जी से तो करता नहीं, समझे कि नहीं। मैं अपनी मर्जी से तो कुछ करता नहीं, क्योंकि मैं तो खिलौना हूं। इस श्लोक को पढ़ते समय में आप शतरंज के खेल को स्मरण कर लो। शतरंज के खेल में, शतरंज के खेल में राजा होता है, मंत्री होता है, सिपाही होते हैं, घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं, होते हैं कि नहीं। इन है राजा, मंत्री, सिपाही, घोड़े और ऊंट है। हाथी भी होता है शतरंज में? अच्छा, हाथी भी होते हैं है? शतरंज के खेल में रानी भी होती है, वजीर, मंत्री, रानी की तो बात मैंने नहीं सुनी है। चलो होगे, कोई इतना कुछ होंगे हैं, जरूरत पड़े डालो, नहीं पड़े तो हटाओ। तो कभी भी वो राजा, शतरंज का जो राजा है, राजा कोई साधारण व्यक्ति होता है, लेकिन भले ही वह शतरंज में राजा हो, उसकी चेष्टा तो खिलाड़ी पर निर्भर है कि नहीं। राजा जीतेगा कि हारेगा, खिलौने के राजा पर निर्भर है कि खेलने वाले पर निर्भर। इस श्लोक को पढ़ते समय में वो दृश्य को सामने रखो। मान लो कि शतरंज का राजा हार गया, क्योंकि चलने वाले ने गलत चल दी, जिसने राजा ली रखा है, जिसके हाथ में राजा है, चाल चलने वाले ने गलत चल दी, परिणाम क्या हुआ, राजा मर गया। दुख किसको होगा, मरने वाले राजा को होगा कि खेलने वाले खिलाड़ी को होगा? खेलने वाले खिलाड़ी को होगा, क्योंकि राजा तो केवल खिलौने का है। मान लो कि खेलने वाले खिलाड़ी ने चाल में ऐसी चाल चली, इस तरह खेली, राजा जीत गया, राजा बच गया, प्रसन्नता खिलौने को होगा कि खिलाड़ी को होगा? खिलौने को न हारने का दुख है, खिलौने को न जीतने का सुख है। उस सुख और दुख से वो खिलौना असंस्पृष्ट है। खिलौने से हारना और जीतना, इसके संबंध खिलाड़ी पर है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा, कुतूहलस्य करणम मत्स्यष्टितम, आपके प्रसन्नता का साधन रूप में जो खिलौना हो, मेरी जो चेष्टा है वह त्वया निश्चितम, मया यत् चेष्टितम, ध्यान देना ये शब्द पर ध्यान देना, मया यत् चेष्टितम तत् त्वया निश्चितम, मैंने जो चेष्टा की, मैंने जो क्रिया की, जीतने की क्रिया की या हारने की क्रिया की, वह तो तुम्हारे निश्चय पर निर्भर करता है। किस कोष्ठ में जाकर बैठना है वो तो तुम बिठाओगे ना, मैं अपने आप तो जाऊंगा नहीं। और उस बिठाने की जगह पर आपने कैसे बिठाई, किस प्रक्रिया से बिठाई, मुझे प्रयोग करने पर ही आपको सुख होगा, और मुझे प्रयोग करके ही आपको दुख होगा। खिलौने को सुख दुख नहीं होता, प्रयोगकर्ता को ही सुख दुख होगा। बाजी जीत गया, खिलौने को क्या खिलाओगे, रसगुल्ला खिलाओगे हैं? तुमने बाजी जीत ली, जीत लिया, खिलौने को क्या खिलाओगे? उन खिलौनों को तो बाजी जीतने पर भी खेलने के बाद उसी डब्बों में बंद होना है, है कि नहीं? उन खिलौने हार गए, बाजी हार गए, हारने के बाद भी उन खिलौनों को तो वही डब्बे में बंद होना है जिस डब्बे में जीतने पर बंद हुए थे, ठीक ही नहीं? बोलो, बाजी हारने वाले खिलौने कोई दूसरे डब्बे में बंद होंगे? बाजी जीतने वाले खिलौने कोई दूसरे डब्बे में बंद होंगे? लेकिन जीतने वाला बड़ा आनंद से मिठाई बांटेगा, खाएगा, और हारने वाला बैठकर रोएगा। कौन रो रहा है, कौन मिठाई खा रहा है? खिलाड़ी। तो इसी प्रकार से हे भगवान शिव शंभो पशुपते, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, 66वां श्लोक, संसार में जितने भी जो भी वस्तु का निर्माण किया आपने किया है, किस प्रयोजन से? खेलने के लिए, खिलौनों के रूप में सभी पदार्थों की आपने रचना की है, और इन्हीं खिलौनों के माध्यम से आप खूब खेलिए। संभो स्वस्य कुतूहल, आनंद का खूब आनंद लीजिए, खेलिए। करणम माने साधन, मत्स्यष्टितम निश्चितम, तस्मात् मामकरक्षणम पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं आपसे, मैं खिलौना हूं, मेरे से किस प्रकार का खेल खेलना है वह आप ही निश्चय करोगे और मेरे से किस प्रकार की खेल खेलनी है वह आप ही मुझे खिलाओगे चलाओगे। लेकिन आपके द्वारा परिचालित मैं हार गया, दुख तुम्हें होगा। आपके द्वारा परिचालित मैं जीत गया, आनंद तुम्हें ही होगा। और कहीं कदाचित मेरा अनुरोध इतना ही है कि खिलौने सुरक्षित रहेंगे तो आपको खेलने में भरपूर आनंद आएगा। तो आपसे मेरा अनुरोध यह है कि आप मेरे से खूब खेलिए, लेकिन अनुरोध इतना ही है, ख्याल आपको रखना है खेलते समय में टूट न जाए। खिलौना टूट गया तो जीतने और हारने का कोई सवाल ही नहीं, खेल की मजा ही खत्म हो गया। खिलौना टूट ना पावे, खिलौने की रक्षा खिलौना खुद करता है, खिलाड़ी करता है। तो आप खिलाड़ी हो कि खिलौने हो? आप खिलौने हो तो आपकी रक्षा खुद आप करोगे, तो खिलाड़ी कौन है? तो खिलौने की रक्षा किसके हाथ में है? तो खिलौने ने इतनी कह दिया, महाराज सावधानी से खेलना, मेरे रोने से आपको आनंद आता है, मुझे खूब रुलाइए, मुझे रोने में आपत्ति नहीं है, ध्यान देना हो, मुझे रुलाकर आपको आनंद आता है तो रुलाइए, खूब रुलाइए, आपको आनंद आनी चाहिए। मुझे हंसाकर आपको आनंद आता है तो खूब हंसाइए, लेकिन ख्याल ये रखना रुलाते रुलाते खिलौना टूट न जाए, फिर दोबारे मुझे रुलाना होगा तो फिर कहां से लाओगे खिलौना? समझे कि नहीं? ये भाव है भगवान के प्रति। भगवान के सामने आदिगुरु शंकराचार्य जी अपने आप को एक खिलौने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और भगवान शिव को खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुरोध ये कर रहे हैं कि खिलाड़ी खेलते समय खिलौना न टूटे, इतने आप ख्याल रखो महाराज, जो खेलना है खेलो, जैसा खेलना हो खेलो। अब देख लो, कोई सिनेमा बना रहा हो और सिनेमा में हर प्रकार के पात्रों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? सिनेमा में हर प्रकार के पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। रक्षा करने वाले पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी तो चोरी करने वाले चोरों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, बोलो हैं? बोलो। सिनेमा में चोरी करने वाले चोरों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं है? रक्षा करने वाला हीरो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो गलत काम करने वाले गुंडों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, बोलो। अच्छा काम करने वाला हीरो विलेन, उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके बराबर में उसमें बुरा काम करने वाला गुंडा लोफर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? सिनेमा में गुंडों की क्या आवश्यकता है भाई? है क्या आवश्यकता है? क्यों गुंडों की भूमिका क्यों प्रस्तुत किया गया हुआ? बोलो। अब गुंडे नहीं होंगे तो हीरो अच्छा होगा? अब अंत में क्या करता है? कोई लड़की को जबरदस्ती कर रहा है कोई गुंडा, और लड़की रो रही है, और उसी समय में हीरो पहुंच गया। उसने दो चार मारी गुंडों को, और उसने उन गुंडों से उसकी रक्षा कर दी, और हीरो की वाह वाह हुई, है ना? तो गुंडे की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? सिनेमा को हिट करने के लिए गुंडों की भी तो आवश्यकता है कि नहीं? बोलो। महाभारत सीरियल को हिट करने के लिए दुर्योधन की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? और महाभारत को हिट करने के लिए शकुनी की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? सबकी आवश्यकता है। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम। वहां शकुनी की भूमिका भी आई, दुर्योधन की भूमिका भी रही, युधिष्ठिर की भूमिका भी रही, दुशासनों की भूमिका भी रही, और दुशासन द्रौपदी की साड़ी न खींचते होते फिर तुम्हारे कृष्ण को कौन पूछता है? बोलो। फिर तुम्हारा कृष्ण हीरो कैसे हो पाता? जब दुशासनों ने साड़ी खींचना आरंभ किया, द्रौपदी रोने लगी, तो भगवान साड़ी बनकर आ गए। ये भगवान की कृपा है। कब? दुशासनों की निष्ठुरता के चलते हुई कि नहीं? बोलो। भगवान की कृपा, दुशासन की निष्ठुरता प्रस्तुत न होते तो भगवान की कृपा का क्या पता चलता? तो हीरो हो गए कृष्ण। तो संसार में सभी की आवश्यकता है। आपको रोना भी पड़ेगा, द्रौपदी यदि कहे मैं द्रौपदी की भूमिका तो पूरा करूंगी लेकिन रोने का काम नहीं करूंगी, तो फिर प्रोड्यूसर निर्माता उसको द्रौपदी की भूमिका में वर्णन करेगा कि नहीं? द्रौपदी को तो रोना ही पड़ेगा, बस पड़ेगा कि नहीं? बोलो। इसी तरह दुशासन की निंदा होती है, इसलिए मैं दुशासन का काम नहीं करूंगा, तो महाभारत सीरियल तैयार होगा कि नहीं? बोलो। तुम भी दुशासन बनने को तैयार नहीं, मैं भी तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं, तो महाभारत सीरियल कैसे बनेगा? बोलो। तो सबकी आवश्यकता है। कहां? खेल खेलने के लिए, नाटक करने के लिए सबकी आवश्यकता है। कभी मुझे हंसना भी होगा तो कभी मुझे रोना भी होगा, लेकिन भगवान मैं इतने अनुरोध करूंगा, मेरा प्रयोग करके भरपूर आनंद लीजिए। शर्त यह है मेरी रक्षा भी कीजिए। क्रीडार्थं सृजति प्रपञ्चमखिलम् क्रीडा मृगास्ति जना यत्कर्माचरितं मया च भवत प्रीत्यै भवति वत्तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मत्स्यष्टितं निश्चितम् तस्मान्मामकरक्षणम् पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। तुम्हारे द्वारा ही मेरी रक्षा होनी चाहिए, और कोई नहीं करेगा। प्रश्न करते हैं महाराज हमसे आकर, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, दूसरों को रुलाकर ये कौन सा खेल खेलता है परमात्मा भाई? ये भी कोई खेल होता है दूसरों को रुलाकर? प्रश्न करते हैं, दूसरों को मारकर खेलना भी कोई खेल होता है? लेकिन कंस को मारे बिना महाभारत होगा है? बोलो, कंस को मारे बिना महाभारत होगा? द्रौपदी को रुलाए बिना महाभारत होगा? है? द्रौपदी के 5 सोए हुए बच्चों के सिर काटे बिना महाभारत होगा? और तुम प्रश्न करते हो कि ये कहां का नियम है भाई, दूसरे के बच्चों को मारा और महाभारत बना दी? द्रौपदी के सोए हुए 5 बच्चों को अश्वत्थामा द्वारा सिर काटा कि नहीं किया? काट दिया है? काटना पड़ा कि नहीं? बोलो। और अश्वत्थामा का सिर मुड़ाना पड़ा कि नहीं? मणि उतारना पड़ा कि नहीं? अच्छा लगा होगा अश्वत्थामा को? तुम लोगों ने किसी ने विरोध किया अश्वत्थामा का सिर की मणि को मत निकालो करके है? विरोध किया? करना चाहिए, किसी ने आवाज निकाली? अच्छा किया, सोए हुए बच्चों को मारा था, द्रौपदी के सोए हुए बच्चों को मारा था, अर्जुन ने ठीक किया, मणि उतार दी। तुम खुश हुए कि भी नहीं? बोलो है? तुम खुश हुए कि नहीं है? इसीलिए इतना ही समझना भाई, अपने को भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हुए खिलौने से ज्यादा नहीं समझना। और अपनी दिनचर्या और चेष्टा में भगवान के संकल्प के अतिरिक्त अपना कोई संकल्प जोड़ना नहीं, अपना पूर्वाग्रह नहीं करना। समस्या कब होती है? हमको खिलौने के रूप में परमात्मा प्रयोग कर रहा है और अपने संकल्प के अनुसार वो हमको चला रहा है, और हम उसकी इच्छा विपरीत हम अपना पूर्वाग्रह लेते हैं, नहीं तुम्हारे चलाने से नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा चलाओ। ये खिलौना कहीं कभी पूर्वाग्रह करता है? बोलो, खेल में कोई भी खिलौना पूर्वाग्रह करता है? मुझे हाथी के द्वारा नहीं मरवाओ, मुझे राजा के द्वारा मत मरवाओ, कहता है शतरंज का खिलौना। चाहे सेना से मरवाओ, चाहे हाथी से मरवाओ, जिसे मरवाना है मरवाओ, बचाना है बचवाओ, बस खत्म हो गई बात। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। जीवन के एक एक श्वास परमात्मा के संकल्प पर छोड़ दो, जीवन की एक एक दिनचर्या क्रियाकलापें परमात्मा के संकल्प पर छोड़ दो, तो भजन तो तुमने बहुत गाई है। जाके राख क्या
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Narayan, Narayan, Narayan, Narayan. Prempuri Ashram mein हम सब माताजी का स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर माताजी के श्री चरणों में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। माताजी हमें शिव महिमा स्तोत्र पर प्रवचन करेंगी और आज से लेकर 28 फरवरी तक माताजी का प्रवचन यहां चलता रहेगा। मैं माताजी से प्रार्थना करता हूं, कृपया अपने प्रवचन द्वारा हमें अनुग्रहित करें। जय श्री कृष्ण।

Guru. विषय है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र के रचयिता है, जैसे मनुष्य योनि होती है, ज्यादा पुण्य कर्म के पुण्य फल के रूप में योनियां बदलती जाती है, देव योनि, तिर्यंग योनि, प्रेत योनि होती है, ऐसे गंधर्व की योनि होती है। मनुष्य गंधर्व होते हैं और देव गंधर्व होते हैं। तैतरीय उपनिषद का जिससे अभ्यास होगा, वहां आनंद मीमांसा समय भी इसकी बात आती है। ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदाहा, ते ये शतम देव गंधर्वाणाम आनंदाहा। तो ये गंधर्व राज जो है, वाणी की विद्या में, गान में, स्वर में, राग में अति कौशल्य होता है, तो परमात्मा ने विशेष रूप से वहां उनकी वाणी में प्रवेश करके ये विशेष कौशल्य क्यों दिया है? क्योंकि उनकी गुण का, उनके कथन का, परमात्मा के रूप का आप स्मरण कीजिए, गान कीजिए, चिंतन कीजिए, प्रेम से उसे पुकारने के लिए अनेक विध राग रागिनियां परमात्मा ने बनाई है। अगर परमात्मा ने गला अच्छा दिया है और उनके राग गाने में प्रमाद किया गया, या आपके पास मुख है, वाणी है, दृष्टि है, कान है, और फिर भी आप परमात्मा का नाम स्मरण चिंतन मनन नहीं करते हैं, तो उसका फल क्या होता है, थोड़ी वो भी बात ये स्तोत्र से हम जान सकते हैं। और ये जानने के बाद कहीं हमसे ये गलती न हो जाए, उसकी भी बात, कोई भी वेदांत का स्तोत्र है वो मात्र अपने लिए ही बात नहीं करते। वेदांत के जो भी कुछ स्तोत्र है या पाठ है या स्तुति है या शास्त्र के, कोई भी आप उपनिषद ले लीजिए, कोई भी अध्याय ले लीजिए, वहां दो बातें मिलेगी, एक वक्ता और एक श्रोता। एक मुख्य जो है, अथवा तो वक्ता और श्रोता के रूप में कोई अध्याय न होगा तो क्या होगा? स्तुति में क्या होता है? एक उपास्य देव, एक आराध्य देव और एक आराधना करने वाला यानी के उपासक। और ये उपासक और आराध्य देव के बीच में जो घटित होता है वो उपासना, वो आराधना। तो हम कौन है? हम सब, तो हम सब उपासक है, पर हमारे उपास्य देव कौन है? हमें उपासना तो किसी की करनी ही है, नहीं तो यहां हम आए ही नहीं होते। हमें कोई एक तत्व को तो जानना ही है जिसने ये आकाश से लेकर हमें बनाया। या तो हम आश्चर्य से यहां उपस्थित हुए हैं, या तो संसार में बहुत सारी प्रतिकूलता है और यहां कुछ वो प्रतिकूलता से थोड़ी देर के लिए भी हमें अगर आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए हम आए हैं। पर ये आनंद प्राप्त जो होता है, हमारी प्रतिकूलता थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है, वो कौन से उपास्य देव है? ऐसे किस देवता की उपासना करें हम? हवि दे करिए वेद के, ऋग्वेद के मंत्र है। ये सृष्टि निर्माता कौन है? सृष्टि किसने बनाई? ये किसके ऊपर ये सब आधार? ये आकाश को भी आधार देने वाला कौन है? आकाश है तो आकाश को बनाने वाला कौन है? कोई भी चीज अगर है, ऐसा आप बता सकते हैं कि आकाश इज, अस्थि है, धरती है, टेबल है, तो है जिसमें है लग गया, उसका कर्ता तो कोई होगा ही, तो वो कर्ता कौन है? मेरा उपास्य देव कौन है? और ये उपास्य देव के प्रति किस किस चीज से, कौन से रास्ते से हम गमन कर सकते हैं? उसका एक जो रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, उपासना का रास्ता है, आराधना का रास्ता है। तो ये आराधना का जो रास्ता है, यहां उसकी रजूआत की गई है। तो इनके रचयिता जो है वे गंधर्व राज है। गंधर्व राज यानी गंधर्वों में भी उत्कृष्ट और श्रेष्ठ है। नाम है पुष्प दंत। काशी नरेश के उद्यान में बात कुछ ऐसी है। देखिए ये रचना क्यों हुई शिव महिम्न की?
और आप तो यहाँ बरसों से वेदांत के अभ्यासी हैं, आपको पता होगा हरिद्वार ऋषिकेश कहीं भी परंपरा के आश्रम में आप चले जाइए, रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है और रोज शाम को कौन सा पाठ कर किया जाता है, तो यही शिव महिम्न का पाठ किया जाता है कि हे भगवान, पूरे दिन में अगर ये शरीर मन बुद्धि का संघात दिया है मात्र परमात्मा को जानने के लिए, ये बात बराबर समझ लीजिए। हमने गलती से ऐसा मान लिया हो कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना ही है, ये मेरा संसार है, वो बात अलग है, पर ये सब करने के बाद भी आपने अपना आपका जो स्रोत है, जो परमात्मा है, उसके कारण को जानने की चेष्टा नहीं की, तो सब कोशिश, सब कर्तव्य, सब कर्म क्या है, सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो बात कुछ ऐसी होती है कि काशी नरेश राजा, उनके उद्यान में परमात्मा की पूजा के लिए बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया गया था और अनेक प्रकार के वहां पुष्प थे, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प परमात्मा की पूजा के लिए वहां उगाए जाते हैं। अब ये पुष्पदंत गंधर्व राज जो है, उनको एक विशेष विद्या प्राप्त हुई थी और वो ये हुई थी कि वो जब चाहे तब अंतर्ध्यान हो सकते थे। अंतर्ध्यान यानी कि हो सकते थे पर दिखाई नहीं देते थे, अदृश्य रूप से विचरण कर सकते थे और कर्म भी कर सकते थे। ऐसी एक विशेष विद्या परमात्मा के अनुग्रह से ही उनको प्राप्त हुई थी। पर परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त हुई विद्या का जब उपयोग होता है तो क्या होता है, सदुपयोग होता है तो क्या होता है और दुरुपयोग होता है तो क्या होता है, ये भी इस स्तोत्र से हमें बात सीखनी है। और ऐसी ही कुछ विद्या हमें भी दी है। देखे, ये बोल सकते हैं, वो क्या चमत्कार कम नहीं है? एक मुख बनाया है, उसमें से वाणी निकल रही है और आप सोच रहे हैं, वो आप बोल सकते हैं, ये क्या चमत्कार नहीं है? आप जो चाहे वो सुन सकते हैं, जहां चाहे चल सकते हैं, पैर से जा सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो संगात है, उसका अगर आपने मात्र उपयोग ही किया, उपयोग यानी चल के आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को जहां सांत्वन मिले, अच्छा लगे वहां आप गए, उसका उपयोग किया, उसको खिलाया पिलाया और सो गए, किसी का कुछ अच्छा भी नहीं किया और बिगाड़ा भी नहीं, ये मात्र उपयोग किया आपने,

अशांति होती है तो समझ लेना कि ये शरीर मन बुद्धि के संघात का कहीं दूर उपयोग हुआ है। सब कुछ होते हुए भी अप्रसन्नता, सब कुछ होते हुए भी अपूर्णता का भाव, तो ये सब दुरुपयोग। और सदुपयोग क्या है? तो मात्र परमात्मा को जानने की एक थोड़ी सी भी आपने चेष्टा की ना, और कुछ नहीं, कोई मंदिर में जाके, कोई तीर्थस्थल में जाके दर्शन भी कर लिया, एक हाथ भी ऐसे आपके जुड़ गए तो बहुत हो गया। इतना ही चाहिए परमात्मा को, बाकी का वो संभाल लेते हैं। ये क्या है, आप प्लेन में बैठते हैं, फिर क्या करते हैं, टिकट आपने ली है, सब कुछ किया है, पर प्लेन चलाना पड़ता है आपको? प्लेन चलाना नहीं पड़ता है, आपको क्या करना है, टिकट लेके सिर्फ बैठने का कर्तव्य प्रयत्न करना है। प्लेन तो उड़ाने वाला, और उसमें बहुत कष्ट है। अगर आप भीतर जाएंगे, ये जो कॉकपिट जो होता है, वो जो प्लेन की जो कैबिन होती है जहां पायलट बैठा करते हैं, वो कैबिन बराबर बंद रखी जाती है, वो आपको दिखाई नहीं जाती। अगर वो आप देख लेना तो प्लेन से उतर जाएंगे कि इतने सारे बटन हैं, इतनी सारी स्विचेस हैं, कोई एक गलती से कुछ दबा दिया या ये भूल गया या ये पायलट सो गए तो क्या होगा मेरा। ऐसा सोच के आप टिकट के पैसे लिए बिना उतर जाते कि भाई ये आपको भेंट दे दिया, इसमें हम ट्रैवल नहीं कर सकते। देखिए, ये संघात, ये पैकेट इतना बराबर दे दिया है परमात्मा ने, अगर उसकी आंतरिक विधियां आप देखने जाए तो दिमाग काम नहीं करेगा। और इसका अगर सदुपयोग किया वो परमात्मा को जानने के लिए, कहने का तात्पर्य क्या है कि आप सिर्फ थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, तो जैसे वो पायलट ही टेक्स ओवर एवरीथिंग, आप थोड़ा प्रयत्न उनको जानने का कीजिए, इच्छा भी कीजिए, परमात्मा कोई न कोई स्वरूप से आपके संस्कार के मुताबिक, आपके कर्म के मुताबिक, आपके आदतों के मुताबिक परमात्मा तत्त्व रूप लेकर यहाँ विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए 33 करोड़ देवता क्यों कहा गया है, 33 करोड़ वृत्तियां हैं, 33 करोड़ भक्ति की वृत्तियां हैं, जिससे भक्त या मनुष्य परमात्मा को पुकारता है। और परमात्मा को जिस रूप में शुद्ध भाव से सत्व गुण जब चल रहा है तब पुकारा। देखिए, कौन सी बात का संयोजन होना चाहिए, एक तो सत्व गुण है, परमात्मा के लिए प्यास है और पुकारा, तो क्या हो गया, वो आपका सत्वगुण आपके कर्मफल के मुताबिक का, और वो परमात्मा की प्यास लगी तो एक रूप खड़ा हो गया, तो दूसरे को भी लगी, तीसरे को भी लगी। ऐसे ये जो अनेक देव जो दिख रहे हैं, वो हमारी ही वृत्ति के कारण परमात्मा ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। तो ये सदुपयोग अगर किया तो ही ये मनुष्य जन्म का साफल्य है, और किसी में ये साफल्य नहीं है। तो यहां काशी नरेश के उद्यान में जो पुष्प उगाए जाते थे, ये गंधर्व राज को हुआ कि ये जो पुष्प है, हालांकि ये पुष्प वो परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की पूजा के लिए ही लेना चाहते थे, पर रास्ता गलत था। रास्ता कौन सा गलत था, तो उनकी जो अंतर्ध्यान होने की जो शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी, उनका उन्होंने दुरुपयोग किया और अदृश्य रूप में रोज काशी नरेश के बागान में जाके पुष्प को ले लेते थे और चले जाते थे। ऐसा बहुत समय से चलता रहा, तो काशी नरेश राजा को हुआ कि ये गलत है, पुष्प पूजा के लिए लिए जाते हैं तो मैं तो ना नहीं बोलने वाला, मैं मेरे घर में चढ़ाऊं या कोई अपने देव को जाके चढ़ाए, सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, ये तो परमात्मा को ही पहुंचने वाला है, पर पूछ लिया होगा तो अच्छा होता, ये कौन ले रहा है पुष्प पता भी नहीं लगता। तो बहुत सोचने के बाद उन्हें एक विचार आया कि शिव निर्माल्य यानी शिव को चढ़ाए गए पुष्प या बिल्व पत्र है, वो जो बिल्व पत्र है, वो शिव निर्माल्य जो है, वो पूरे बागान में वो बिछा देते हैं। और उन्हें विश्वास था कि ये शिव निर्माल्य के ऊपर से तो कोई जा नहीं सकता, और गलती से अगर चला भी गया तो उनके पास जो अंतर ध्यान होने की शक्ति या विद्या या कोई भी प्रकार की विद्या है, वो अपने आप चली जाएगी, और वो ये जो कोई ले रहा है, ये पुष्प की चोरी हो रही है, वो मैं जान सकूंगा कि ये कौन है। देखिए, हम कई बार ये एक एक्सक्यूज ले लेते हैं कि भाई मैं गलत तो कर रहा हूं, पर परमात्मा के लिए ही ना, वो भी चलता नहीं है। अगर परमात्मा के लिए ही करना है तो गलत क्यों करना, परमात्मा के लिए आप करेंगे तो कुछ

0: करने की शक्ति और क्षमता आप में आ ही जाएगी। उनके लिए तो गलत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उलट सुलट कर देते हैं। गलत को भी सही बनाने वाले परमात्मा है, आप डरते क्यों हैं? भाई मेरा उद्देश्य तो भक्ति का ही था, मेरा उद्देश्य तो प्रवचन सुनने का ही था, थोड़ा झूठ बोल दिया, थोड़ा गलत किया, तो क्या मिलता तो वही है ना। अगर गलत होता तो काशी नरेश जी को विचार नहीं आता कि मैं शिव निर्माल्य डाल दूं और इन्हें पकड़ूं। ये सही ही होता था और ये स्तोत्र की रचना भी नहीं होती थी। देखिए आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि मैं भक्त हूं, मैं वेदांत का श्रोता हूं, मैं शिष्य हूं, आप रिप्रेजेंट वो परमात्मा को कर रहे हैं, कोई गुरु को कर रहे हैं, तो नाम बिगड़ेगा किसका? हाँ, अगर आप गलत करके भी वेदांत में श्रवण में आए, गलत करके भी सत्संग किया, तो नाम किसका बिगड़ेगा कि अरे भाई आपके भगवान ऐसे हैं, आपके गुरु ऐसे हैं कि ये भक्तों को झूठ बोलना पड़ता है आपको नाम लेने के लिए? तो जिसका नाम लेने के लिए झूठ बोलना पड़ता है वो भी झूठा ही होगा। और परमात्मा कैसा है? सत्यम परम धीमहि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये परमात्मा तो सत्य स्वरूप है, डरते क्यों हो? और इसीलिए ज्ञानियों की स्तुति करने के लिए ही तैतरीय उपनिषद ने उद्धृत किया है, न बिभेति कुतश्च नेति। हाँ, वो परमात्मा को जान लेने के बाद वो डरता नहीं है किसी से। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि असत्य नहीं करता है। हाँ, असत्य करके नहीं डरना वो अलग लोग हैं समाज में, वो हम देखते हैं, रोज पेपर्स में पढ़ते हैं कि असत्य करके नहीं डरते, पर ऐसी अभयता हमारे शास्त्र में नहीं की गई है। सत्य करना और नहीं डरना, ये कुछ खुमारी की बात हुई और ये परमात्मा की प्राप्ति की बात हुई। परमात्मा हमारी कसौटी यहीं से शुरू करते हैं कि सत्य करना, मेरे लिए कुछ करने के लिए तुझे झूठा बोलना पड़े तो ये बंद, परमात्मा दरवाजा ही बंद कर देते हैं। मेरे लिए, मुझे जानने के लिए आप निकले हैं तो सत्य का सामना करो, समाज का सामना करो। इतनी हिम्मत तुम्हारे में है तो प्लेन चलाने वाला मैं हूं, पायलट हूं, इतनी ही हिम्मत के सत्य के सत्य न पंथा वितो ब्रह्मयान, ये सत्यमेव जयते नानध्रुतम, ये उपनिषद वाक्य है। हा? तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक सत्य की थी जो जरूरत है, तो ही वो परमात्मा का जो सत्य है वो हमारे लिए खुद को अनावृत करेगा। असत्य का मार्ग लिया तो अनावरण किसका होगा? असत्य का अनावरण होगा। तो ये शिव निर्माल्य के ऊपर से, वो तो आए अदृश्य रूप में गंधर्व राज, शिव निर्माल्य को भूल से उन्होंने पार कर लिया। जैसे ही शिव निर्माल्य को पार कर लिया, बिल्व पत्र के ऊपर से वो गए, उड़ गए, तो क्या हुआ? तो उनकी जो तिरोभूत होने की शक्ति थी वो चली गई और तुरंत वो शरीर के गंधर्व के आकार में आ गए। ऐसे आ जाने पर वो पकड़े गए। ये गलत उपयोग करने का, फूल ले रहे थे परमात्मा के लिए ही तो सत्य बोल के भी ले सकते थे, इतना हम समझ जाएंगे तो भी ठीक है। परमार्थ को बहाना मत बनाइए, भगवान को बहाना मत बनाइए गलत करने के लिए। इतना जानिए कि वो परम स्वराज राजाधिराज वो परमात्मा है और उनको जानने के लिए आप निकले हैं, आप उनके बनने के लिए निकले हैं, तो फिर डर कैसा? हाँ, एक बार हृदय खोल दीजिए, एक बार सत्य के रास्ते पे चले जाइए तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप जिसको जानने के लिए जा रहे हैं वो परम सत्य है। और अब तक नहीं मिला उसका कारण ही है कि उनको जानने के भ्रम में हम गलत करते हैं, गलत कारण दे रहे हैं कि भाई ये मैं झूठा कर रहा हूं क्योंकि मैं परमात्मा के रास्ते पे जाना चाहता हूं। ये दो चीज बन नहीं सकती। हिम्मत करके एक बार सत्यनिष्ठ हो जाइए, जैसे मीराबाई सत्यनिष्ठ, कृष्ण की भक्ति है तो है, मुझे मूर्ति को नहीं छोड़ा। जब शादी करके आए, अपने ससुराल में आए, तो भी कृष्ण भगवान की मूर्ति ऐसी ही रखी थी, पास ही रखी थी और उनके साथ ही वो रहते थे। दंभ नहीं किया कि नहीं मैं कोई भगवान में नहीं मानती और भीतर से पूजा किया थी, नहीं, हिम्मत है, साथ में ही रखा और परिणाम आपको पता है। तुकाराम, नरसिंह मेहता, ये सब साधुओं के, सब संतों के जीवन देखिए, सत्य को नहीं छोड़ा, परमात्मा को नहीं छोड़ा, और हमें मंदिर में जाने से भी शर्म लगती है, पैर छूने में भी शर्म लगती है। अनजाने में भी हम देख लेते हैं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, जिससे मुझे शर्माना है या सिर छुपाना है। और मॉडर्न हम कौन से किस आदमी को मॉडर्न समझते हैं, जो ऐसा कुछ नहीं करता वो मॉडर्न है। और हमें वो भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये दोनों नहीं हो सकते। परमात्मा के पास जाने के लिए कोई भी शर्म, संकोच, कोई भी प्रकार का अंतस उसके साथ मत रखिए। क्यों? तैतरीय उपनिषद ने भी कहा है, यदा ये वैश एतस्मिन् उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवति। क्या होगा? कोई अंतर रखा, अंतर याने परमात्मा के बारे में उनका बहाना बना के भी झूठ किया ना, तो भी वो अंतर हो गया। अंतर याने उपनिषद जो अंतर की बात कर रहे हैं वो क्या है कि वो परमात्मा निज अंतर गुहा में ही है, वो परमात्मा मैं ही हूं, ऐसा न समझते हुए वो परमात्मा मेरे बाहर है, ऐसा अंतर रखा। पर वो अंतर तो बहुत दूर की बात रही, हम तो असत्य से ही अंतर शुरू कर देते हैं, परमात्मा से अंतस रखते हैं। तो ऐसे अंतर रखने वाले को क्या होता है? अतः तस्य भयम् भवति, ये शास्त्र ने कह दिया। हजार बार लाख बार मूर्ति को हमने प्रणाम किया तो भी भय से मुक्त हुए हम? भय याने भीतर से एक डर बना रहता है, एक खौफ बना रहता है। हम ऐसे ही है, दिखता नहीं है, ये ट्रेमरिंग दिखता नहीं है, पर वी आर ट्रेमरिंग फ्रॉम विद इन, ये डर खड़ा ही हुआ है। अंततः सबसे आप डरना बंद कर देंगे, अपने आप से डर लगता है, अपने आप के विचार ऊपर भी हमें कोई विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि असत्य का सहारा है। खाद्य जो है, पानी जो है, वो असत्य दिया है, जानने निकले हैं सत्य को, तो ये भय होगा। और अंतिम भय है मृत्यु का, और उससे भी बड़ा भय है अगली योनि का, जन्म का। जन्म के भय के तो बारे में हमने सोचा ही नहीं, अब तक हम मृत्यु के बारे में भयान्वित हो रहे थे, आपने हमारा भय बढ़ा दिया, अब अगले जन्म की भी चिंता करवाई। अब तक तो मृत्यु तक ही हमारा भय सीमित था, पर अगले जन्म की ही चिंता करनी चाहिए। और उसकी व्यवस्था के लिए ये पुनर्जन्म पुनर्मरण ये व्यवस्था से छूटने के लिए ही ये सत्संग करना चाहिए, पर सत्य का पंथ लेना। तो गंधर्व राज पकड़े गए। अब क्या हुआ? देखिए, कर्म तो गलत हुआ, गलती से हुआ, पर परिणाम क्या आया? परिणाम तो अच्छा ही आया। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रीत्यर्थ था, इसलिए। तो परिणाम क्या हुआ? गंधर्व राज पुष्पदंत जी जो थे उन्हें बहुत ही पछतावा हुआ, पर भीतर से वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो भी शिव भक्त ही थे। ये जो पुष्प ले जाते थे वो शिव जी के लिए ही ले जाते थे, पर उनके मन में ये शिव जी कौन है, शिव जी की महिमा क्या है, वो मन में अंदर अंदर विचार आते रहते थे, पर वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। क्यों अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे? उन्हें डर लग रहा था कि ब्रह्मा जी भी, जिनकी महिमा का वर्णन करने में अशक्त रह गए, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, वो कमल में नीचे जा रहे हैं, उनका अंतिम अंत जो है, शुरुआत जो है, स्रोत जो है, वो ढूंढने के लिए गए, करोड़ों वर्षों तक गए, ब्रह्मा जी ऐसे ही अपने स्रोत को, कारण को बिना जाने उन्हें वापस आ जाना पड़ा। क्या हुआ? वो उनके कारण को नहीं जान सके। तो पुष्पदंत जी को मन में हो रहा था कि ये जो मेरा कारण है, जो परमात्मा है, उसे ब्रह्मा जी भी अगर नहीं जान सके तो मैं कैसे जान सकूं। पर उन्हें ऐसा था कि हे परमात्मा, मैं आपको कितना जानता हूं वो आप नहीं जब तक जानेंगे, तब तक मैं जहां हूं वहां से मेरी साधना आगे कैसे बढ़ेगी। और ये हम सब साधक, सब शिष्य का कर्तव्य है कि आपकी साधना जहां तक हुई हो, आप जहां तक आगे विचार में गए हैं, समय समय पर आपके गुरुजनों को, आपके संतों को बताते रहिए कि भाई यहां तक आए हैं, यहां अब बंद हो गया है, अब आगे क्या करने का, हाँ वो आप बताते रहिए, अभिव्यक्त हो जाइए। उनमें शर्म, उसमें असत्य नहीं रख रहे, ये जो असत्य की बात आई ना, उसमें असत्य यानी क्या कि मुझे तो सब आ गया है, सब बराबर है। गुरुजी आप जो कुछ बोलते हैं मुझे सब कुछ समझ में आता है, आप जो भी विषय पे बोलेंगे आई नो एवरीथिंग, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। गुरु को भी पता है कि इसको कितना समझ में आया, क्योंकि जिसको खरेखर समझ में आता है वो बोलता नहीं है कि सब समझ में आ गया। तो ये जो मुझे समझ में आ गया वो बोलना ही आपका सर्टिफिकेट दे देता है। तो पुष्प तो करना क्या है कि जो भी आपके मन में है वो अभिव्यक्त परमात्मा के प्रति तो अभिव्यक्त आपको करना ही है। पुष्पदंत जो गंधर्वराज थे उन्हें मन में ऐसा हो रहा था हमेशा कि मैं कहां तक आया हूं, मैं कहां तक वो महिमा को प्राप्त हुआ हूं, ये अगर मेरे परमात्मा नहीं जानेंगे तो मैं जहां हूं परमात्मा का पार तो नहीं पाया जा सकता। तो मैं जहां हूं वो परमात्मा को मालूम पड़े तो ही उनका अंतिम छोर है, वहां तक जाने की चेष्टा मैं कर सकता हूं। और वो यही राह देखते थे कि ऐसा क्या हो जाए कि परमात्मा की स्तुति मैं कर सकूं। क्योंकि देखिए ये ऐसा उनको क्यों होने लगा, हमें क्यों ऐसा नहीं होता है कि स्तोत्र की रचना करें। देखिए सबके स्वभाव के मुताबिक ही होता है, रुचिनाम वैचित्र्यात् उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही कहा है कि सबकी अपनी अपनी रुचि अलग होती है कर्म के संस्कार के अनुसार। पाप पुण्य के जो कर्म के फल है उसके अनुसार संस्कार है, रुचि है, वो सबकी अलग अलग होती है। और वो रुचि के अनुसार ये कौन थे, तो बोले गंधर्वराज थे। और गंधर्वराज थे इसीलिए शब्द में, शब्द कला में निपुण थे, साहित्य कला में निपुण थे, गान कला में निपुण थे। शब्द उनके लिए अशक्य बात नहीं थी, बहुत सरल बात थी। हमें कोई स्तोत्र की रचना अगर की करने का कुछ बोला जाए तो हम क्या करेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी। पर ये गंधर्वराज थे इसलिए वो बात उनके लिए बहुत सरल थी। इसीलिए हमेशा याद रखना, एक और बात ध्यान रखिए कि आपका जो स्वभाव है, आपकी जो आदतें हैं, आपके जो गुण हैं, उसी के मुताबिक परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करना, अनुकरण नहीं करना। श्रवण से परमात्मा के स्वभाव को जान लीजिए कि वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, आपके भीतर ही वो है, जब भी मिलेगा अस्ति इति एव उपलब्धव्यः। हाँ, कठोपनिषद में बता ही दिया है कि जैसे भी जब भी मिलेगा अस्ति प्रत्यय से परमात्मा है, अहम वृत्ति से ही मिलेगा, ये उसका एंड रिजल्ट है। पर अगर आपके संस्कार सिर्फ बौद्धिक है, आपको मैं कहूं कि लिफ्ट नहीं चल रही है, आप यहां से नीचे पैदल चले जाइए और नीचे आप खड़े रहे और मेरे साथ बात करने की भी आपकी शक्ति नहीं है, इतने आप कमजोर हैं, आप कोई भी प्रकार के नहीं, कोई श्रम ही नहीं ले सकते, आप बोले कि आप मुझे।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 1.

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Hari Om. Pujya Maharaj ke Punya Charan mein Vandan. Bahut hi anand ki baat hai. Aur aaj hamare beech mein Prata Pravachan ke madhyam se Taittiriya Upanishad dwara Pujya Maharaj ji pravachan karenge. Sabhi bade anand se इनके प्रवचन का लाभ लेंगे. आप सबकी तरफ से हम माल्यार्पण की विधि करेंगे और महाराज जी को वंदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे.

ततो प्राणिता गुड़गणेशनेरता संजिता निजपदाम्बुजे पुनः मुञ्चिता मदनदृष्टिर्येन ततो

0: भक्ति शक्ति संहिता वात्सल्यमयी माता अष्टमयी बहनो आप सर्वबंधु, तो तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से चर्चा करनी है। सर्वप्रथम मंगलाचरण, किसी भी कार्य से पूर्व में मंगलाचरण करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है तो संकेत किया गया, मंगल शब्द का अर्थ ही होता है मगम पापम दुरितम लुनातीत मंगलम। जो हमारी बाधाओं को, हमारी विघ्नों को, हमारी दुरितों को नष्ट करता है, ऐसी स्तुति का नाम है मंगल। उस मंगल का आचरण करना ही मंगलाचरण कहलाता। तो यहां पर सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया उसको देखें, उसके बाद उपनिषद संबंधी चर्चा की जाए। तो यहां पर मंगलाचरण करते हुए संकेत किया गया, सर्वा आशा ध्वान्त निर्मुक्तम सर्वासा भास्करम परम चिदाकाशवतंसम तम सद्गुरुम प्रणमाम्यहम। यहां संकेत किया कि चिदाकाश अवतंसम तम गुरुम प्रणामि अहम्। तो संकेत किया चिदाकाश अवतंसम, जो चिदाकाश, अब आकाश शब्द का अर्थ तो सभी जानते हैं, आकाश क्या है, तो अवकाश का नाम ही आकाश है, या शून्यता का नाम ही अवकाश, या दूसरे शब्दों में कहें तो यूं कह सकते हैं सर्व विशेषों से रहित का नाम ही है आकाश। तो सर्व विशेषों से रहित जो आकाश, फिर ऐसा संकेत किया, अथवा दूसरी तरफ से संकेत करते हैं आसमंता काशते प्रकाशते इति आकाश, जो सम्यक रूप से प्रकाशित हो रहा है उसी का नाम है आकाश। अब जो प्रकाशित हो रहा है तो प्रकाशित होने वाला कोई जड़ नहीं होगा, क्या होगा, चैतन्य होगा, इसलिए नाम रखा चिदाकाश। लेकिन वो चिदाकाश कैसा है तो संकेत किया सर्व विशेषों से रहे, सर्व विशेषों से रहित जो चिदाकाश हो। तो सर्व विशेषों से रहित कौन है, तो इसलिए शास्त्र ने शब्द दिया परब्रह्म। तो परब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ आप लोग जानते हो, जो व्यापक तत्व है, वृह धातु जो है वर्धन अर्थ में है, तो जो व्यापक है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत रूप है, ऐसा जो ब्रह्म, और वो ब्रह्म भी कैसा है, पर का मतलब है जहां पर कोई भी विशेष का संबंध नहीं, सारे विशेषों से जो रहित है उसका नाम ही है परब्रह्म। तो परब्रह्म कहें या चिदाकाश कहें, तो ऐसा जो चिदाकाश, ऐसा जो परब्रह्म, वह चिदाकाशी अवतंसम क्या हुआ है, तो कहने लगे वही जो है अवतरित हुआ है। कैसा हुआ है, अवतरित हुआ है, अर्थात अवतरित हुआ है माने उसने विशेषों को स्वीकार किया। वही जो निर्विशेष है, वही निर्विशेष जो है विशेष वाला बना हुआ है, ऐसा जो निर्विशेष से विशेष होने वाला जो चिदाकाश या परब्रह्म, वही क्या है, तो कहने लगे वो और कोई नहीं है तम गुरु, वही क्या है, कहा गुरु, ऐसे उस गुरु को अहम प्रणामि, मैं नमस्कार करता। अब कैसा गुरु है तो संकेत कर दिया, इसलिए आप आचार्य शंकर की स्तुति में बोलते हो, गुरु रात में दी। गुरु क्या है तो संकेत क्या किया, आत्मा इति गुरु। आत्मा ही क्या है, गुरु। क्यों आत्मा गुरु है, और फिर आगे मूर्ति भेद विभाग ने करके कर दिया उसको। आत्मा को गुरु क्यों कहा, तो गुरु शब्द का अर्थ भी आप लोग सुनते रहते हो। ग्री ग्रात अर्थ में धातु से गुरु शब्द बनता, जो निग्रण कर लेता है या निवारण कर देता है उसका नाम क्या है, गुरु। तो गु और रू को लेकर के ही कहा जाता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो प्रकाश अंधकार का निवारण कर दे, जो प्रकाश हमारे विशेषों को हटा दे, विशेषों से रहित कर दे, उसे क्या कहते हैं, गुरु। तो विशेष बनकर के विशेषों का राहित, क्योंकि नियम है कंटके नैव कंटकः कीर्णः, कांटे से ही कांटा निकलता। लेकिन वहीं पर एक वैशिष्ट्य और है, जिस कांटे को निकाला गया वो कांटा क्या था, कष्ट देने वाला, दुख देने वाला। इसलिए उस दुख की निवृत्ति के लिए, कष्ट के निवृत्ति के लिए उस कांटे को हमने निकाला। लेकिन कांटे को निकाला किसके द्वारा, तो कहा कांटे के द्वारा। तो कहने लगे जिस कांटे के द्वारा निकाला उसे उपयोगी मान लो, वो तो उपादेय हो गया, तो उसको क्या सुरक्षित रखते। कांटे से कांटा निकाल करके और उस कांटे को भी फेंक देते हो, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर संकेत करते हैं कि जिस विशेष को लेकर के, जिन विशेषों की निवृत्ति की गई, तो जिस विशेष से निवृत्ति की गई है ऐसे विशेष का भी त्याग कर देना। जैसे आप देखते हो अग्नि प्रज्वलित होती है तो किसको लेकर के होती, ईंधन को लेकर, लकड़ी को लेकर, और लकड़ी को लेकर के जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो कैसी हुई, विशेष अग्नि हो गई। लेकिन विशेष अग्नि ने क्या किया, जो लकड़ी आदि उपाधि विशेष थे उनको भस्म कर दिया, और उनको भस्म करके क्या वो अग्नि शेष रह गई, जो विशेष अग्नि थी वह अग्नि भी शांत हो जाती, उन विशेषों को शांत करके वह विशेष भी शांत हो जाती, फिर जो सामान्य अग्नि है वह अग्नि व्यापक रहती है। तो इसी प्रकार से यहां भी संकेत करते हैं, यहां जो चिदाकाश करके जिसका संकेत किया और फिर इससे विशेष रूप से अपतन शब्द से कह दिया, तो वह प्रकाश क्या करता है, हमारे उन उपाधिकृत विशेषों को समाप्त करके और स्वयं भी समाप्त हो जाते। इसलिए आचार्य शंकर क्या कहते हैं, गुरु नैव शिष्यः, न गुरु है और न शिष्य। लेकिन जब तक कंटक है और दुख दे रहा है तब तक उसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ऐसा जो गुरु, जो कैसा है, जो है तो चिदाकाश, लेकिन चिदाकाश होकर के जो क्या है, एक विशेष रूप में, मूर्त के रूप में, जो हमारे यहां एक उपाधि को समन्वित होकर के, उपहित होकर के है, ऐसे उस गुरु को। तो इससे सिद्ध हो गया कि गुरु शब्द का तात्पर्य हुआ कि जो स्वयं आत्मज्ञ है, ऐसे उस आत्मज्ञ गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। ये संकेत की, किस लिए नमस्कार करते हो, तो उसी को संकेत ऊपर कर दिया। वो गुरु क्या है, तो सर्वासा भास्कर, संपूर्ण आशाओं को, संपूर्ण कामनाओं को प्रकाशित करने वाला, उसके बगैर कोई कामना प्रकाशित भी नहीं हो। तो सारी कामनाओं को प्रकाशित करता है और प्रकाशित करके क्या करता है, ध्वान्तम, उन सारी आशाओं को प्रकाशित करते हुए उन आशाओं को मने क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उनका अंत कर देता। और उनका अंत जब कर देता है तो क्या होता है, संपूर्ण आशाओं से मुक्ति
1: मिल जाती,
0: संपूर्ण कष्टों से मुक्ति
1: मिल जाती।
0: तो ऐसे जो गुरु हैं जो हमारी समस्त आशाओं को, समस्त कामनाओं को निवृत्त करने वाले, उन्हें प्रकाशित करते हुए और निवृत्त करने वाले हैं, और जो कैसे हैं तो वास्तव में जिनका स्वरूप यथार्थ में चिदाकाश रूप है, लेकिन वो उनकी निवृत्ति के लिए उपाधि को ग्रहण करने वाले, ऐसे उन गुरु को मैं नमस्कार करता। ये मंगलाचरण किया, और इस मंगलाचरण को करके ये तो ऋषि प्रणीत मंगलाचरण हो गया। अब वैदिक मंगलाचरण करने जा रहे, वैदिक मंगलाचरण करते हुए संकेत करते, जिसे शांति पाठ शब्द करके कहते हो, तो वो शांति पाठ यहां क्या किया, तो ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमः शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इत्यादि करके और संकेत कर, और फिर मैंने वक्ता श्रोता की रक्षा की प्रार्थना। तो अब यहां पर संकेत किया ओम, तो ओम जो है इसके दो रूप है, एक तो रूढ़ी ओम है और एक यौगिक ओम है, योग रूप। रूढ़ी ओम जिसमें उकार बना करके अनुस्वार रखते हैं वह रूढ़ी ओम बोला जाता, रूढ़ी का मतलब छांदस माने वेद कृत, जिसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता न, परिवर्तन न संवर्धन कुछ भी नहीं किया जा सकता, अर्थात जो समस्त क्रियाकलापों से रहते और जिसे ब्रह्म का प्रतीक माना गया, क्या माना गया प्रतीक, कहीं कहीं पर तो उसे ब्रह्म ही कह दिया, क्यों, प्रणवो ही निर्दिष्टो ब्रह्म, प्रणव क्या है, कहा ब्रह्म का अत्यंत समीपी है, ब्रह्म को लक्षित करने वाला है। तो ऐसा जो ओ, तो प्रणव शब्द का भी अर्थ कर दिया गया, प्रणव किसे कहते, तो प्राणान नामयति प्राणमयति इति प्रणव, जो हमारे प्राणों को नम्री भूय बना दे, जो हमारे प्राणों को झुका दे, उसका नाम क्या है, प्रणव। ओम के उच्चारण से हमारे प्राण कमजोर होते, नम्र हो जाते हैं, और ये नियम है उपनिषदों में, आप लोग सुनते रहते हो, इंद्रियों के विवाद में सर्वश्रेष्ठता किसकी सिद्ध हुई, तो प्राण की। तो प्राण के बल पर ही सारा कार्य होता है, चाहे मन हो, बुद्धि हो, चाहे इंद्रियादि हो, इन सब की क्रिया किस पर निर्भर है, प्राण शक्ति पर। तो ऐसे प्राणों को झुका देने वाला कौन है, का ओम, और जब उनको झुका देता है तो हमारा मन भी नम्रीभूत हो जाता है, और बुद्धि में भी नम्रता आ जाती है, इंद्रियों में भी नम्रता आ जाती है, और जब इनमें नम्रता आ जाती है, इनके विनम्री भाव में ही क्या होता है, तो आप कहते हो कि निर्मल मन, तो निर्मलता क्या, इसका विनम्र होना, उसमें ही इस तत्व का साक्षात्कार होता, उस प्रकाश का जो है साक्षात्कार होता, या प्रकाश का अपरोक्ष होता। जब तक ये मन हमारा नम्रीभूत नहीं होता तब तक प्रकाश का साक्षात्कार नहीं होता। तो इसलिए यहां पर जो है ओम शब्द को लिया। अब यौगिक ओम क्या है, तो उसके अंतर्गत श्रुतियों में संकेत किया, अकार उकार मकार, पहले उसकी तीन मात्राओं को संकेत किया। मात्रा शब्द का अर्थ ही होता है मियते इति मात्रा, जिसके द्वारा माप किया जाए, जिसके द्वारा नापा जाए, मान किया जाए, उसका नाम क्या है, मात्रा। तो अब जो है अकार मात्रा, उकार मात्रा और मकार मात्रा, अकार उकार को लेकर के संगीता होने के कारण संधि हो गई और संधि हुई तो हाथ गुणा सूत्र से गुण संधि हो गई तो बन गया ओ, है ना। और नियम है कि अजीनम परेण संयोज्यम, जो व्यंजन स्वर से हीन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पूर्व स्वर वर्ण में संयुक्त हो जाते हैं। और ये भी नियम है कि बगैर स्वर के किसी व्यंजन का उच्चारण भी संभव नहीं। तो इस प्रकार से मकार जो है वहां संयुक्त हो गया तो बन गया ओम। अब ये ओम जो है योगिक योग, ये हमें क्या बतलाता, तो मात्राओं की कल्पना की। तो उस छांदस ओम से ही इस योगिक ओम को ग्रहण किया, और जब योगिक योम को ग्रहण किया तब वह योगिक योम क्यों ग्रहण किया गया, तो उसका तात्पर्य बतलाया, जिसे गायत्री मंत्र में संकेत किया ओम, और आगे संकेत किया भूर्भुव श्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करके कहा। तो वहां कहा कि ओम, अब ओम से क्या समझे, तो वहां पर ओम को समझने के लिए, ओम में एक व्यवहारिकता लाने के लिए, व्यवहारोपयोगी बनाने के लिए, अर्थात उसका अवबोध करने के लिए, उस ओम से ही उनकी मात्राओं से क्या किया, व्याहृति। और व्याहृति का मतलब ही है व्यवहार के लिए, व्याहृति निकली। तो व्याहृति क्या निकली, तो अकार मात्रा से भू नाम की व्याहृति, उकार मात्रा से भुवा नाम की व्याहृति, और मकार मात्रा से स्व नाम की व्याहृति। ये तीन व्याहृतियां उससे तीन मात्राओं से निकाली। तो ये सब क्या है, ये मान ही तो है, मापना ही तो है। अब जब इसको लिया गया तो कहा इसका तात्पर्य क्या हुआ, तब उसके तात्पर्य को बतलाया, भू शब्द जो है, जब भू को हम धातु अर्थ में लेते हैं, मूल अर्थ में ग्रहण करते हैं, तो संकेत किया गया भुवादयो धात्वा सत्ता वाची क्रिया वाचिनश्च। भू नाम की जो धातु मूल प्रकृति वो क्या है, का द्व्यर्थक है, उसके दो अर्थ हैं। एक तो उसका अर्थ है सत्ता और दूसरा अर्थ है क्रिया। जब हमने भू धातु को सत्तार्थक ग्रहण किया और सत्ता अर्थ ग्रहण करके भू जो शब्द बना पद बना, आगे बतलाएंगे इसमें शिक्षा में, तो जब जो है हमने उस भू शब्द को जो भू धातु से ही निर्मित है और उसको ग्रहण किया, तो भू शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो भू शब्द का अर्थ हुआ भू माने पृथ्वी। भू शब्द का अर्थ क्या हुआ, भू माने पृथ्वी। क्योंकि सत्ता अर्थ है तो सत्तार्थ का ही अर्थ होगा, क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते, जो कारण के गुण हैं वही क्या आते हैं कारण में। स्वर्ण जैसे आभूषणों का कारण है, तो स्वर्ण के अंदर जो तेजसत्व है, स्वर्ण के अंतर्गत जो पीतत्व आदि है, वो गुण कहां आएगा, उन आभूषणों में भी आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहां भी संकेत किया, अब जो है भू शब्द का अर्थ सत्ता अर्थ लेकर के हमने भू शब्द का अर्थ किया भू माने पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है, तो व्यावहारिक रूप से एक सत्तार रूप है, उसका उसकी सत्ता है। तो इसलिए सत्ता, और सत्ता किसकी होती, तो ये संकेत करती, क्या करती है कि जो सत्य पदार्थ, यहां पृथ्वी व्यावहारिक सत्य है, लेकिन यहां पर संकेत लेना है आगे पारमार्थ। तो अब जो सत्तार्थक पदार्थ होता है वो किसका संकेत करता, सत्य पदार्थ का संकेत करता। तो इससे भू शब्द से क्या निकला, भू शब्द का अर्थ हुआ सत पदार्थ। भू शब्द का क्या अर्थ हुआ, सत पदार्थ। अब आगे शब्द आया उकार से, हमने भुवा नाम की व्याहृति ली, भुव शब्द का अर्थ क्या है, तो भावयत इति भुव। अब ये क्रियार्थक हो गया, माने जहां पर भावना की जाए, जहां पर विचार किया जाए, और विचार किस में होगा, भावना कहां होगी, तो जड़ में तो होगी नहीं, मन में भी नहीं होगी, लेकिन मन भी करता तादात्म्य से, तो किस पदार्थ में होगी, चैतन्य में होगी, प्रकाश में होगी, जड़ता में भावना नहीं। चेतन पदार्थ में ही भावना संभव हो सकती, जड़ पदार्थ में कोई भावना नहीं हो। तो अब जो है भुव शब्द जब क्रियार्थक लिया तो भुव शब्द कैसा हुआ, भावनार्थक है ना, विचारार्थक, और विचारार्थक हुआ तो वो विचार तो होता है चित प्रधान तत्व से। तो इसका मतलब क्या हुआ, भुव शब्द ने संकेत किया माने चित पदार्थ, भू ने संकेत किया सत पदार्थ, भुव ने संकेत किया चित पदार्थ। और इस प्रकार से जब सत और चित ये दो शब्द हमारे सामने दो व्याहृतियों से आए, तीसरी व्याहृति जो है कही गई स्व। अब स्व शब्द जो है शब्द अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते, कहीं स्व शब्द का ज्ञाति अर्थ है, कहीं स्व शब्द का आनंद अर्थ है, और इस प्रकार से स्व शब्द के कहीं पर जो है अपना अर्थ भी लिया जाता। तो इस प्रकार से उसके अर्थ हैं, लेकिन कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए, तो आप जानते हो संगति के अनुसार ही अर्थ को ग्रहण किया जाए। अब यहां पर हम अपना आदि अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो उतनी अच्छी संगति नहीं बैठती, लेकिन आनंद शब्द जो है सत चित के साथ में संगत होता। तो स्व शब्द का अर्थ क्या लिया, आनंद। तो सत चित और आनंद, सच चिच्च आनंदश्च इति सच्चिदानंद, ये द्वंद समास कर देने पर फिर क्या घटित होता है, सच्चिदानंद। तब अर्थ किया जाता है गायत्री मंत्र में ओम सच्चिदानंद परमात्मा, ऐसा लिखा देखते आप। तो ये सच्चिदानंद कहां से आ गया, ओम को सच्चिदानंद कैसे कहा, तो उसकी व्याहृतियों ने इस यौगिक रूप से इस चीज को बतलाया। तो ओम क्या है, सच्चिदानंद परमात्मा। अब इतना बतलाने की बात फिर आगे चले तो आगे क्या कहा, तत् तत् शब्द का प्रयोग किया, भूर्भुवस्व तत्। तत् क्या है, तो हिंदी में जिसे ओह कहते तत् तद् जस्तु आदि हो के तद भी बनता, तो ओह और ओह जब संकेत करते तो ओह माने कौन, तो उसका नाम ले देते, नाम क्या है, एक संज्ञा है। अब जहां पर संज्ञा का प्रयोग न किया जाए और उसके बदले में किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हो, सर्वनाम। तो वैसे ही यहां पर जो सच्चिदानंद संज्ञा दी गई उसका प्रयोग न करके और क्या प्रयोग कर दिया, तत्। तत् माने ओह, कौन, कहने लगे वही सच्चिदानंद परमात्मा, कौन, जिस ओम को जिसको संकेत किया, वही सच्चिदानंद परमात्मा तत् शब्द से हो गया। क्या है, तो आगे संकेत किया सवितुः, वो सच्चिदानंद परमात्मा ऐसा जब कहते हैं तो साकांश पद है, माने क्या, तो उसके लिए कहा सवितु, वही सवितु है, सवितु षष्ठी व्यक्ति का रूप। तो सवितु, सवित्री आप कहते हो सूर्य को, माने वही क्या है, सूर्य है, सविता है। तो सविता है से क्या मिलेगा, तो ऋग्वेद के भाष्य में संकेत किया सविता प्रसविता इत्यर्थ। ये सविता क्या है, कहने लगे यही सारे संसार का प्रसव करने वाला, सारे संसार की सृष्टि करने वाला सृष्टा कौन है, तो कहा सविता। इसलिए उसका नाम क्या रखा, कहा वही सच्चिदानंद रूप जो परमात्मा, वही क्या है, सारी सृष्टि का सृष्टा है। यथले आप जानते हो जहां पंचभूतों को लेकर के पंचीकरण प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए और संसार की सृष्टि को माना, वही पर श्रुतियों के अंतर्गत सामवेदी आदि श्रुतियों के अंतर्गत छांदोग में चर्चा आई, तत् तेजो अब अन्ना दया सृजा, क्या संकेत किया, वहां आदित्य के प्रसंग को लेकर के चर्चा की, तत् माने उसी से, अर्थात किससे, उसी आदित्य से, उसी सूर्य से, क्या हुआ, तेजो अब अन्न आदि, तो तेज माने अग्नि, अब शब्द का रूप है तो माने जल, और अन्न पृथ्वी का वाचक है, वहां माने उसी से तेज अग्नि और जल और पृथ्वी ये तीन तत्व पैदा हुए, और तीन तत्व पैदा हो करके त्रिविधीकरण को लेकर इनको सूक्ष्मता के कारण जो है वायु और आकाश को वहां कथन नहीं किया और वहां त्रिविधीकरण को लेकर के सृष्टि को स्वीकार कर लिया, कहां श्रुति के अंदर। और भौगोलिक प्रक्रिया के अनुसार, वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार भी हमारे यहां चर्चा की जाती है कि सूर्य से टुकड़ा टूटा और वो नीचे आया, और नीचे आया तो नीचे आकर के फिर उसमें ठंडक आई और ठंडक हादी आई, कहीं पर गर्म रहा कोई भाग ठंडा रहा तो सिकुड़न भी पैदा हो गई, तो कहीं दर्रे बन गए, झीले बन गई, कहीं पर भाग उठ गया तो पर्वत बन गया, कहीं समतल भूमि हो गई, ये सारा हुआ, ये निर्माण हुआ। और फिर उस पर वनस्पति आदि हो गई और वनस्पति औषधि होकर के ये सारे प्राणी सारी सृष्टि हो गई, ऐसा वैज्ञानिक भौगोलिकों का भी मत। तो इस प्रकार से वहां सृष्टि, इसलिए यहां संकेत किया कि तत्सवितु, उसे सवितु को प्रतीक रूप से लिया। लेकिन कौन है मूल में, तो ओम सच्चिदानंद परमा।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Shvetashvatara Upanishad, chhatha mantra hai. Agnir Yatra Vimachyate.

తత్ర సంజయతే మనః. అవి ప్రసంగ చల శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషద్ కే దూసరా అధ్యాయ కా ఛఠా మంత్ర హై. ఇస్ మంత్ర మే క్యా బతాయ జా రహా హై, క్యా లాయ్? ఇస్ మంత్ర మే బతాయ జా రహా హై ధ్యాన్ కహా కర్నా చాహియే. ये ध्यान का प्रकरण है, क्या लय? हाँ, ध्यान का प्रकरण है. पहले मंत्र था झुंझानो प्रथम मनः, पहले मंत्र पांचवा अध्याय के देखो, आर्या दूसरा अध्याय के पांचवा मंत्र देखो. झुंझानः प्रथम मनः तत्वाय सविता धियः, आया कि नहीं? जोड़ो, क्या जोड़े? प्रथम मनः झुंझानः, कस्मै झुंझानः? तत्वाय, मन को जोड़ो. हे सविता देव, सविता भी ईश्वर के नाम है, याद रखना, परमात्मा का नाम है. हे परमात्मन, मेरा मन को तत्व के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, तत्व प्राप्ति के लिए परमात्मा से जोड़ो. जोड़ना क्या है? टूटा हुआ है क्या? टूटा हुआ व्यक्ति जोड़ा जाता है. तो जोड़ने का मतलब होता है तद्विशेष चिंतन करना, है ना बात? जोड़ने का मतलब वो परमात्मा विशेष जो चिंतन है, चिंतन में लगाओ. मेरा मन क्या करे? परमात्मा के ब्रह्म चिंतन में, परमात्मा चिंतन में, तत्व चिंतन में लग जाए. ये आपको बतलाया, केवल इतना चाहिए. धियः, धिय माने बुद्धि. बुद्धि का मतलब यह बुद्धि उपलक्षित सब इंद्रिया. इंद्रिया भी हमारे तत्व चिंतन में लग जाए. मतलब इंद्रिया का अर्थ हुआ इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता. इंद्रिय के जो अधिष्ठात्री देवता है कि नहीं? जैसे हमारा नेत्र है, नेत्र के अधिष्ठात्री देवता कौन है? सूर्य है. और मन के अधिष्ठात्री देवता कौन है? चंद्रमा. इसी प्रकार एक एक इंद्रियों का एक एक अधिष्ठात्री देवता है. उन देवता को भी हम इंद्रिय उपलक्षित तत् तत् देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इंद्रियां, हमारा मन, हमारे बुद्धि परमात्मा में लग जाए. लगाना माने तत् तत् चिंतन करना. तो इस बात को पहले मैं बतलाया, झुंझाना प्रथम मनः तत्वाय, मिला सवितः धियः अग्ने ज्योतिर्निशाय पृथ्वी अध्यामन. अब इसी बात को यहां बताते हैं. झुंझाना प्रथम मनः, छठा मंत्र की भूमिका में मिला. झुंझाना प्रथम मनः इत्यादिना सवितराधि प्रार्थना प्रतिपादिता. इत्यादि मंत्रों के द्वारा भगवान सविता से प्रार्थना की गई है. क्या प्रार्थना? क्यों? हमारे मन जो है, हमारा इंद्रिय जो है, इंद्रिय उपलक्षित देवताएं हैं नहीं बात? ईश्वर चिंतन में, आत्मचिंतन में लग जाए. अब कहते हैं यस्तु पुनः प्रार्थना अकृत्वा. अभी प्रार्थना जो नहीं किया, मान लो कि हमने प्रार्थना नहीं किया और ध्यान में बैठ गया, तो हानि क्या है? क्यों जरूरत है? हे अमृतस्य पुत्राः, आगे आए ना इसी पहले के मंत्र में, शेर बंतु. आप सुनो सुनो सुनो हे देवताओं, हे अमृत के पुत्र, दिव्य लोक में रहने वाले, हमारी प्रार्थना सुनो और हमकी अनुज्ञा दो, हमारे प्रार्थना का स्वीकार करो कि हम ध्यान में बैठ रहे हैं, योग में बैठ रहे हैं. तो पूछा गया, अगर देवताओं की प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? ना करके बैठ जाए तो
तो कहते देवताओं के प्रार्थना किए बिना यदि बैठोगे तो उसमें विघ्न आ जाता है, रुकावट आ सकता है, प्रतिबंधक आ सकता है, क्योंकि किसी भी शुभ कर्म के प्रति मंगलाचरण करते हो कि नहीं, शुभ कर्म के प्रति मंगलाचरण होता है। ऐसे तो बोलते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ मंगलम पुनर्याक्ष मंगलायतन हरि, सब मंगल ही मंगल है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधगे सर नेत्र मगे गौरी नारायण नमस्तुति, ऐसे बोलते हैं ना मंगलाचरण। आपको तो जब तुम नहीं करोगे, बड़ा का आशीर्वाद नहीं लोगे, बड़ा का अनुज्ञा नहीं लोगे, तो तुम्हारे ध्यान में विघ्न आ जाएगा। हाँ, ये बात बता रहा है। देखो यस्तु पुनः प्रार्थना मकृत्वा, प्रार्थना किए बिना, है नहीं बात, प्रार्थना शेरबंधु विश्व अमृतस्य पुत्रा, इसका मतलब समझ में आए ना, हे अमृत के पुत्रों, अमृत के पुत्र कौन है, ये ऋषियों से प्रार्थना, देवलोक में रहने वाला देवर्षियों से प्रार्थना, मर्त्यलोक में रहने वाला ब्रह्म ऋषियों से प्रार्थना, बड़े बड़े ऋषियों से, बड़े बड़े देवताओं से प्रार्थना की जाती है। हमारे यहाँ सप्त ऋषि आएंगे नहीं, कोई भी काम करो ऋषियों की पूजन करना पड़ता है, काम करो ना ऋषि पूजन करो, दिव्य देवता के पूजन करो। हाँ, सारा देव्य दसों देवों से दसों दिशाओं का जो देवता है उनकी पूजन करना पड़ता है, स्थान देवता की पूजन करना पड़ता है, वास्तु देवता की पूजन करना पड़ता है, क्यों, इनको खुश करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, तो उसको अनुज्ञा लेकर आप शुभ कर्म करते हैं। ये बात इसमें बता रहे हैं, हे अमृत के पुत्र श्रीवंतो, कौन से ये अमृत के पुत्र कहाँ रहता है, आगे बतलाया गया, धामानी दिव्यानी तस्तो, ये दिव्यानी धामानी तस्तो, दिव्य धामों में रहने वाले। दिव्य धाम क्या है, दिवी भव दिव्य, दिवी मानी ज्योतिर्मय, दीप कहते ज्योति को, देवलोक में रहने वाला, ज्योतिर्मय लोक में रहने वाला देवता देवर्षि आदि है, मर्त्यलोक में रहने वाला ब्रह्म ऋषि आदि है, ये सबसे प्रार्थना की जाती है। दिव्यानि प्रार्थना मकृत्व तैर अनुज्ञात संयोगे प्रवर्तते स भोग हेतु तो कर्मये प्रवर्तते, तो योग में जो प्रवृत्त होता है उनका भोग के हेतुभूत हो जाता है। मतलब क्या है, परमार्थ में न लाग करके व्यवहार में योग आदि में लग जाए, किसके लिए है ये, देखो योग तो करता है, योग है ये, हिरण्याक्ष ने 100,000 वर्ष तपस्या की, योग किया हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु 100,000 वर्ष तपस्या किया। अभी यो तो पुराणों में देखो भगवान विष्णु 3.5 लाख दिव्य वर्षों तक तपस्या की, 3.5 लाख दिव्य वर्ष हमारे वर्ष नहीं है, इसी प्रकार शंकर ने, इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने तपस्या की, लक्ष्मी ने किया, पार्वती ने किया, 100,000 वर्ष तपस्या की। तपस्या करने के बाद में क्या हुआ, दिव्य भोग मिला उनको, विष्णु लोक की प्राप्ति हुई।

मर्त्य भोग, पितृलोक का भोग, गंधर्व लोक का भोग, अनिवार्य ये सब भोग अलग अलग है। जो जिस लोक में जाना चाहते तद विषय उपासना करे, तद विषय का अभ्यास करे तो वो लोग उसको मिलता है। अगर यदि तुमने देवताओं की अनुज्ञा के बिना अभ्यास शुरू कर दिया तो तुम्हारे को क्या मिलेगा? कहते भोग मिलेगा। और यदि देवताओं की अनुज्ञा लेकर के तुमने योग में अभ्यास किया तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का अभ्यास। इस बात के लिए यह प्रार्थना करते हैं, भोगो हेतु हो कर्मण्येव प्रवर्तते। तो कर्म में ही इनकी प्रवृत्ति होती है। तो कौन सा कर्म? तो ये बतला रहे अग्निहोत्र अग्नि जत्र अभिमिच्छते, वायुर्जत्र अधिरुध्यते, सोमो जत्र अतिरिच्छते, मेरा मन तत्र संजायते। मेरा मन कहाँ लगे? मन को कहाँ निवेश करना चाहते हो? तो उससे यही है। यहाँ बोलते हैं हम आपने ध्यान करना चाहते हैं ध्येय वस्तु में। अभी पहले तो ध्यान बतलाया था आपको, ध्यान तिलेशु तैलम ददनी व सर्पिर आप स्रोत सरणशु अग्नि आया कि नहीं यार? तिलेशु तैलम परमात्मा कहाँ रहे? देखो परमात्मा का दो स्वरूप है, याद रखना। यह उसमें ही बतला गया, एक सामान्य स्वरूप है, एक विशेष स्वरूप है। अली बात परमात्मा का दो स्वरूप है, सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप। तो सामान्य स्वरूप कैसा है और विशेष स्वरूप कैसा है? जैसे अग्नि है ना, अग्नि, अग्नि का दो स्वरूप है, एक सामान्य अग्नि और विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि जैसे तिलेशु तैलम दधनी व सर्पिर आप स्रोतसु अरणिषु अग्नि, तिल में तेल है, दही में घी है, आने बात स्रोतों में जल है और अरणि में अग्नि है। अरणि तो देखने में आता है, लकड़ी के अंदर अग्नि है देखने में आता है, क्यों? वो सामान्य अग्नि है। तो अग्नि लकड़ी के अंदर है, आने बात अग्नि हमारे शरीर में है। अग्नि जथई का भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूप बहुव एकस तथा सर्वभूत अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिष्य। जैसे एक ही अग्नि भूमंडल के अंदर प्रविष्ट होकर के तत्त्व रूप हो गया, पर अग्नि देखने में नहीं आता, अग्नि का आश्रय देखते हो, है बात। तो सामान्य अग्नि व्यापक है, सामान्य अग्नि व्यापक है, आप विशेष अग्नि प्रत्यक्ष है। तो आपका सामान्य अग्नि चाहिए कि विशेष अग्नि चाहिए? तो जैसे अग्नि सामान्य होने से व्यापक है और किसी का विरोधी नहीं है, किसी का विरोधी कौन होगा? विशेष अग्नि। जैसे मासिस में आपका अग्नि है, मासिस के तिल्ली में अग्नि आएगी नहीं, परंतु प्रकृत आपका जेब नहीं जलाता है, जेब में रख तो जलता है, पर अग्नि है कि नहीं? अगर यदि अग्नि नहीं होता आप रखते क्यों उसको? तो जैसे अग्नि मासिस के अंदर होता हुआ भी देखने में नहीं आता है, जल के अंदर अग्नि होता हुआ भी जल में देखने में नहीं आता है, लकड़ी के अंदर होता हुआ भी देखने में नहीं आता है, भूमंडल के अंदर अग्नि होता हो देखने में नहीं आता है, उसको कहते हैं सामान्य अग्नि। विशेष अग्नि कौन? जब मासिस को घर्षण करोगे प्रकट होगा, उसी अग्नि से तुम अगरबत्ती जला सकते हो, बीड़ी सिगरेट जला सकते हो, आने बात उसी से कर सकते हो। सामान्य अग्नि से तो जलेगा नहीं ना अगरबत्ती, जलेगा? तो कौन सा अग्नि चाहिए अगरबत्ती जलाने के लिए? ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे जो है ना अज्ञान की निवृत्ति करता है,

0: अविद्या की निवृत्ति करता है, तुमको मोक्ष देता है, पर कौन अग्नि देगा, परमात्मा देगा? क्योंकि सामान्य चेतन जो है ना, सामान्य चेतन जैसे तिल में तेल है पर देखने में नहीं आता, घर्षण किए बिना तेल जो है ना प्रकट नहीं होता है। दही में मक्खन है पर मक्खन होता हुआ भी देखने में नहीं आता, जब तुम इसको मंथन करोगे तो मक्खन प्रकट होता है। ऐसे ही परमात्मा व्यापक होता हुआ भी, हमारे भीतर होता हुआ भी हमारे अज्ञान को मिटा नहीं सकता। क्यों? उसके साथ इसका विरोध नहीं है। उसके साथ जैसे अग्नि के साथ लकड़ी का विरोध नहीं है, सामान्य अग्नि के साथ बस इसका विरोध नहीं है। विरोध को होगा प्रकट करोगे। ऐसे परमात्मा सब जगह में है, तो हमारे भीतर भी है, तो हमारे अज्ञान को, हमारे अविद्या को, हमारे दुखों को क्यों नहीं मिटा सकता? तो इसको विशेष रूप में प्रकट करना पड़ता है, सामान्य से विशेष रूप में प्रकट करना पड़ता है। धन्यवाद। सामान्य चेतन को क्या करोगे? तो कैसे करोगे? साधन के द्वारा। तो साधन क्या है? आप अलग अलग अलग अलग अलग अलग साधन की प्रक्रिया है। अधिकार की भेद से साधन की प्रक्रिया में भिन्नता होती है। एक व्यक्ति सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करता है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करता है, वो ये जो तीन साधन यह बता रहा है ना, ये तीन साधन, ये तीनों से परे है। और एक व्यक्ति कर्म गाय कर्म करता है, वो भी साधन करता है, पर ये परंपरा साधन है। कर्म जो है ना, ये परंपरा साधन है। फिर जो ध्यान आदि है, उपासना आदि है, ये परंपरा साधन है। इसके बाद जो साक्षात साधन होगा वो महावाक्यों के द्वारा प्राप्त होगा। साक्षात साधन, तो कर्म कौन सा साधन है? परंपरा साधन है, याद रखना। एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग साधन, साक्षात साधन। ये कर्म परंपरा साधनों में आता है, बहिरंग साधन। आने बात आवे, आपको मन को कहाँ लगाना है, ये प्रश्न हुआ। हमने पूछा कहाँ लगाए मन, तो ये श्रुति कहती है मन कहाँ लगाना चाहते हो? अग्नि जत्र अभिमिच्छते है, जहां अग्नि का मंथन होता है। अग्नि का मंथन होता है का मतलब कर्मकांड में अग्नि का मंथन होता है, यज्ञ होता है, हवन किया जाता है, अग्नि मंथन होता है। वो यज्ञ तभी होगा ना जब मंथन करके अग्नि को प्रकट करोगे। तो अग्नि मंथन कहाँ होगा? जहां अग्नि होगा वहां से मंथन करोगे। जल को मंथन करने से अग्नि प्रकट होगा क्या? जिसमें अग्नि रहेगा उसी को मंथन करोगे तो वहां से अग्नि प्रकट होगा, दूसरी जगह से नहीं। ऐसे परमात्मा जहां रहेगा वहां ध्यान निर्मथनाभ्यास देवम पश्य निगूढ़वत। आया कि नहीं आया? कहाँ आया? अरे इसी में आया नहीं, कठोपनिषद में जाते हो। ये क्या पढ़ा आपने? इसमें श्लोक देखो, पहले आना है। स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्राणवम स उत्तर अरणिम ध्यान निर्मथनाभ्यास देवम पश्य निगूढ़वत्। चौदहवा श्लोक है, दूसरा पहले अध्याय का चौदहवा श्लोक है। स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्राणवम स उत्तर अरणिम ध्यान निर्मथनाभ्याम देवम पश्य निगूढ़वत। निगूढ़ माने छिपा हुआ, तो छिपा हुआ का मतलब जैसे तिल में तेल छिपा हुआ रहता है, दूध में दही में घी छिपा रहता है, अरणि में अग्नि छिपी रहती है, ऐसे परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। तो कैसे प्राप्त करोगे? अपने शरीर को अरणि बनाओ, स्वदेहम अरण्यम कृत्वा प्राणवम स उत्तर अरण्यम। प्राणव मानी ओंकार, प्रकर्षेण नुयते स्तुयते इति प्राणव, प्रकंस न नास्ति व उष्माकम इति प्राणव। हाँ, जो प्र माने प्रभंस, न माने नास्ते, वह माने उष्माकम। साधक के अंदर जो प्रणव के जप करने वाला के अंदर से ये प्रपंच हमेशा के लिए मिट जाता है, इसलिए इनका नाम रखा प्रणव। इसको ओंकार भी कहते, प्रणव भी कहते हैं, आने बात उद्गीत भी कहते हैं, उद्गीत। हाँ, उद ऊर्धम गियते गायते उद्गीत। ये प्रणव उच्चारण कैसे किया जाता है? उच्च स्वर से।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

धीये जनकाय नमः चारुविश्शल्याय नमः लोकशल्यकृते नमः चतुर्वेदाय नमः चतुर्भावाय नमः चतुराय चतुरप्रियाय नमः आम्नायाय नमः समाम्नायाय नमः

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ശിവായ. യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു ശൈവം ഡോട്ട് ഓർഗ് റേഡിയോസ്, 24/7 സ്പിരിച്വൽ ചാനൽസ് ഫ്രം ശൈവം ഡോട്ട് ഓർഗ്. ഓം നമ ശിവായ.
1: ഓം നമ ശിവായ. ഡിയർ ലിസണേഴ്സ് ഓഫ് ശൈവം ഡോട്ട് ഓർഗ്, ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സ്. ഇൻ ദിസ് യു ആർ അബൌട്ട് ടു ലിസൺ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം, പ്രസന്റഡ് ബൈ സ്വാമി ശ്രീ ആത്മാനന്ദ് ഗിരിജി മഹാരാജ്. താങ്ക് യു. ഓം നമ ശിവായ.
2: പ്രിയ നമസ്കാർക്ക പ്രസംഗത ഭഗവാൻ ശിവ ദക്ഷിണാമൂർത്തി ക്യൂ ഹുയേ ഓർ ഭഗവാൻ ശിവക്കോ ശിവകൈ രൂപമേ ന മാൻകർ ദക്ഷിണാമൂർത്തി രൂപമേ ക്യൂ ലിയ ഗയ ഓർ ദക്ഷിണാമൂർത്തി രൂപക്കോ ക്യൂ ശങ്കരാചാര്യജി ഇത്ന മഹത്വം ദത്തെ ഹെ. ഹാലി ഭഗവാൻ ശിവ കാ അന്യ രൂപ ഹെ ഓ ശിവാനന്ദ ലഹരി മേ സബ് സ്പഷ്ട ഹുവാ ഹെ. ലക്കിൻ ശിവാനന്ദ ലഹരി മേ ജോ ശിവ കാ സ്വരൂപ സ്പഷ്ട ഹുവാ ഹെ, ഉസ്സെ കുച്ച് ഹട്ട് കർ ഹെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്ര മേ ഉസ് ശിവ കാ ഭിന്ന രൂപ കേ രൂപ മേ പ്രസ്തുത കിയാ ഗയാ ഹെ. ദക്ഷിണാമൂർത്തി മേ തോ സഗുണ സാകാർ കാ പ്രതിപാദന കിയാ ഹെ. ശിവാനന്ദ ലഹരി മേ, ശിവാനന്ദ ലഹരി മേ തോ സഗുണ സാകാർ കാ ഭി പ്രതിപാദന കിയാ ഹെ, സ്വരൂപ വർണ്ണൻ കിയാ ഹെ. और सगुण निराकार का भी है. प्राय करके शिवानंद लहरी में सगुण साकार और सगुण निराकार दोनों स्वरूपों का प्रतिपादन करते हुए शिव भक्ति की है. लेकिन दक्षिणामूर्ति में शुद्ध निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए शिव भक्ति की है. आप लोग कभी प्रसंग हो शिवानंद लहरी पढ़ें, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है. बिल्कुल संवाद के रूप में, इतने विनम्रता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं शंकराचार्य जी. यहां तक कह देते हैं कि जैसे कोई बेटी अपने मां के सामने कोई बात नहीं छुपाती है, कोई दर्दी रोगी अपने डॉक्टर के सामने कोई बात नहीं छुपाता है, कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के सामने कोई बात नहीं छुपाता है, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के सामने कोई बात नहीं छुपाता है, इसी तरह भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने कोई बात नहीं छुपाते. बिल्कुल बाल लीला जैसे एक प्रेमी की तरह, एक बालक की तरह, एक बच्चे की तरह प्रस्तुत होते हुए कहते हैं संवाद के रूप में. लेकिन यहां वो चीज नहीं है, क्योंकि वहां सगुण साकार का रूप है, इसलिए उनको सगुण साकार दिख रहा है. और सगुण साकार जो दिख रहा है तो हम आपके सामने जैसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, ठीक उसी तरह संवाद कर रहे हैं. एक बार की बात है, शिवानंद लहरी का थोड़ा सा संकेत कर दूं. एक समय की बात है, भगवान शंकराचार्य जी को भगवान शिव का किरात रूप दिखाई पड़ा. किरात रूप का अर्थ है हाथ में धनुष बाण लेकर जंगल में आखेट के लिए, शिकार के लिए निकलने का रूप, जो किरात रूप है. भील, कोल, किरात है ना? तो वो रूप दिखाई पड़ा. भगवान शंकराचार्य जी ने पूछ लिया शिव जी से कि महाराज किधर जा रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि जंगल में जा रहे हैं, कुछ शिकार खेलेंगे. बोले महाराज आपको शिकार ही खेलनी है, धनुष बाण है. तो आप ईमानदारी से बताओ कैसे पशु चाहते हो, सीधे साधे निरीह, निर्दोष, शुद्ध, शांत ऐसे पशु को मारना चाहते हो कि कुछ बदमाश टाइप के, उद्दंड टाइप के पशु को मारना चाहते हो? भगवान शंकराचार्य शिव जी तो असमंजस हो गए, क्या प्रश्न किया तुमने ऐसा? सामने जो पशु आ जाए उसको मारेंगे, हमारा प्रयोजन है? नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं। वो सीधे साधे पशु को मारकर क्या फायदा हुआ आपको? दो चार कुछ खाने के लिए मांस मिल जाएगा, इतना ही ना है? तो उस प्रयोजन के साथ साथ और भी प्रयोजन सिद्ध हो जावे ऐसा पशु मारो। तो क्या बोले, जो पशु उद्दंड हैं, उच्छृंखल हैं, अमर्यादित हैं, अनियंत्रित हैं, सारे जंगल में अशांति मचा रहे हों, तो ऐसे पशु को मारोगे तो खाने के लिए मांस भी मिल जाएगा, जंगल में शांति भी हो जाएगी, और क्या? दो फायदा, एक तीर से दो फायदा हो जाएगा। एक पंथ दो काज बोलते हैं, एक रास्ते में चलो तो दो काम करते हुए चलो। तो बोले वो कहां मिलेगा? बोले आपको हम बता देंगे। ये जो मेरा मन नामक बंदर है वो बड़ा उच्छृंखल है, देखो इतने घुमाकर शंकराचार्य जी ने कहा ओपन में, ये मेरा मन नामक बंदर है, इतना उच्छृंखल है, इतना उद्दंड है कि जैसे सामान्य बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ उछलते कूदते हैं, इसी तरह ये मन नामक बंदर एक विषय से दूसरा विषय, दूसरे विषय से तीसरे विषय, तीसरे विषय से चौथे विषय, कभी भी शांति से ये नहीं बैठता। और जैसे जंगल में अशांत उद्दंड पशुओं का साम्राज्य हो तो वहां कौन बैठकर शांति से भजन करेगा? भाई भजन कर पाएगा वो? तो हमें यही समस्या है। और आप क्योंकि शिकारी हो, हाथ में धनुष बाण ले चुके हो, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप इस मन बंदर को अपना बाण का लक्ष्य बनाओ। और इससे दो प्रयोजन हो जाएगा आपको, एक तो आखेट शिकार खेलने का आनंद भी मिल जाएगा, हमको इधर शांति भी मिल जाएगी, वही परेशान कर रहा है। ये सगुण साकार का स्वरूप है। इस तरह भगवान शंकराचार्य जी शंकर भगवान शिव से सगुण साकार के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ऐसे अनेक अनेक श्लोक हैं शिवानंद लहरी में, सौ सौ श्लोक हैं, लेकिन वहां पर निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन कम किया है। अति मंद बुद्धि वालों को भगवान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए सगुण साकार स्वरूप का प्रतिपादन करके शिव भक्ति में निष्ठा बने, परमात्मा में निष्ठा बने, इसके लिए अति मंद बुद्धि वालों के लिए सगुण साकार भक्ति के रूप में प्रस्तुत हुए। और उसमें उसके अलावा जो अति मंद तो नहीं है लेकिन कुछ मंद है, मंद के भी ये अलग अलग कैटेगरी है, स्टेज है, एक बिल्कुल अति मंद, दूसरा मंद। जो मंद अधिकारी हैं, जो कि गूढ़ रहस्य का वो समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सगुण निर्गुण निराकार भक्ति, भक्ति के माध्यम से उस तत्व को समझाया। तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र निर्गुण निराकार शिव स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए, शिव भक्ति में निष्ठा रखते हुए, शिवाद्वैतवाद को प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है, प्रकरण है, उसी को आधार बनाते हुए विचार करेंगे। हम प्रसंग उठा रहे थे कि दक्षिणामूर्ति पर इतना शंकराचार्य जी की निष्ठा क्यों है, तो पुराण में उपनिषद में ये प्रसंग आता है, विशेष करके सांदोग्य उपनिषद का ही प्रसंग है। एक समय की बात है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के संकल्प से चार सनत कुमार की उत्पत्ति हुई, चार आचार्यों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वह शुद्ध संकल्प से उत्पन्न हुए थे, परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए थे, वह कर्मज नहीं थे। जैसे आप और हम किसी के संकल्प से उत्पन्न नहीं हुए हैं, हम कर्मज हैं, अपने ही कर्म के माध्यम से, कर्म की प्रेरणा से हम पैदा हुए हैं। और आप कह सकते हो कि हमारे माता पिता के संकल्प से हम पैदा हुए हैं, बिल्कुल शत प्रतिशत गलत है। ये तो हम पैदा हो गए, उन्होंने पैदा करने की योजना से पैदा नहीं किया है, और विशेष करके आज तो यही समस्या है। नहीं तो हमारा वैदिक सनातन धर्म तो ये कहता था पहले, संतति को जन्म देने के लिए भी पहले प्रिपेयर्ड होकर, प्लान होकर तब संतति को जन्म दो। उसके लिए गर्भाधान संस्कार का विधान है। अब आज गर्भाधान संस्कार का विधि को कौन पालन करता है, किसी को पता ही नहीं है क्या है गर्भाधान। उसकी एक विधि है, उसकी प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि आज के शत प्रतिशत 100 में से 100 गृहस्थी ये गर्भाधान विधि को जानते नहीं है, और जब जानते ही नहीं है तो उसका मानना या उसका पालन करने की तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं है। कितनी शुद्ध विधि है वैदिक सनातन धर्म, तभी जाकर संतति जो है माता पिता के अनुकूल होते थे। तो आज कोई प्री प्लान तो है ही नहीं, विवाह करना किस प्रयोजन से, गर्भाधान किस प्रयोजन से, पुंसमन किस प्रयोजन से, ये सारी चीज आज कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जो पहले पुंसमन करते थे 6 महीने में, पिछली बार हम अमेरिका में गए तो वहां क्या बेबी शावर करने लगे, क्या है भाई ये, तो 9 महीने के बाद 8 महीने के बाद बेबी शावर, तो कुछ नहीं ले आए, सब फूल लेके गए, वो हाई किया मिले खाए बेबी शावर, हम तो समझ भी नहीं पाए। 6 महीने में होना चाहिए पुंसमन, 9 महीने में बेबी शावर, और सब खिलौना लाकर रख दिया है, तो उसमें तो वही होता है। तो फिर कैसे होगा, तो वैदिक सनातन धर्म, सनत कुमार जो है केवल शुद्ध परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वह कर्मज नहीं थे। तो हम अपने माता पिता के संकल्प से भी उत्पन्न हुए, हम तो अपने कर्म से उत्पन्न हुए हैं, और जीवन भर कर्म का फल भोगना है। कर्म समाप्त होने के बाद जाना है, फिर कर्म रहेगा तो कर्म भोगने के लिए फिर आएंगे, कर्म भोगेंगे, कर्म समाप्त होगा जाएंगे। तो सनत कुमार नित्य निरंतर वेदांत चिंतन करते हुए विरक्त होकर प्रवृत्ति धर्म का पालन करते हुए विचरण करते थे। चांदक उपनिषद का प्रसंग जोड़ो यहां, उसी से दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का संबंध है। तो एक समय की बात है कि नारद जी घूमते हुए पहुंचे, वहां सत्संग चल रहा था, तीन भाई श्रोता के रूप में बैठे हैं, एक भाई वक्ता के रूप में बैठे हैं, दूसरे दिन दूसरा भाई वक्ता बन रहा है, तीन भाई श्रोता बनते, तीसरे दिन तीसरा भाई वक्ता बनता है, तीन भाई श्रोता बन, चौथे दिन चौथा भाई वक्ता बनता है, तीन भाई श्रोता बनते हैं क्रम से, क्योंकि ये चारों के चारों ज्ञान गुण में कोई कमी नहीं थे, चारों के चारों परिपूर्ण थे, विद्वान थे, सत्संगी थे, चारों के चारों निवृत्त मार्गी थे, ऊर्ध्वरेतक थे, परिव्राजक थे। नारद जी पहुंच गए, उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत सुंदर सत्संग करते हो, दिव्य ज्ञान की चर्चा करते हो, और उम्र से देखने में ऐसा लगता है कि आप बहुत छोटे हो, फिर भी ज्ञान गुण आपके बहुत दिव्य हैं, महान हैं, ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं देखा है। आपको ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है किससे प्राप्त हुआ? क्योंकि गुरु परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त, आचार्यवान पुरुषो वेदा, श्रुति का कहना है। कोई व्यक्ति जब तक आचार्यवान नहीं होता है तब तक वो चाहे कुछ भी पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर ले, वो ज्ञान नॉलेज हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता है। इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकता है और अविद्या का अज्ञान का नाशक नहीं हो सकता है, ये ध्यान देना। नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना अलग चीज है, अज्ञान का नाश करना अलग चीज है। वो इन्फॉर्मेशन अज्ञान का नाशक नहीं होगा, वो जानकारी मूलाविद्या का नाशक नहीं होगा, क्योंकि तुला विद्या तो अनंत अनंत है और आपकी इन्फॉर्मेशन अनंत अनंत है। तो कौन ज्ञान कितने अज्ञान को नाश करेगा? तुला ज्ञान कभी भी नाश नहीं कर पाएगा। तो आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्यादेव विद्या विधिष्ठा प्रातिष्ठति, आचार्य के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही वह प्रतिष्ठित होता है। तो गुरु करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो गुरु तो करना ही पड़ेगा। तो नारद जी ने पूछ लिया सनत कुमारों से कि आपके गुरु कौन है, आपकी परंपरा क्या है, ब्रह्म विद्या की परंपरा क्या है? सनत कुमारों ने कहा कि हम तो जन्मना ज्ञानी हैं, हमको गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे सनत कुमार आजकल भी बहुत जगह घूमते हैं, गुरु तो बनने की उनको बहुत शौक है, गुरु बनाना उनके लिए लज्जास्पद हो जाता है। तो पूछो कि तुम्हारे गुरु कौन है, बोले कौन किसका गुरु, हम स्वयं गुरु। तो वो अपने से कोई अन्य को गुरु मानना उनके लिए हीनता बोध होता है, हम स्वयं गुरु, हम स्वयं ज्ञानी इत्यादि। तो सनत कुमारों ने भी यही जवाब दिया, हमारे कोई गुरु गुरु नहीं है, हम ये ज्ञान तो हमको जन्मना प्राप्त हुआ है। तब नारद जी ने कहा कि देखो शास्त्र विधि है, कोई भी चीज हो शास्त्र विधि से प्राप्त करना चाहिए, गीता में तो कहा ही है ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न तो सिद्धि समाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यदि शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हुए कोई कर्म करता है तो उस कर्म से न उसका चित्त शुद्ध होगा, न वह इस लोक में सुख शांति को प्राप्त कर पाएगा, न उसको परम गति की प्राप्ति होगी। तो नारद जी ने कहा कि आपने यदि गुरु धारण नहीं किया है तो शास्त्र विधि का उल्लंघन हुआ है, और वैदिक विधि का शास्त्र विधि का जो उल्लंघन करता है वह सीधा प्रत्यवाय का भागी बनता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, इस वाक्य का क्या अर्थ, क्या कैसे संगति करोगे? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिन्तिते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन, इसका क्या संगति करोगे? तो सनत कुमार भी विचार करने लगे, बात तो तुमने सही कही है, शास्त्र विधि का उल्लंघन हो ही रहा है, अब क्या करें? नारद जी तो चल पड़े, इतनी समझाए और चल दिए। अब सनत कुमार चारों भाई ने बैठकर विचार किया कि गुरु तो करना ही चाहिए, शास्त्र विधि तो पूरी करनी चाहिए। आज भी हमसे आकर पूछते हैं गुरु करना कोई जरूरी है महाराज, कहते हैं। तो हम कहते हैं कि शादी करना जरूरी है, जो गुरु करना जरूरी नहीं है तो शादी करने क्या जरूरत है, बोलो है? शादी करना जरूरी है। अब तुम यदि शादी करना जरूरी है कहते हो तो हम ये कहेंगे कि गुरु करना जरूरी है। लव कर लो तो खत्म हो गया, शादी क्यों करते हो? बोले नहीं तो समाज में बदनामी होगी, शादी कर लेंगे तो

तो हमको तो पैदा किया ब्रह्मा जी ने, उन्हीं को गुरु मनाते हैं, चलते हैं उन्हीं के पास। पैदा तो तुमने संकल्प करके हमको किया, अब दीक्षा भी देकर उपकृत करो, दीक्षित करो। तो वापस चले गए, लेकिन दूर से देखा ब्रह्मा जी तो, ब्रह्मा ये न कुलालवन्यमितो ब्रह्मांड बांडोदरे। ब्रह्मा जी तो प्रपंच की रचना करने में इतनी व्यस्त हैं कि वो नारद सनत कुमारों ने देखा दूर से, जीवों का लाइन लगा हुआ है, हमको शरीर दो, हमको शरीर दो, हमको शरीर दो, क्यों में है शरीर लेने के लिए। ब्रह्मा जी उनके कर्म को देखते हैं, किसी को मनुष्य का शरीर बनाए ले, थोड़ी सी गीली मिट्टी रखा और एक सांचा रखा है उन्होंने, सांचे बहुत होंगे, मिट्टी एक ही है उनके पास। तो किसी को स्त्री का शरीर चाहिए तो उसको देखा, इसको स्त्री का शरीर चाहिए तो वो सांचा लाया, मिट्टी डाला, बनाया, ले जा इसी में घुस जा। तो तुम लोग इसी में घुस गए हो। और किसी जीव आया तो उसको पुरुष का शरीर, उसके कर्म से पुरुष को शरीर प्राप्त करना है, मिट्टी वही थी, उसको दूसरा सांचा लिया, उसमें डाला और ले तो पुरुष शरीर दे दिया, उसमें घुस गया। तो तुम लोग उसी में से, हम भी उसी में से हैं, वो तो इसी में व्यस्त है। और कोई गधे का शरीर लेना है उसको, वो सांचा लाया, वो मिट्टी डाला, गधे का शरीर दिया, ले जा। किसी को हाथी का, किसी को चींटी का, डाई कितने होंगे वो ब्रह्मा जी के पास है, सांचा कितने होंगे बा, कल्पना करो 84 लाख। इसी में लगे हुए हैं। तो सनत कुमारों ने देखा कि इसको गुरु बनाना तो गलत है, हम बचपन से जन्म न निवृत्त मार्ग के हैं, ये प्रपंच में पड़ा हुआ है, और यदि इसको हमने गुरु मान लिया तो फिर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, शास्त्र वचन है। इसने कहा कि तू भी प्रपंच में लग जा रचना करने में, ले तो हम तो प्रपंच में फंस गए, जीवन बर्बाद हो जाएगी, तो इससे अच्छा उनके आगे जाओ ही नहीं। तो सनत कुमार गए ही नहीं, तो अब किसके पास जाए, बोले इनसे भी पिताजी, इनको भी पैदा किया जिसने, विष्णु के पास जाते। गए विष्णु के, तो दूर से देखा तो विष्णु तो क्षीर सागर में शेष सैया में सोए हुए हैं, जय विजय पंखा कर रहे हैं, भूदेवी श्रीदेवी पांव दबा रही हैं, और सारा अलंकार उनके शरीर में है, अलंकार प्रियो विष्णु। बड़ा दिव्य। और कहां हमको ये, हमारी ये धारणा है कि स्त्री की छाया का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए साधक को, और कहां दो दो पत्नियों से वह पांव दबा के बैठा है। ले ये तो और लंपट है, स्त्री लंपट है, क्या करे। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे गुरु बनाया जा सके। योगी भोगी गुरु बना सकता है, भोगी गुरु को, गुरु को भोगी को गुरु बनाओगे तो वो भोग में लगाएगा और योग मार्ग का कैसे उपदेश करेगा। इससे अच्छा उसके नजदीक ही मत जाओ। फिर चले गए कैलाश भगवान, अब किसके पास जाए, बोले इनसे भी बड़े भगवान शिवा हैं, हमने सुना है कि उन्हीं के पास चलते हैं। तो गए कैलाश, वहां तो और भी आपत्तिजनक दृश्य देखा। भगवान शिव पार्वती को वामांगे च विराजति यस्य भूधर सुता, अपने बाएं पांव में जंगा पर पर्वत पुत्री पार्वती को भूधर सुता, उसको अपने जंगा पर, यह भी नहीं कि जमीन में रखा हो, अपने जंगा पर रखा है बाएं तरफ, और बायां हाथ उनके कंधे पर ले जाकर आलिंगन कर रहे हैं। और ये दृश्य जब देखा सनत कुमार, अरे रे रे रे, ये तो ब्रह्मा से भी लंपट, विष्णु से भी, विष्णु तो पांव दबा रहा था, ये तो अपने गोद में बिठा रहा है और आलिंगन कर रहा है। और करते करते, आलिंगन करते करते सनत कुमार ने देखा कि भगवान शिव तो पार्वती के आधा आधा शिव अर्धनारीश्वर हो गए, ये तो इतना आसक्त तो हो गया कि आधा जीवन ही उसका स्त्री का हो गया। लीव जी, अब इसको कैसे गुरु माने।

कहां हमारा सिद्धांत बिल्कुल विरक्ति का और कहां इनका सिद्धांत परम आसक्ति का, और जो परम आसक्त है वह विरक्ति का उपदेश क्या करेगा, अनासक्ति का उपदेश क्या करेगा, खुद ही आसक्ति में बड़ा हुआ है, तो श्रद्धा नहीं हुई है। और श्रद्धा न हो तो गुरु करना बेकार है। गुरु करने के लिए गुरु कैसा है क्या है वहां मूल्यांकन या परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वहां फलीभूत होती है। तो सनत कुमारों को श्रद्धा नहीं हुई तो क्या है? निकल पड़े। भगवान शंकर अंतर्यामी सब जानते थे, ते आए तो बहुत अच्छे गुरु खोजते हुए चल रहे हैं, लेकिन दोष के चश्मा लगाकर है तो दोष का चश्मा आंख में जब तक रहेगा वो गुण दिखेगा नहीं, दोष ही दिखता रहेगा। तो ये लोग वापस गए, कल्याण तो करना ही चाहिए, लक्ष्य इनका उत्तम है, इनके लक्ष्य अनुसार फल देना चाहिए। पार्वती को कहा कि देवी तुम बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। ये चाहते हैं कि हमसे भी बड़ा हुआ कोई होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, उसको गुरु मानना तैयार हैं ये। तो इनकी जैसी निष्ठा है वैसा ही गुरु प्राप्त हो, ये भगवान शिव की प्रेरणा हुई। तो खुद सनत कुमार तो 16 वर्ष के और भगवान शिव 6 वर्ष के, 6 वर्ष के छोटा सा बटुक बनकर वह सनत कुमारों के पीछे से दौड़ते हुए, शरीर में कुछ नहीं है, एक कौपीन है और कंध में जनोई है, और दौड़ते हुए सनत कुमारों से आगे निकल गए। सनत कुमारों ने देखा कि ये छोटा बालक, ये हमसे भी छोटा उम्र और हमसे भी विरक्त है, तो ये कौन है देखो तो सही, बड़ा अद्भुत है। हम जिसको गुरु चाह रहे हैं, जैसा गुरु चाह रहे हैं वैसा ये है, तो उसी को पकड़ो। सब दौड़े बेचारा शिष्य तो बूढ़े, 16 वर्ष के बूढ़े हुए नहीं सनत कुमार, और 6 वर्ष के शिव दक्षिणामूर्ति, वो तो बहुत तेज दौड़ के चले गए आगे। देखते देखते इतनी तेजी से दौड़ के निकल गए, सनत कुमार उनके नजदीक पहुंच ही नहीं पाए। तो मन ही मन दुखी हुए कि हम जैसा गुरु चाहते थे वैसा दिखाई तो पड़ा, लेकिन वो तो इतनी जल्दी से कहां गायब हो गए। थोड़े दूर के बाद रास्ते में एक बड़ वृक्ष था, वहां ही भगवान शिव बैठ गए दक्षिण की तरफ मुंह करके, 6 वर्ष के बालक, और ध्यान मुद्रा में बैठे, बिल्कुल ध्यान मग्न बैठे। थोड़ी देर के बाद सनत कुमार जब पहुंचे तो जिस बालक को दौड़ते हुए देखा था वो बालक तो शांत बड़ वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठा है। देखो ऐसे घोर जंगल में कुछ नहीं है, इतना छोटा उम्र का बालक है, फिर भी क्या निश्चिंत, क्या ज्ञान, क्या शांत मुद्रा, जो हो इसी को गुरु, इससे बढ़कर हमको अब गुरु मिलने वाला नहीं है। तो बैठ गए सनत कुमार वहीं, तो ध्यान में बैठे हैं, तो बैठे रहे। तो कुछ दिनों के बाद भगवान शिव ने स्वयं हाथ उठाकर, कंधे तक अपने हाथ को लाकर, अंगूठा और तर्जनी को जोड़कर, 3 उंगलियों को सीधा करके, ये चिन्ह मुद्रा इसको बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा, इसको दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में यो भद्रया मुद्रया भद्रा मुद्रा भी बोलते हैं। 3 नाम है, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा और भद्रा मुद्रा, इसके द्वारा उपदेश किया है। जीव ब्रह्म की एकता, त्रिगुणात्मिका जगत से असंगता जीव की, ब्रह्म से जुड़ने पर जीव शांति को प्राप्त होता है, जगत से जुड़ने पर जीव अशांत होता है, बीच में जीव है जगत और ब्रह्म के बीच में, और ये ब्रह्म की तरफ झुके तो इसका कल्याण है, जगत की तरफ लागे तो इसका जन्म मृत्यु है। ये उपदेश जीव ब्रह्म के अद्वैत वेदांत का उपदेश, ये ज्ञान प्राप्त करके इसी को संकेत करके कहा, चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरोर युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया।
वो सनत कुमारों के भी परम गुरु भगवान शंकर उन्हीं को दक्षिणा मूर्ति शिव कहते हैं। वो 6 वर्ष का उम्र के बालक रूप है, भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं और कांप में जने हुए है, कौपीन है, बाल रूप है, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हुए जो शिव का स्वरूप है वही गुरु मूर्ति है, वही ज्ञानदाता गुरु है। उनसे संबंधित ये स्तोत्र है। इस मूल स्तोत्र की प्रसंगता सुरेश्वराचार्य जी, शंकराचार्य जी के परम शिष्य सुरेश्वराचार्य जी ने इस 10 स्तोत्र में मानस उल्लास नामक वार्तिक लिखी है, व्याख्या लिखी है। उसी को आधार बनाते हुए हम ये आने वाले दिनों में 27 दिन तक, कल से 27 है ना, कल से 27 दिन तक हम इस पर विचार करेंगे। और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र आप लोगों के प्रार्थना वगैरह में भी होगी तो लेके आओ, तो साथ साथ उच्चारण करने का लाभ भी हो जाएगा और विचार करेंगे। यहाँ समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹிந்தி ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் நாயன்மார் புராணம். தி டைட்டில் இஸ் இயற்பகை நாயனார் புராணம், பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பக்தி ஜனோ, ஆஜ் ஹம் சுனேங்கே ஔர் ஏக் நாயன்மார் ஜோ கி தக்ஷின் பாரத் கே சந்த் தே, ஜின்கா நாம் ஹே இயற்பகையார். இயற்பகையார் காவேரி பட்டினம் கே சம்பன் ஸ்ரேஷ்டி தே. பகவான் பர் உன்கி பிரேமாசக்தி ஔர் சம்பர்ண பாவனா அசாதாரண் தி. உன்கி மான்யதா தி கி சாரி தன் சம்பதா ஔர் பரிவார் சப் ஷிவ் கா ஹி ஹை. யே வே ஸ்வயம் ததா அப்னி அப்னி பத்னி ஔர் பச்சோ பர் பீ பகவான் கே பக்தோ கா அதிகார் மான்தே தே. ஏக் தின் உன்கே பாஸ் ஏக் ஷிவ் யோகி ஆயே ஔர் ஆகர் போலே, தும்ஹாரி பிரதிஜ்ஞா ஹை கி தும் பக்தோ கி ஹர் இச்சா பூரி கர் சக்தே ஹோ. துமசே குச்ச மாங்கனே கி யதி மே ஆஷா கரூ தோ தும் மனா தோ நஹி கர் தோகே. இயற்பகையார் நே கஹா, ஆப் நிசக் ஆப் நிசங்கோச் கஹியே, ஜோ பி ஆப் சாஹேங்கே அவஷ்ய மிலேகா. தப் ஷிவயோகி தப் ஷிவயோகி போலே, மே தும்ஹாரி பிரிய பத்னி கி காமனா கர்த்தா ஹூ. இயற்பகையார் நே ஏக் க்ஷண் பர் பி விசார் ந கர்தே ஹுயே அப்னி பத்னி கோ பேண்ட் ஸ்வரூப் உன்னே தான் மே தே தியா. பத்னி சே பராமர்ஷ் கர்னே பர் பஹலே வோ பி ஹக்கி பக்கி ஔர் சௌங்க் கயி, லேகின் பதி கே வச்சன் கே விருத் न जाने की और उनकी पति के प्रति श्रद्धा इतनी थी कि उन्होंने उनकी बात मान ली. हिंदुस्तान या दक्षिण भारत या कहीं भी कहें तो पत्नी का स्थान पति के जीवन में सबसे उच्च माना जाता है, क्योंकि पत्नी पति के साथ पूर्ण रूप कहलाती है, वो पति की अर्धांगिनी है. इयर्पगयार के इस संकल्प को सुनकर उनके सगे संबंधी उनके विरुद्ध बोल उठे, यह तो अनुचित है, यह आप कैसे दान कर सकते हैं. इस पर इयर्पगयार ने कहा कि मैंने जो कह दिया कि मेरी पत्नी शिव भक्त योगी के लिए है तो वही है, आप सभी अभी जा सकते हैं. तब उनके परिवारजनों ने उन पर उस शिव योगी पर आक्रमण कर दिया. इयर्पगयार ने भी तलवार उठा ली और अपने सारे परिवारजनों को कावध कर दिया. इसके बाद अपनी पत्नी और शिव योगी को एक स्थान तक उन्होंने पहुंचा दिया और कहा, यह अभी से आपकी संपत्ति जैसे अभी से आपकी हुई. यह कहकर वो मुड़ गए पीछे. तभी उनके पीछे से शिवयोगी की आवाज आई, दुहाई है इयर्पगय मुनिराज, दुहाई है, आप सच में शिव के परम भक्त हैं. इयर्पगय ने पलट कर देखा कि पत्नी अकेली खड़ी है, शिवयोगी का कहीं पता नहीं, और उधर साक्षात शिव नंदी पर विराजमान आकाश में दर्शन दे रहे थे. नटराज शिव ने इयर्पगय की अनन्य भक्ति और शिव भक्ता पर अटूट विश्वास के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की. इयर्पगय अभिभूत होकर प्रभु दर्शन करते रहे. इधर मायावश मरे हुए बंधुजन और परिवारजन पुनः जीवित हो उठे. इयर्पगय का यह चरित्र आज भी रहस्यपूर्ण माना जाता है. भक्त इसका समाधान करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं. चेकिलर कहते हैं, व्यक्ति मूल्यांकन के जीवन में मानदंडों का हम प्रयोग करते हैं, उनसे इयर्पगय का जांच पाना संभव नहीं. उनका नाम ही स्पष्ट करता है, इयर्पगय अर्थात संसार की सहज प्रकृति के शत्रु. जहां तक इयर्पगय का संबंध है, वे अपना अहम पूर्ण स्वरूप से विगलित कर चुके थे. स्वयं को अपनी चल अचल संपत्ति को भगवान के दासों की संपत्ति मानकर जीवन यापन करने वाले इस मानव को हम सामान्य नहीं मान सकते. यह शिव की ही भक्ति है. कुछ लोग कहते हैं कि इयर्पगय भक्ति में इतने पागल हो चुके कि अपनी पत्नी तक का दान कर दिया था, लेकिन यह ऐसी भक्ति और ऐसी विचार रखने वाले लोग दुनिया में बहुत कम ही होंगे. इसलिए आज हम इयर्पगय को सत स्वरूप भगवान के भक्त स्वरूप नमन करते हैं. ओम नमः शिवाय.
1: ओम नमः शिवाय.
3: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग.
1: ओम नमः शिवाय.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: யத் கர்மா சரிதம் மயாச்ச. தப் மே ஜோ சேஷ்டா கர்த்தா ஹூ. ஹம் சபி கிரீடா மிருகா ஹை, இஸ்லிய ஹம் ஜோ பி சேஷ்டா கரேங்கே, சாய் உடேங்கே, சாய் பேடேங்கே, சாய் சோயேங்கே, சாய் ஹசேங்கே, சாய் ரோயேங்கே. யத் கர்மா சரிதம் மயா, யத் கர்ம ஆச்சரித்தம், மேரே துவாரா ஜோ பி கிரியாயே ஹோத்தி ஹை, வோ சாரி கிரியாயே பவத ப்ரித்யை பவத்யே பதத், சாரி கிரியாயே ஆப்கி ப்ரசன்னதா கே லியே ஹி ஹை. क्योंकि शंभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम मच्चेष्टितम निश्चितम, मच्चेष्टितम मेरे द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है वह चेष्टाएं वो क्रियाएं मैं अपने मर्जी से तो करता नहीं. समझे कि नहीं? मैं अपनी मर्जी से तो कुछ करता नहीं, क्योंकि मैं तो खिलौना हूं. इस श्लोक को पढ़ते समय में आप शतरंज के खेल को स्मरण कर लो. शतरंज के खेल में, शतरंज के खेल में राजा होता है, मंत्री होता है, सिपाही होते हैं, घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं, होते हैं कि नहीं? यही ना है, राजा, मंत्री, सिपाही, घोड़े और ऊंट है. हाथी भी होता है शतरंज में? अच्छा, हाथी भी होते हैं है? शतरंज के खेल में रानी भी होती है, वजीर मंत्री. रानी की तो बात मैंने नहीं सुनी है. चलो होगे, कोई ना कुछ होंगे. हाँ है, जरूरत पड़े डालो, नहीं पड़े तो हटाओ. हाँ, तो कभी भी वो राजा, शतरंज का जो राजा है, राजा कोई साधारण व्यक्ति होता है, लेकिन भले ही वो शतरंज में राजा हो, उसकी चेष्टा तो खिलाड़ी पर निर्भर है कि नहीं? राजा जीतेगा कि हारेगा, खिलौने के राजा पर निर्भर है कि खेलने वाले पर निर्भर? इस श्लोक को पढ़ते समय में वो दृश्य को सामने रखो. मान लो कि शतरंज का राजा हार गया, क्योंकि चलने वाले ने गलत चल दी. जिसने राजा ली रखा है, जिसके हाथ में राजा है, चाल चलने वाले ने गलत चल दी, परिणाम क्या हुआ? राजा मर गया. दुख किसको होगा? मरने वाले राजा को होगा कि खेलने वाले खिलाड़ी को होगा? खेलने वाले खिलाड़ी को होगा, क्योंकि राजा तो केवल खिलौने का है. मान लो कि खेलने वाले खिलाड़ी ने चाल में ऐसी चाल चली, इस तरह खेली, राजा जीत गया, राजा बच गया, प्रसन्नता खिलौने को होगा कि खिलाड़ी को होगा? खिलौने को न हारने का दुख है, खिलौने को न जीतने का सुख है। उस सुख और दुख से वो खिलौना असंस्पृष्ट है। खिलौने से हारना और जीतना, इसके संबंध खिलाड़ी पर है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा, कुतूहलस्य करणम मत्स्यष्टितम, आपके प्रसन्नता का साधन रूप में जो खिलौना हो, मेरी जो चेष्टा है वह त्वया निश्चितम, मया यत् चेष्टितम, ध्यान देना ये शब्द पर ध्यान देना, मया यत् चेष्टितम तत् त्वया निश्चितम, मैंने जो चेष्टा की, मैंने जो क्रिया की, जीतने की क्रिया की या हारने की क्रिया की, वह तो तुम्हारे निश्चय पर निर्भर करता है। किस कोष्ठ में जाकर बैठना है वो तो तुम बिठाओगे ना, मैं अपने आप तो जाऊंगा नहीं। और उस बिठाने की जगह पर अपने कैसे बिठाई, किस प्रक्रिया से बिठाई, मुझे प्रयोग करने पर ही आपको सुख होगा, और मुझे प्रयोग करके ही आपको दुख होगा। खिलौने को सुख दुख नहीं होता, प्रयोगकर्ता को ही सुख दुख होगा। बाजी जीत गया, खिलौने को क्या खिलाओगे, रसगुल्ला खिलाओगे हैं? तुमने बाजी जीत ली, जीत लिया, खिलौने को क्या खिलाओगे? उन खिलौनों को तो बाजी जीतने पर भी खेलने के बाद उसी डब्बों में बंद होना है, है कि नहीं? उन खिलौने हार गए, बाजी हार गए, हारने के बाद भी उन खिलौनों को तो वही डब्बे में बंद करना है जिस डब्बे में जीतने पर बंद हुए थे, ठीक ही नहीं? बोलो, बाजी हारने वाले खिलौने कोई दूसरे डब्बे में बंद होंगे? बाजी जीतने वाले खिलौने कोई दूसरे डब्बे में बंद होंगे? लेकिन जीतने वाला बड़ा आनंद से मिठाई बांटेगा, खाएगा, और हारने वाला बैठकर रोएगा। कौन रो रहा है, कौन मिठाई खा रहा है? खिलाड़ी। तो इसी प्रकार से हे भगवान शिव शंभो पशुपते, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, 66वां श्लोक, संसार में जितने भी जो भी वस्तु का निर्माण किया आपने किया है, किस प्रयोजन से? खेलने के लिए, खिलौनों के रूप में सभी पदार्थों की आपने रचना की है, और इन्हीं खिलौनों के माध्यम से आप खूब खेलिए। शंभो स्वस्य कुतूहल, आनंद का खूब आनंद लीजिए, खेलिए। करणम माने साधन, मत्स्यष्टितम निश्चितम, तस्मात् मामकरक्षणम पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं आपसे, मैं खिलौना हूं, मेरे से किस प्रकार का खेल खेलना है वह आप ही निश्चय करोगे, और मेरे से किस प्रकार की खेल खेलनी है वो आप ही मुझे खिलाओगे चलाओगे। लेकिन आपके द्वारा परिचालित मैं हार गया, दुख तुम्हें होगा। आपके द्वारा परिचालित मैं जीत गया, आनंद तुम्हें ही होगा। और कहीं कदाचित मेरा अनुरोध इतना ही है कि खिलौने सुरक्षित रहेंगे तो आपको खेलने में भरपूर आनंद आएगा। तो आपसे मेरा अनुरोध यह है कि आप मेरे से खूब खेलिए, लेकिन अनुरोध इतना ही है, ख्याल आपको रखना है खेलते समय में टूट न जाए। खिलौना टूट गया तो जीतने और हारने का कोई सवाल ही नहीं, खेल ही खेल की मजा ही खत्म हो गया। खिलौना टूट ना पावे, खिलौने की रक्षा खिलौना खुद करता है, खिलाड़ी करता है। आप खिलाड़ी हो कि खिलौने हो? आप खिलौने हो तो आपकी रक्षा खुद आप करोगे, तो खिलाड़ी कौन है? तो खिलौने की रक्षा किसके हाथ में है? तो खिलौने ने इतनी कह दिया, महाराज सावधानी से खेलना, मेरे रोने से आपको आनंद आता है, मुझे खूब रुलाइए, मुझे रोने में आपत्ति नहीं है, ध्यान देना हो, मुझे रुलाकर आपको आनंद आता है तो रुलाइए, खूब रुलाइए, आपको आनंद आनी चाहिए। मुझे हंसाकर आपको आनंद आता है तो खूब हंसाइए, लेकिन ख्याल ये रखना रुलाते रुलाते खिलौना टूट न जाए, फिर दोबारे मुझे रुलाना होगा तो फिर कहां से लाओगे खिलौना? समझेगी नहीं, ये भाव है। भगवान के प्रति, भगवान के सामने आदिगुरु शंकराचार्य जी अपने आप को एक खिलौने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और भगवान शिव को खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुरोध ये कर रहे हैं कि खिलाड़ी खेलते समय खिलौना न टूटे, इतने आप ख्याल रखो महाराज, जो खेलना है खेलो, जैसा खेलना हो खेलो। अब देख लो, कोई सिनेमा बना रहा हो और सिनेमा में हर प्रकार के पात्रों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? सिनेमा में हर प्रकार के पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। रक्षा करने वाले पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी, तो चोरी करने वाले चोरों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, बोलो है? बोलो। सिनेमा में चोरी करने वाले चोरों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं है? रक्षा करने वाला हीरो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो गलत काम करने वाले गुंडों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? बोलो। अच्छा काम करने वाला हीरो विलेन, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके बराबर में उसमें बुरा काम करने वाला गुंडा लोफर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? सिनेमा में गुंडों की क्या आवश्यकता है भाई? है क्या आवश्यकता है? क्यों गुंडों की भूमिका क्यों प्रस्तुत किया गया हुआ? बोलो। अब गुंडे नहीं होंगे तो हीरो अच्छा होगा? अब अंत में क्या करता है? कोई लड़की को जबरदस्ती कर रहा है कोई गुंडा, और लड़की रो रही है, और उसी समय में हीरो पहुंच गया। उसने दो चार मारी गुंडों को, और उसने उन गुंडों से उसकी रक्षा कर दी, और हीरो की वाहवाही हुई, है ना? तो गुंडे की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? सिनेमा को हिट करने के लिए गुंडों की भी तो आवश्यकता है कि नहीं? बोलो। महाभारत सीरियल को हिट करने के लिए दुर्योधन की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? और महाभारत को हिट करने के लिए शकुनी की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? सबकी आवश्यकता है। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम। वहां शकुनी की भूमिका भी आई, दुर्योधन की भूमिका भी रही, युधिष्ठिर की भूमिका भी रही, दुशासनों की भूमिका भी रही, और दुशासन द्रौपदी की साड़ी न खींचते होते फिर तुम्हारे कृष्ण को कौन पूछता? बोलो। फिर तुम्हारा कृष्ण हीरो कैसे हो पाता? जब दुशासनों ने साड़ी खींचना आरंभ किया, द्रौपदी रोने लगी, तब भगवान साड़ी बनकर आ गए। ये भगवान की कृपा है। कब? दुशासनों की निष्ठुरता के चलते हुई कि नहीं? बोलो। भगवान की कृपा दुशासन की निष्ठुरता प्रस्तुत न होते तो भगवान की कृपा का क्या पता चलता? तो हीरो हो गए कृष्ण। तो संसार में सभी की आवश्यकता है। आपको रोना भी पड़ेगा। द्रौपदी यदि कहे मैं द्रौपदी की भूमिका तो पूरा करूंगी लेकिन रोने का काम नहीं करूंगी, तो फिर प्रोड्यूसर निर्माता उसको द्रौपदी की भूमिका में वर्ण करेगा कि नहीं? द्रौपदी को तो रोना ही पड़ेगा, बस। पड़ेगा कि नहीं? बोलो। इसी तरह दुशासन की निंदा होती है, इसलिए मैं दुशासन का काम नहीं करूंगा, तो महाभारत सीरियल तैयार होगा कि नहीं? बोलो। तुम भी दुशासन बनने को तैयार नहीं, मैं भी तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं, तो महाभारत सीरियल कैसे बनेगा? बोलो। तो सबकी आवश्यकता है। कहां? खेल खेलने के लिए, नाटक करने के लिए सबकी आवश्यकता है। कभी मुझे हंसना भी होगा तो कभी मुझे रोना भी होगा, लेकिन भगवान मैं इतने अनुरोध करूंगा, मेरा प्रयोग करके भरपूर आनंद लीजिए। शर्त यह है मेरी रक्षा भी कीजिए। क्रीडार्थं सृजति प्रपञ्चमखिलम् क्रीडामृगास्ति जना यत्कर्माचरितं मया च भवत प्रीत्यै भवति वत्तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मत्स्यष्टितं निश्चितम् तस्मान् मामकरक्षणम् पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। तुम्हारे द्वारा ही मेरी रक्षा होनी चाहिए, और कोई नहीं करेगा। प्रश्न करते हैं महाराज हमसे आकर, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, दूसरों को रुलाकर ये कौन सा खेल खेलता है परमात्मा भाई? ये भी कोई खेल होता है दूसरों को रुलाकर? प्रश्न करते हैं। दूसरों को मारकर खेलना भी कोई खेल होता है? लेकिन कंस को मारे बिना महाभारत होगा है? बोलो, कंस को मारे बिना महाभारत होगा? द्रौपदी को रुलाए बिना महाभारत होगा? हैं? द्रौपदी के 5 सोए हुए बच्चों के सिर काटे बिना महाभारत होगा? और तुम प्रश्न करते हो कि ये कहां का नियम है भाई, दूसरे के बच्चों को मारा और महाभारत बना दी? द्रौपदी के सोए हुए 5 बच्चों को अश्वत्थामा द्वारा सिर काटा कि नहीं किया? काट दिया है? काटना पड़ा कि नहीं? बोलो। और अश्वत्थामा का सिर मुड़ाना पड़ा कि नहीं? मणि उतारना पड़ा कि नहीं? अच्छा लगा होगा अश्वत्थामा को? तुम लोगों ने किसी ने विरोध किया अश्वत्थामा का सिर की मणि को मत निकालो करके हैं? विरोध किया? करना चाहिए, किसी ने आवाज निकाली? अच्छा किया, सोए हुए बच्चों को मारा था, द्रौपदी के सोए हुए बच्चों को मारा था, अर्जुन ने ठीक किया, मणि उतार दी। तुम खुश हुए कि भी नहीं? बोलो हैं? तुम खुश हुए कि नहीं हैं? इसीलिए इतना ही समझना भाई, अपने को भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हुए खिलौने से ज्यादा नहीं समझना। और अपनी दिनचर्या और चेष्टा में भगवान के संकल्प के अतिरिक्त अपना कोई संकल्प जोड़ना नहीं, अपना पूर्वाग्रह नहीं करना। समस्या कब होती है? हमको खिलौने के रूप में परमात्मा प्रयोग कर रहा है और अपने संकल्प के अनुसार वो हमको चला रहा है, और हम उसकी इच्छा विपरीत हम अपना पूर्वाग्रह लेते हैं। नहीं, तुम्हारे चलाने से नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा चलाओ। ये खिलौना कहीं कभी पूर्वाग्रह करता है? बोलो। खेल में कोई भी खिलौना पूर्वाग्रह करता है? मुझे हाथी के द्वारा नहीं मरवाओ, मुझे राजा के द्वारा मत मरवाओ, कहता है शतरंज का खिलौना। चाहे सेना से मरवाओ, चाहे हाथी से मरवाओ, जिसे मरवाना है मरवाओ, बचाना है बचवाओ, बस खत्म हो गई बात। क्रीडार्थं सृजति प्रपंचमखिलम्, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। जीवन के एक एक श्वास परमात्मा के संकल्प पर छोड़ दो, जीवन की एक एक दिनचर्या क्रियाकलापें परमात्मा के संकल्प पर छोड़ दो, तो भजन तो तुमने बहुत गाई है। जाके राख क्या
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Narayan, Narayan, Narayan, Narayan. Premipuri Ashram mein hum sab Mataji ka swagat karte hain. Hum sab milkar Mataji ke Sri Charanon mein vandana karte hain, pranam karte hain. Mataji hame Shiv Mahimna Stotra par pravachan karengi aur aaj se lekar 28 Farvari tak Mataji ka pravachan yahan chalta rahega. Main माता जी से प्रार्थना करता हूं कृपया अपने प्रवचन द्वारा हमें अनुग्रहित करें। जय श्री कृष्ण।

Guru. विषय है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र के रचयिता है, जैसे मनुष्य योनि होती है, ज्यादा पुण्य कर्म के पुण्य फल के रूप में योनियां बदलती जाती है। देव योनि, तिर्यंग योनि, प्रेत योनि होती है, ऐसे गंधर्व की योनि होती है। मनुष्य गंधर्व होते हैं और देव गंधर्व होते हैं। तैतरीय उपनिषद का जिससे अभ्यास होगा, वहां आनंद मीमांसा समय भी इसकी बात आती है। ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदाहा, ते ये शतम देव गंधर्वाणाम आनंदाहा। तो ये गंधर्व राज जो है, वाणी की विद्या में, गान में, स्वर में, राग में अति कौशल्य होता है। तो परमात्मा ने विशेष रूप से वहां उनकी वाणी में प्रवेश करके ये विशेष कौशल्य क्यों दिया है? क्योंकि उनकी गुण का, उनके कथन का, परमात्मा के रूप का आप स्मरण कीजिए, गान कीजिए, चिंतन कीजिए, प्रेम से उसे पुकारने के लिए अनेक विध राग रागिनियां परमात्मा ने बनाई है। अगर परमात्मा ने गला अच्छा दिया है और उनके राग गाने में प्रमाद किया गया, या आपके पास मुख है, वाणी है, दृष्टि है, कान है, और फिर भी आप परमात्मा का नाम स्मरण चिंतन मनन नहीं करते हैं, तो उसका फल क्या होता है, थोड़ी वो भी बात ये स्तोत्र से हम जान सकते हैं। और ये जानने के बाद कहीं हमसे ये गलती न हो जाए, उसकी भी बात, कोई भी वेदांत का स्तोत्र है वो मात्र अपने लिए ही बात नहीं करते। वेदांत के जो भी कुछ स्तोत्र है या पाठ है या स्तुति है या शास्त्र के, कोई भी आप उपनिषद ले लीजिए, कोई भी अध्याय ले लीजिए, वहां दो बातें मिलेगी, एक वक्ता और एक श्रोता। एक मुख्य जो है, अथवा तो वक्ता और श्रोता के रूप में कोई अध्याय न होगा तो क्या होगा? स्तुति में क्या होता है? एक उपास्य देव, एक आराध्य देव और एक आराधना करने वाला, यानी के उपासक। और ये उपासक और आराध्य देव के बीच में जो घटित होता है वो उपासना, वो आराधना। तो हम कौन है? हम सब, तो हम सब उपासक है, पर हमारे उपास्य देव कौन है? हमें उपासना तो किसी की करनी ही है, नहीं तो यहां हम आए ही नहीं होते। हमें कोई एक तत्व को तो जानना ही है जिसने ये आकाश से लेकर हमें बनाया। या तो हम आश्चर्य से यहां उपस्थित हुए हैं, या तो संसार में बहुत सारी प्रतिकूलता है और यहां कुछ वो प्रतिकूलता से थोड़ी देर के लिए भी हमें अगर आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए हम आए हैं। पर ये आनंद प्राप्त जो होता है, हमारी प्रतिकूलता थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है, वो कौन से उपास्य देव है? ऐसे किस देवता की उपासना करें हम? हवि दे करिए वेद के, ऋग्वेद के मंत्र है। ये सृष्टि निर्माता कौन है? सृष्टि किसने बनाई? ये किसके ऊपर ये सब आधार? ये आकाश को भी आधार देने वाला कौन है? आकाश है तो आकाश को बनाने वाला कौन है? कोई भी चीज अगर है, ऐसा आप बता सकते हैं कि आकाश इज, अस्थि है, धरती है, टेबल है, तो है जिसमें है लग गया, उसका कर्ता तो कोई होगा ही। तो वो कर्ता कौन है? मेरा उपास्य देव कौन है? और ये उपास्य देव के प्रति किस किस चीज से, कौन से रास्ते से हम गमन कर सकते हैं? उसका एक जो रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, उपासना का रास्ता है, आराधना का रास्ता है। तो ये आराधना का जो रास्ता है, यहां उसकी रजूआत की गई है। तो इनके रचयिता जो है वे गंधर्व राज है। गंधर्व राज यानी गंधर्वों में भी उत्कृष्ट और श्रेष्ठ है। नाम है पुष्प दंत। काशी नरेश के उद्यान में बात कुछ ऐसी है। देखिए, ये रचना क्यों हुई शिव महिम्न की?
और आप तो यहाँ बरसों से वेदांत के अभ्यासी हैं, आपको पता होगा हरिद्वार ऋषिकेश कहीं भी परंपरा के आश्रम में आप चले जाइए, रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है और रोज शाम को कौन सा पाठ कर किया जाता है, तो यही शिव महिम्न का पाठ किया जाता है कि हे भगवान, पूरे दिन में अगर ये शरीर मन बुद्धि का संघात दिया है मात्र परमात्मा को जानने के लिए, ये बात बराबर समझ लीजिए। हमने गलती से ऐसा मान लिया हो कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना ही है, ये मेरा संसार है, वो बात अलग है, पर ये सब करने के बाद भी आपने अपना आपका जो स्रोत है, जो परमात्मा है, उसके कारण को जानने की चेष्टा नहीं की, तो सब कोशिश, सब कर्तव्य, सब कर्म क्या है, सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो बात कुछ ऐसी होती है कि काशी नरेश राजा, उनके उद्यान में परमात्मा की पूजा के लिए बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया गया था और अनेक प्रकार के वहां पुष्प थे, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प परमात्मा की पूजा के लिए वहां उगाए जाते हैं। अब ये पुष्पदंत गंधर्व राज जो है, उनको एक विशेष विद्या प्राप्त हुई थी और वो ये हुई थी कि वो जब चाहे तब अंतर्ध्यान हो सकते थे। अंतर्ध्यान यानी कि हो सकते थे पर दिखाई नहीं देते थे, अदृश्य रूप से विचरण कर सकते थे और कर्म भी कर सकते थे। ऐसी एक विशेष विद्या परमात्मा के अनुग्रह से ही उनको प्राप्त हुई थी। पर परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त हुई विद्या का जब उपयोग होता है तो क्या होता है, सदुपयोग होता है तो क्या होता है और दुरुपयोग होता है तो क्या होता है, ये भी इस स्तोत्र से हमें बात सीखनी है। और ऐसी ही कुछ विद्या हमें भी दी है। देखे, ये बोल सकते हैं, वो क्या चमत्कार कम नहीं है? एक मुख बनाया है, उसमें से वाणी निकल रही है और आप सोच रहे हैं वो आप बोल सकते हैं, ये क्या चमत्कार नहीं है? आप जो चाहे वो सुन सकते हैं, जहां चाहे चल सकते हैं, पैर से जा सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो संगात है उसका अगर आपने मात्र उपयोग ही किया, उपयोग यानी चल के आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को जहां सांत्वन मिले, अच्छा लगे वहां आप गए, उसका उपयोग किया, उसको खिलाया पिलाया और सो गए, किसी का कुछ अच्छा भी नहीं किया और बिगाड़ा भी नहीं, ये मात्र उपयोग किया आपने। पर यही पैर से गलत जगह पर गए, यही आंख से गलत देखा, यही कान से गलत सुना, यही जिह्वा से गलत खाया, गलत बोले, हाँ असत्य वाणी का वाणी वचन बोले, तो ये दुरुपयोग हुआ। और वो दुरुपयोग से क्या होता है, वो परमात्मा के प्रति निष्ठा का भाव जो है वो आपने कम कर दिया, ये दुरुपयोग किया और उसका फल तो मिलता ही है। उसका फल क्या मिलता है हमारे जीवन में, तो बोले अशांत, सब होने के बावजूद भी अशांति, सब कुछ होता है और शांति होती है, तो समझ लेना कि ये शरीर मन बुद्धि के संघात का कहीं दुरुपयोग हुआ है। सब कुछ होते हुए भी अप्रसन्नता, सब कुछ होते हुए भी अपूर्णता का भाव, तो ये सब दुरुपयोग। और सदुपयोग क्या है, तो मात्र परमात्मा को जानने की एक थोड़ी सी भी आपने चेष्टा की ना, और कुछ नहीं, कोई मंदिर में जाके, कोई तीर्थस्थल में जाके दर्शन भी कर लिया, एक हाथ भी ऐसे आपके जुड़ गए तो बहुत हो गया, इतना ही चाहिए परमात्मा को, बाकी का वो संभाल लेते हैं। ये क्या है, आप प्लेन में बैठते हैं फिर क्या करते हैं, टिकट आपने ली है, सब कुछ किया है, पर प्लेन चलाना पड़ता है आपको, प्लेन चलाना नहीं पड़ता है आपको, क्या करना है, टिकट लेके सिर्फ बैठने का कर्तव्य प्रयत्न करना है। प्लेन तो उड़ाने वाला और उसमें बहुत कष्ट है, अगर आप भीतर जाएंगे, ये जो कॉकपिट जो होता है, वो जो प्लेन की जो कैबिन होती है जहां पायलट बैठा करते हैं, वो कैबिन बराबर बंद रखी जाती है, वो आपको दिखाई नहीं जाती, अगर वो आप देख लेना तो प्लेन से उतर जाएंगे कि इतने सारे बटन है, इतनी सारी स्विचेस है, कोई एक गलती से कुछ दबा दिया या ये भूल गया या ये पायलट सो गए तो क्या होगा मेरा, ऐसा सोच के आप
टिकट के पैसे लिए बिना उतर जाते कि भाई ये आपको भेंट दे दिया, इसमें हम ट्रैवल नहीं कर सकते। देखिए ये संघात, ये पैकेट इतना बराबर दे दिया है परमात्मा ने, अगर उसकी आंतरिक विधियां आप देखने जाए तो दिमाग काम नहीं करेगा। और इसका अगर सदुपयोग किया वो परमात्मा को जानने के लिए, कहने का तात्पर्य क्या है कि आप सिर्फ थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए तो जैसे वो पायलट ही टेक्स ओवर एवरीथिंग, आप थोड़ा प्रयत्न उनको जानने का कीजिए, इच्छा भी कीजिए, परमात्मा कोई न कोई स्वरूप से आपके संस्कार के मुताबिक, आपके कर्म के मुताबिक, आपके आदतों के मुताबिक परमात्मा तत्त्व रूप लेकर यहाँ विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए 33 करोड़ देवता क्यों कहा गया है, 33 करोड़ वृत्तियां है, 33 करोड़ भक्ति की वृत्तियां है, जिससे भक्त या मनुष्य परमात्मा को पुकारता है। और परमात्मा को जिस रूप में शुद्ध भाव से सत्व गुण जब चल रहा है तब पुकारा। देखिए कौन सी बात का संयोजन होना चाहिए, एक तो सत्व गुण है, परमात्मा के लिए प्यास है और पुकारा, तो क्या हो गया, वो आपका सत्व गुण आपके कर्म फल के मुताबिक का, और वो परमात्मा की प्यास लगी तो एक रूप खड़ा हो गया, तो दूसरे को भी लगी, तीसरे को भी लगी। ऐसे ये जो अनेक देव जो दिख रहे हैं वो हमारी ही वृत्ति के कारण परमात्मा ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। तो ये सदुपयोग अगर किया तो ही ये मनुष्य जन्म का साफल्य है, और किसी में ये साफल्य नहीं है। तो यहाँ काशी नरेश के उद्यान में जो पुष्प उगाए जाते थे, ये गंधर्व राज को हुआ कि ये जो पुष्प है, हालांकि ये पुष्प वो परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की पूजा के लिए ही लेना चाहते थे, पर रास्ता गलत था। रास्ता कौन सा गलत था, तो उनकी जो अंतर्ध्यान होने की जो शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी उनका उन्होंने दुरुपयोग किया, और अदृश्य रूप में रोज काशी नरेश के बागान में जाके पुष्प को ले लेते थे और चले जाते थे। ऐसा बहुत समय से चलता रहा, तो काशी नरेश राजा को हुआ कि ये गलत है, पुष्प पूजा के लिए लिए जाते हैं तो मैं तो ना नहीं बोलने वाला, मैं मेरे घर में चढ़ाऊं या कोई अपने देव को जाके चढ़ाए, सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, ये तो परमात्मा को ही पहुंचने वाला है, पर पूछ लिया होगा तो अच्छा होता, ये कौन ले रहा है पुष्प पता भी नहीं लगता। तो बहुत सोचने के बाद उन्हें एक विचार आया कि शिव निर्माल्य, शिव निर्माल्य यानी शिव को चढ़ाए गए पुष्प या बिल्व पत्र है, वो जो बिल्व पत्र है वो शिव निर्माल्य जो है वो पूरे बागान में वो बिछा देते हैं। और उन्हें विश्वास था कि ये शिव निर्माल्य के ऊपर से तो कोई जा नहीं सकता, और गलती से अगर चला भी गया तो उनके पास जो अंतर ध्यान होने की शक्ति या विद्या या कोई भी प्रकार की विद्या है वो अपने आप चली जाएगी, और वो ये जो कोई ले रहा है, ये पुष्प की चोरी हो रही है, वो मैं जान सकूंगा कि ये कौन है। देखिए हम कई बार ये एक एक्सक्यूज ले लेते हैं कि भाई मैं गलत तो कर रहा हूं पर परमात्मा के लिए ही ना, वो भी चलता नहीं है। अगर परमात्मा के लिए ही करना है तो गलत क्यों करना, परमात्मा के लिए आप करेंगे तो कुछ भी करने की शक्ति और क्षमता आप में आ ही जाएगी, उनके लिए तो गलत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उलट सुलट कर देते हैं, गलत को भी सही बनाने वाले परमात्मा है, आप डरते क्यों है। भाई मेरा उद्देश्य तो भक्ति का ही था, मेरा उद्देश्य तो प्रवचन सुनने का ही था, थोड़ा झूठ बोल दिया, थोड़ा गलत किया तो क्या मिलता, तो वही है ना। अगर गलत होता तो काशी नरेश जी को विचार नहीं आता कि मैं शिव निर्माल्य डाल दूं और इन्हें पकड़ूं, ये सही ही होता था, और ये स्तोत्र की रचना भी नहीं होती थी। देखिए आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं भक्त हूं, मैं वेदांत का श्रोता हूं, मैं शिष्य हूं, आप रिप्रेजेंट वो परमात्मा को कर रहे हैं, कोई गुरु को कर रहे हैं, तो नाम बिगड़ेगा किसका। हाँ अगर आप गलत करके भी वेदांत में श्रवण में आए, गलत करके भी सत्संग किया, तो नाम किसका बिगड़ेगा कि अरे भाई आपके भगवान ऐसे हैं, आपके गुरु ऐसे हैं कि ये भक्तों को झूठ बोलना पड़ता है आपको नाम लेने के लिए। तो जिसका नाम लेने के लिए झूठ बोलना पड़ता है वो भी झूठा ही होगा। पर परमात्मा कैसा है, सत्यम परम धीमहि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये परमात्मा तो सत्य स्वरूप है, डरते क्यों हो। और इसीलिए
ज्ञानियों की स्तुति करने के लिए ही तैतरीय उपनिषद ने उद्धृत किया है, न बिभेति कुतश्चनेति। हाँ, वो परमात्मा को जान लेने के बाद वो डरता नहीं है किसी से। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि असत्य नहीं करता है। हाँ, असत्य करके नहीं डरना वो अलग लोग हैं समाज में, वो हम देखते हैं, रोज पेपर्स में पढ़ते हैं कि असत्य करके नहीं डरते, पर ऐसी अभयता हमारे शास्त्र में नहीं की गई है। सत्य करना और नहीं डरना, ये कुछ खुमारी की बात हुई और ये परमात्मा की प्राप्ति की बात हुई। परमात्मा हमारी कसौटी यहीं से शुरू करते हैं कि सत्य करना, मेरे लिए कुछ करने के लिए तुझे झूठा बोलना पड़े तो ये बंद, परमात्मा दरवाजा ही बंद।

उसका होगा असत्य का अनावरण होगा। तो ये शिव निर्माल्य के ऊपर से वो तो आए अदृश्य रूप में गंधर्व राज, शिव निर्माल्य को भूल से उन्होंने पार कर लिया। जैसे ही शिव निर्माल्य को पार कर लिया, बिल्वपत्र के ऊपर से वो गए, उड़ गए, तो क्या हुआ, तो उनकी जो तिरोभूत होने की शक्ति थी वो चली गई और तुरंत वो शरीर के गंधर्व के आकार में आ गए। ऐसे आ जाने पर वो पकड़े गए। ये गलत उपयोग करने का, फूल ले रहे थे परमात्मा के लिए ही तो सत्य बोल के भी ले सकते थे, इतना हम समझ जाएंगे तो भी ठीक है। परमार्थ को बहाना मत बनाइए, भगवान को बहाना मत बनाइए गलत करने के लिए। इतना जानिए कि वो परम स्वराज राजाधिराज वो परमात्मा है और उनको जानने के लिए आप निकले हैं, आप उनके बनने के लिए निकले हैं, तो फिर डर कैसा। हाँ, एक बार हृदय खोल दीजिए, एक बार सत्य के रास्ते पे चले जाइए तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप जिसको जानने के लिए जा रहे हैं वो परम सत्य है और अब तक नहीं मिला। उसका कारण ही है कि उनको जानने के भ्रम में हम गलत करते हैं, गलत कारण दे रहे हैं कि भाई ये मैं झूठा कर रहा हूं क्योंकि मैं परमात्मा के रास्ते पे जाना चाहता हूं। ये दो चीज बन नहीं सकती। हिम्मत करके एक बार सत्यनिष्ठ हो जाइए, जैसे मीराबाई सत्यनिष्ठ, कृष्ण की भक्ति है तो है, मुझे मूर्ति को नहीं छोड़ा। जब शादी करके आए, अपने ससुराल में आए, तो भी कृष्ण भगवान की मूर्ति ऐसी ही रखी थी, पास ही रखी थी और उनके साथ ही वो रहते थे। दंभ नहीं किया कि नहीं मैं कोई भगवान में नहीं मानती और भीतर से पूजा किया थी, नहीं, हिम्मत है साथ में ही रखा और परिणाम आपको पता है। तुकाराम, नरसिंह मेहता, ये सब साधुओं के, सब संतों के जीवन देखिए, सत्य को नहीं छोड़ा, परमात्मा को नहीं छोड़ा और हमें मंदिर में जाने से भी शर्म लगती है, पैर छूने में भी शर्म लगती है, अनजाने में भी हम देख लेते हैं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा जिससे मुझे शर्माना है या सिर छुपाना है। और मॉडर्न, हम कौन से किस आदमी को मॉडर्न समझते हैं, जो ऐसा कुछ नहीं करता वो मॉडर्न है। और हमें वो भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये दोनों नहीं हो सकते। परमात्मा के पास जाने के लिए कोई भी शर्म, संकोच, कोई भी प्रकार का अंतस उसके साथ मत रखिए। क्यों? तैतरीय उपनिषद ने भी कहा है, यदा ये वैश्य एतस्मिन् उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवति। क्या होगा भाई, अंतर रखा, अंतर याने परमात्मा के बारे में उनका बहाना बना के भी झूठ किया ना, तो भी वो अंतर हो गया। अंतर याने उपनिषद जो अंतर की बात कर रहे हैं वो क्या है कि वो परमात्मा निज अंतर गुहा में ही है, वो परमात्मा मैं ही हूं, ऐसा न समझते हुए वो परमात्मा मेरे बाहर है, ऐसा अंतर रखा। पर वो अंतर तो बहुत दूर की बात रही, हम तो असत्य से ही अंतर शुरू कर देते हैं, परमात्मा से अंतस रखते हैं। तो ऐसे अंतर रखने वाले को क्या होता है, अत तस्य भयम् भवति, ये शास्त्र ने कह दिया। हजार बार लाख बार मूर्ति को हमने प्रणाम किया तो भी भय से मुक्त हुए हम। भाई याने भीतर से एक डर बना रहता है, एक खौफ बना रहता है, हम ऐसे ही है, दिखता नहीं है, ये ट्रेमरिंग दिखता नहीं है, पर वी आर ट्रेमरिंग फ्रॉम विद इन, ये डर खड़ा ही हुआ है। अंततः सबसे आप डरना बंद कर देंगे, अपने आप से डर लगता है, अपने आप के विचार ऊपर भी हमें कोई विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि असत्य का सहारा है। खाद्य जो है, पानी जो है, वो असत्य दिया है, जानने निकले हैं सत्य को, तो ये भय होगा। और अंतिम भय है मृत्यु का, और उससे भी बड़ा भय है अगली योनि का, जन्म का। जन्म के भय के तो बारे में हमने सोचा ही नहीं, अब तक हम मृत्यु के बारे में भयान्वित हो रहे थे, आपने हमारा भय बढ़ा दिया, अब अगले जन्म की भी चिंता करवाई। अब तक तो मृत्यु तक ही हमारा भय सीमित था, पर अगले जन्म की ही चिंता करनी चाहिए और उसकी व्यवस्था के लिए ये पुनर्जन्म पुनर्मरण ये व्यवस्था से छूटने के लिए ही ये सत्संग करना चाहिए, पर सत्य का पंथ लेना। तो गंधर्व राज पकड़े गए। अब क्या हुआ, देखिए, कर्म तो गलत हुआ।

0: गलती से हुआ, पर परिणाम क्या आया? परिणाम तो अच्छा ही आया। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रीत्यर्थ था, इसलिए। तो परिणाम क्या हुआ? गंधर्व राज पुष्पदंत जी जो थे उन्हें बहुत ही पछतावा हुआ, पर भीतर से वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो भी शिव भक्त ही थे। ये जो पुष्प ले जाते थे वो शिव जी के लिए ही ले जाते थे, पर उनके मन में ये शिवजी कौन है, शिवजी की महिमा क्या है, वो मन में अंदर अंदर विचार आते रहते थे, पर वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। क्यों अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे? उन्हें डर लग रहा था कि ब्रह्मा जी भी, जिनकी महिमा का वर्णन करने में अशक्त रह गए, ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि, विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, वो कमल में नीचे जा रहे हैं, उनका अंतिम अंत जो है, शुरुआत जो है, स्रोत जो है, वो ढूंढने के लिए गए, करोड़ों वर्षों तक गए, और ब्रह्मा जी ऐसे ही अपने स्रोत को, कारण को बिना जाने उन्हें वापस आ जाना पड़ा। क्या हुआ? वो उनके कारण को नहीं जान सके, तो पुष्पदंत जी को मन में हो रहा था कि ये जो मेरा कारण है, जो परमात्मा है, उसे ब्रह्मा जी भी अगर नहीं जान सके तो मैं कैसे जान सकूं। पर उन्हें ऐसा था कि हे परमात्मा, मैं आपको कितना जानता हूँ वो आप नहीं जब तक जानेंगे, तब तक मैं जहाँ हूँ वहां से मेरी साधना आगे कैसे बढ़ेगी। और ये हम सब साधक, सब शिष्य का कर्तव्य है कि आपकी साधना जहाँ तक हुई हो, आप जहाँ तक आगे विचार में गए हैं, समय समय पर आपके गुरुजनों को, आपके संतों को बताते रहिए कि भाई यहाँ तक आए हैं, यहाँ अब बंद हो गया है, अब आगे क्या करने का, हाँ वो आप बताते रहिए, अभिव्यक्त हो जाइए, उनमें शर्म, उसमें असत्य नहीं रखना। ये जो असत्य की बात आई ना, उसमें असत्य यानी क्या कि मुझे तो सब आ गया है, सब बराबर है, गुरुजी आप जो कुछ बोलते हैं मुझे सब कुछ समझ में आता है, आप जो भी विषय पे बोलेंगे, आई नो एवरीथिंग, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। गुरु को भी पता है कि इसको कितना समझ में आया, क्योंकि जिसको खरेखर समझ में आता है वो बोलता नहीं है कि सब समझ में आ गया। तो ये जो मुझे समझ में आ गया वो बोलना ही आपका सर्टिफिकेट दे देता है। तो करना क्या है कि जो भी आपके मन में है वो अभिव्यक्त परमात्मा के प्रति, तो अभिव्यक्त आपको करना ही है। पुष्पदंत जो गंधर्व राज थे उन्हें मन में ऐसा हो रहा था हमेशा कि मैं कहाँ तक आया हूँ, मैं कहाँ तक वो महिमा को प्राप्त हुआ हूँ, ये अगर मेरे परमात्मा नहीं जानेंगे तो मैं जहाँ हूँ परमात्मा का पार तो नहीं पाया जा सकता, तो मैं जहाँ हूँ वो परमात्मा को मालूम पड़े तो ही उनका अंतिम छोर है, वहां तक जाने की चेष्टा मैं कर सकता हूँ। और वो यही राह देखते थे कि ऐसा क्या हो जाए कि परमात्मा की स्तुति मैं कर सकूं, क्योंकि देखिए ये ऐसा उनको क्यों होने लगा, हमें क्यों ऐसा नहीं होता है कि स्तोत्र की रचना करें। देखिए सबके स्वभाव के मुताबिक है होता है, रुचिनाम वैचित्र्यात्, उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही कहा है कि सबकी अपनी अपनी रुचि अलग होती है, कर्म के संस्कार के अनुसार, पाप पुण्य के जो कर्म के फल है उसके अनुसार संस्कार है, रुचि है, वो सबकी अलग अलग होती है। और वो रुचि के अनुसार ये कौन थे? तो बोले गंधर्व राज थे, और गंधर्व राज थे इसीलिए शब्द कला में निपुण थे, साहित्य कला में निपुण थे, गान कला में निपुण थे। शब्द उनके लिए अशक्य बात नहीं थी, बहुत सरल बात थी। हमें कोई स्तोत्र की रचना अगर करने का कुछ बोला जाए तो हम क्या करेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, पर ये गंधर्व राज थे इसलिए वो बात उनके लिए बहुत सरल थी। इसीलिए हमेशा याद रखना, एक और बात ध्यान रखिए कि आपका जो स्वभाव है, आपकी जो आदतें हैं, आपके जो गुण हैं, उसी के मुताबिक परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करना, अनुकरण नहीं करना। श्रवण से परमात्मा के स्वभाव को जान लीजिए कि वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, आपके भीतर ही वो है, जब भी मिलेगा अस्ति इति एव उपलब्धव्यः। हाँ, कठोपनिषद में बता ही दिया है कि जैसे भी जब भी मिलेगा अस्ति प्रत्यय से परमात्मा है, अहम वृत्ति से ही मिलेगा, ये उसका एंड रिजल्ट है। पर अगर आपके संस्कार सिर्फ बौद्धिक है, आपको मैं कहूं कि लिफ्ट नहीं चल रही है, आप यहां से नीचे पैदल चले जाइए और नीचे आप खड़े रहे और मेरे साथ बात करने की भी आपकी शक्ति नहीं है, इतने आप कमजोर हैं, आप कोई भी प्रकार के नहीं, कोई श्रम ही नहीं ले सकते। आप बोले कि आप मुझे।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉटर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाई डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 1.

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Nandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Hari Om. Pujya Maharaj ke punya charan mein vandan. Bahut hi anand ki baat hai. Aur aaj hamare beech mein prata pravachan ke madhyam se Taittiriya Upanishad dwara Pujya Maharaj ji pravachan karenge. सभी बड़े आनंद से इनके प्रवचन का लाभ लेंगे. आप सबकी तरफ से हम माल्यार्पण की विधि करेंगे और महाराज जी को वंदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे.

0: भक्ति शक्ति संहिता वात्सल्यमयी माता वैष्णवी बहनों आप सर्व बंधु, तो तैतरीय उपनिषद के माध्यम से चर्चा करनी है। सर्वप्रथम मंगलाचरण, किसी भी कार्य से पूर्व में मंगलाचरण करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है तो संकेत किया गया, मंगल शब्द का अर्थ ही होता है मगम पापम दुरितम लुनातीति मंगलम। जो हमारी बाधाओं को, हमारी विघ्नों को, हमारी दुरितों को नष्ट करता है, ऐसी स्तुति का नाम है मंगल। उस मंगल का आचरण करना ही मंगलाचरण कहलाता। तो यहां पर सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया उसको देखें, उसके बाद उपनिषद संबंधी चर्चा की जाए। तो यहां पर मंगलाचरण करते हुए संकेत किया गया, सर्वा आशा ध्वान्त निर्मुक्तम सर्वासा भास्करम परम चिदाकाशवतंसम तम सद्गुरुम प्रणमाम्यहम। यहां संकेत किया कि चिदाकाश अवतंसम तम गुरुम प्रणामि अहम्। तो संकेत किया चिदाकाश अवतंसम, जो चिदाकाश, अब आकाश शब्द का अर्थ तो सभी जानते हैं, आकाश क्या है तो अवकाश का नाम ही आकाश है, या शून्यता का नाम ही अवकाश, या दूसरे शब्दों में कहें तो यूं कह सकते हैं सर्व विशेषों से रहित का नाम ही है आकाश। तो सर्व विशेषों से रहित जो आकाश, फिर ऐसा संकेत किया, अथवा दूसरी तरफ से संकेत करते हैं आसमंता काशते प्रकाशते इति आकाश, जो सम्यक रूप से प्रकाशित हो रहा है उसी का नाम है आकाश। अब जो प्रकाशित हो रहा है तो प्रकाशित होने वाला कोई जड़ नहीं होगा, क्या होगा, चैतन्य होगा, इसलिए नाम रखा चिदाकाश। लेकिन वो चिदाकाश कैसा है तो संकेत किया सर्व विशेषों से रहे, सर्व विशेषों से रहित जो चिदाकाश हो। तो सर्व विशेषों से रहित कौन है, तो इसलिए शास्त्र ने शब्द दिया परब्रह्म। तो परब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ आप लोग जानते हो, जो व्यापक तत्व है, वृह धातु जो है वर्धन अर्थ में है, तो जो व्यापक है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत रूप है, ऐसा जो ब्रह्म, और वो ब्रह्म भी कैसा है, पर का मतलब है जहां पर कोई भी विशेष का संबंध नहीं, सारे विशेषों से जो रहित है उसका नाम ही है परब्रह्म। तो परब्रह्म कहें या चिदाकाश कहें, तो ऐसा जो चिदाकाश, ऐसा जो परब्रह्म, वह चिदाकाशी अवतंसम, क्या हुआ है तो कहने लगे वही जो है अवतरित हुआ है। कैसा हुआ है, अवतरित हुआ है, अर्थात अवतरित हुआ है माने उसने विशेषों को स्वीकार किया। वही जो निर्विशेष है, वही निर्विशेष जो है विशेष वाला बना हुआ है, ऐसा जो निर्विशेष से विशेष होने वाला जो चिदाकाश या परब्रह्म, वही क्या है तो कहने लगे वो और कोई नहीं है तम गुरु, वही क्या है, कहा गुरु, ऐसे उस गुरु को अहम प्रणामी, मैं नमस्कार करता। अब कैसा गुरु है तो संकेत कर दिया, इसलिए आप आचार्य शंकर की स्तुति में बोलते हो गुरु रात में दी। गुरु क्या है तो संकेत क्या किया, आत्मा इति गुरु, आत्मा ही क्या है गुरु। क्यों आत्मा गुरु है, और फिर आगे मूर्ति भेद विभाग ने करके कर दिया उसको। आत्मा को गुरु क्यों कहा, तो गुरु शब्द का अर्थ भी आप लोग सुनते रहते हो, ग्री ग्रात अर्थ में धातु से गुरु शब्द बनता, जो निग्रण कर लेता है या निवारण कर देता है उसका नाम क्या है गुरु। तो गु और रू को लेकर के ही कहा जाता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो प्रकाश अंधकार का निवारण कर दे, जो प्रकाश हमारे विशेषों को हटा दे, विशेषों से रहित कर दे, उसे क्या कहते हैं गुरु। तो विशेष बनकर के विशेषों का राहित, क्योंकि नियम है कंटके नैव कंटकः कीर्णः, कांटे से ही कांटा निकलता। लेकिन वहीं पर एक वैशिष्ट्य और है, जिस कांटे को निकाला गया वो कांटा क्या था, कष्ट देने वाला, दुख देने वाला, इसलिए उस दुख की निवृत्ति के लिए, कष्ट के निवृत्ति के लिए उस कांटे को हमने निकाला। लेकिन कांटे को निकाला किसके द्वारा, तो कहा कांटे के द्वारा। तो कहने लगे जिस कांटे के द्वारा निकाला उसे उपयोगी मान लो, वो तो उपादेय हो गया, तो उसको क्या सुरक्षित रखते। कांटे से कांटा निकाल करके और उस कांटे को भी फेंक देते हो, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर संकेत करते हैं कि जिस विशेष को लेकर के, जिन विशेषों की निवृत्ति की गई, तो जिस विशेष से निवृत्ति की गई है ऐसे विशेष का भी त्याग कर देना। जैसे आप देखते हो अग्नि प्रज्वलित होती है तो किसको लेकर के होती, ईंधन को लेकर, लकड़ी को लेकर, और लकड़ी को लेकर के जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो कैसी हुई, विशेष अग्नि हो गई। लेकिन विशेष अग्नि ने क्या किया, जो लकड़ी आदि उपाधि विशेष थे उनको भस्म कर दिया, और उनको भस्म करके क्या वो अग्नि शेष रह गई, जो विशेष अग्नि थी वह अग्नि भी शांत हो जाती, उन विशेषों को शांत करके वह विशेष भी शांत हो जाती, फिर जो सामान्य अग्नि है वह अग्नि व्यापक रहती है। तो इसी प्रकार से यहां भी संकेत करते हैं, यहां जो चिदाकाश करके जिसका संकेत किया और फिर इसे विशेष रूप से अपतन शब्द से कह दिया, तो वह प्रकाश क्या करता है, हमारे उन उपाधिकृत विशेषों को समाप्त करके और स्वयं भी समाप्त हो जाता। इसलिए आचार्य शंकर क्या कहते हैं, गुरु नैव शिष्यः, न गुरु है और न शिष्य। लेकिन जब तक कंटक है और दुख दे रहा है तब तक उसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ऐसा जो गुरु, जो कैसा है, जो है तो चिदाकाश, लेकिन चिदाकाश होकर के जो क्या है, एक विशेष रूप में मूर्त के रूप में जो हमारे यहां एक उपाधि को समन्वित होकर के, उपहित होकर के है, ऐसे उस गुरु को। तो इससे सिद्ध हो गया कि गुरु शब्द का तात्पर्य हुआ कि जो स्वयं आत्मज्ञ है, ऐसे उस आत्मज्ञ गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। ये संकेत की, किस लिए नमस्कार करते हो, तो उसी को संकेत ऊपर कर दिया। वो गुरु क्या है, तो सर्वासा भास्कर, संपूर्ण आशाओं को, संपूर्ण कामनाओं को प्रकाशित करने वाला, उसके बगैर कोई कामना प्रकाशित भी नहीं। तो सारी कामनाओं को प्रकाशित करता है और प्रकाशित करके क्या करता है, ध्वान्तम, उन सारी आशाओं को प्रकाशित करते हुए उन आशाओं को मने क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उनका अंत कर देता। और उनका अंत जब कर देता है तो क्या होता है, संपूर्ण आशाओं से मुक्ति मिल जाती, संपूर्ण कष्टों से मुक्ति मिल जाती। तो ऐसे जो गुरु हैं जो हमारी समस्त आशाओं को, समस्त कामनाओं को निवृत्त करने वाले, उन्हें प्रकाशित करते हुए और निवृत्त करने वाले हैं, और जो कैसे हैं तो वास्तव में जिनका स्वरूप यथार्थ में चिदाकाश रूप है, लेकिन वो उनकी निवृत्ति के लिए उपाधि को ग्रहण करने वाले, ऐसे उन गुरु को मैं नमस्कार करता। ये मंगलाचरण किया, और इस मंगलाचरण को करके ये तो ऋषि प्रणीत मंगलाचरण हो गया। अब वैदिक मंगलाचरण करने जा रहे, वैदिक मंगलाचरण करते हुए संकेत करते, जिसे शांति पाठ शब्द करके कहते हो, तो वो शांति पाठ यहां क्या किया, तो ओम सन्नो मित्र शम वरुण सन्नो भवत्तर्यम सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इत्यादि करके और संकेत कर, और फिर मैंने वक्ता श्रोता की रक्षा की प्रार्थना। तो अब यहां पर संकेत किया ओम, तो ओम जो है इसके दो रूप है, एक तो रूढ़ी ओम है और एक यौगिक ओम है, योग रूप। रूढ़ी ओम जिसमें उकार बना करके अनुस्वार रखते हैं वह रूढ़ी ओम बोला जाता है। रूढ़ी का मतलब छांदस माने वेद, जिसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता, न परिवर्तन न संवर्धन कुछ भी नहीं किया जा सकता, अर्थात जो समस्त क्रियाकलापों से रहित है और जिसे ब्रह्म का प्रतीक माना गया। क्या माना गया? प्रतीक। कहीं कहीं पर तो उसे ब्रह्म ही कह दिया, क्यों? प्रणवो ही निर्दिष्टो ब्रह्म। प्रणव क्या है? कहा ब्रह्म का अत्यंत समीपी है, ब्रह्म को लक्षित करने वाला है। तो ऐसा जो ओ, तो प्रणव शब्द का भी अर्थ कर दिया गया, प्रणव किसे कहते? तो प्राणान नामयति प्राणमयति इति प्रणव, जो हमारे प्राणों को नम्रीभूज बना दे, जो हमारे प्राणों को झुका दे, उसका नाम क्या है? प्रणव। ओम के उच्चारण से हमारे प्राण कमजोर होते, नम्र हो जाते हैं, और ये नियम है। उपनिषदों में आप लोग सुनते रहते हो, इंद्रियों के विवाद में सर्वश्रेष्ठता किसकी सिद्ध हुई? तो प्राण की। तो प्राण के बल पर ही सारा कार्य होता है, चाहे मन हो, बुद्धि हो, चाहे इंद्रिय आदि हो, इन सब की क्रिया किस पर निर्भर है? प्राण शक्ति पर। तो ऐसे प्राणों को झुका देने वाला कौन है? का ओम। और जब उनको झुका देता है तो हमारा मन भी नम्रीभूत हो जाता है, और बुद्धि में भी नम्रता आ जाती है, इंद्रियों में भी नम्रता आ जाती है, और जब इनमें नम्रता आ जाती है, इनके विनम्री भाव में ही क्या होता है? तो आप कहते हो कि निर्मल मन, तो निर्मलता क्या? इसका विनम्र होना, उसमें ही इस तत्व का साक्षात्कार होता, उस प्रकाश का जो है साक्षात्कार होता, या प्रकाश का अपरोक्ष होता। जब तक ये मन हमारा नम्रीभूत नहीं होता तब तक प्रकाश का साक्षात्कार नहीं होता। तो इसलिए यहां पर जो है ओम शब्द को लिया। अब यौगिक ओम क्या है? तो उसके अंतर्गत श्रुतियों में संकेत किया, अकार उकार मकार, पहले उसकी तीन मात्राओं को संकेत किया। मात्रा शब्द का अर्थ ही होता है मियते इति मात्रा, जिसके द्वारा माप किया जाए, जिसके द्वारा नापा जाए, मान किया जाए, उसका नाम क्या है? मात्रा। तो अब जो है अकार मात्रा, उकार मात्रा और मकार मात्रा, अकार उकार को लेकर के संगीता होने के कारण संधि हो गई, और संधि हुई तो हार गुणा सूत्र से गुण संधि हो गई तो बन गया ओ, है ना। और नियम है कि अजीनम परेण संयोज्यम, जो व्यंजन स्वर से हीन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पूर्व स्वर वर्ण में संयुक्त हो जाते हैं। और ये भी नियम है कि बगैर स्वर के किसी व्यंजन का उच्चारण भी संभव नहीं। तो इस प्रकार से मकार जो है वहां संयुक्त हो गया तो बन गया ओम। अब ये ओम जो है योगिक योग, ये हमें क्या बतलाता, तो मात्राओं की कल्पना की। तो उस छांदस ओम से ही इस योगिक ओम को ग्रहण किया, और जब योगिक योम को ग्रहण किया तब वह योगिक योम क्यों ग्रहण किया गया, तो उसका तात्पर्य बतलाया जिसे गायत्री मंत्र में संकेत किया ओम, और आगे संकेत किया भूर्भुव श्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करके कहा। तो वहां कहा कि ओम, अब ओम से क्या समझे, तो वहां पर ओम को समझने के लिए, ओम में एक व्यवहारिकता लाने के लिए, व्यवहारोपयोगी बनाने के लिए, अर्थात उसका अवबोध करने के लिए, उस ओम से ही उनकी मात्राओं से क्या किया, व्याहृति। और व्याहृति का मतलब ही है व्यवहार के लिए, व्याहृति निकली। तो व्याहृति क्या निकली, तो अकार मात्रा से भू नाम की व्याहृति, उकार मात्रा से भुवा नाम की व्याहृति, और मकार मात्रा से स्व नाम की व्याहृति। ये तीन व्याहृतियां उससे तीन मात्राओं से निकाली। तो ये सब क्या है, ये माना ही तो है, मापना ही तो है। अब जब इसको लिया गया तो कहा इसका तात्पर्य क्या हुआ, तब उसके तात्पर्य को बतलाया, भू शब्द जो है, जब भू को हम धातु अर्थ में लेते हैं, मूल अर्थ में ग्रहण करते हैं, तो संकेत किया गया भुवादयो धात्वा सत्ता वाची क्रिया वाचिनश्च। भू नाम की जो धातु मूल प्रकृति वो क्या है, का द्व्यर्थक है, उसके दो अर्थ है। एक तो उसका अर्थ है सत्ता और दूसरा अर्थ है क्रिया। जब हमने भू धातु को सत्तार्थक ग्रहण किया और सत्ता अर्थ ग्रहण करके भू जो शब्द बना पद बना, आगे बतलाएंगे इसमें शिक्षा में, तो जब जो है हमने उस भू शब्द को जो भू धातु से ही निर्मित है और उसको ग्रहण किया, तो भू शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो भू शब्द का अर्थ हुआ भू माने पृथ्वी। भू शब्द का अर्थ क्या हुआ, भू माने पृथ्वी। क्योंकि सत्ता अर्थ है तो सत्तार्थ का ही अर्थ होगा, क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते, जो कारण के गुण हैं वही कहां आते, कारण में। स्वर्ण जैसे आभूषणों का कारण है, तो स्वर्ण के अंदर जो तेजसत्व है, स्वर्ण के अंतर्गत जो पीतत्व आदि है, वो गुण कहां आएगा, उन आभूषणों में भी आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहां भी संकेत किया। अब जो है भू शब्द का अर्थ सत्ता अर्थ लेकर के हमने भू शब्द का अर्थ किया भू माने पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है, तो व्यावहारिक रूप से एक सत्तार रूप है, उसका उसकी सत्ता है। तो इसलिए सत्ता, और सत्ता किसकी होती, तो ये संकेत करती, क्या करती है कि जो सत्य पदार्थ, यहां पृथ्वी व्यावहारिक सत्य है, लेकिन यहां पर संकेत लेना है आगे पारमार्थ। तो अब जो सत्तार्थक पदार्थ होता है वो किसका संकेत करता, सत्य पदार्थ का संकेत करता। तो इससे भू शब्द से क्या निकला, भू शब्द का अर्थ हुआ सत पदार्थ। भू शब्द का क्या अर्थ हुआ, सत पदार्थ। अब आगे शब्द आया उकार से, हमने भुवा नाम की व्याहृति ली। भुव शब्द का अर्थ क्या है, तो भावयत इति भुव। अब ये क्रियार्थक हो गया, माने जहां पर भावना की जाए, जहां पर विचार किया जाए, और विचार किस में होगा, भावना कहां होगी, तो जड़ में तो होगी नहीं, मन में भी नहीं होगी, लेकिन मन भी करता तादात्म्य, तो किस पदार्थ में होगी, चैतन्य में होगी, प्रकाश में होगी, जड़ता में भावना नहीं। चेतन पदार्थ में ही भावना संभव हो सकती है, जड़ पदार्थ में कोई भावना नहीं होती। तो अब जो है भुव शब्द जब क्रियार्थक लिया तो भुव शब्द कैसा हुआ, भावनार्थक है ना, विचारार्थक, और विचारार्थक हुआ तो वो विचार तो होता है चित्त प्रधान तत्व से। तो इसका मतलब क्या हुआ, भुव शब्द ने संकेत किया माने चित्त पदार्थ, भू ने संकेत किया सत पदार्थ, भुव ने संकेत किया चित्त पदार्थ। और इस प्रकार से जब सत और चित्त ये दो शब्द हमारे सामने दो व्याहृतियों से आए, तीसरी व्याहृति जो है कही गई स्व। अब स्व शब्द जो है शब्द अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते, कहीं स्व शब्द का ज्ञाति अर्थ है, कहीं स्व शब्द का आनंद अर्थ है, और इस प्रकार से स्व शब्द के कहीं पर जो है अपना अर्थ भी लिया जाता। तो इस प्रकार से उसके अर्थ हैं, लेकिन कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए, तो आप जानते हो संगति के अनुसार ही अर्थ को ग्रहण किया जाए। अब यहां पर हम अपना आदि अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो उतनी अच्छी संगति नहीं बैठती, लेकिन आनंद शब्द जो है सत चित के साथ में संगत होता, तो स्व शब्द का अर्थ क्या लिया, आनंद। तो सत चित और आनंद, सच्च चिच्च आनंदश्च इति सच्चिदानंद, ये द्वंद समास कर देने पर फिर क्या घटित होता है, सच्चिदानंद, तब अर्थ किया जाता है गायत्री मंत्र में ओम सच्चिदानंद परमात्मा, ऐसा लिखा देखते आप। तो ये सच्चिदानंद कहां से आ गया, ओम को सच्चिदानंद कैसे कहा, तो उसकी व्याहृतियों ने इस यौगिक रूप से इस चीज को बतलाया। तो ओम क्या है, सच्चिदानंद परमात्मा। अब इतना बतलाने की बात फिर आगे चले तो आगे क्या कहा, तत् तत् शब्द का प्रयोग किया, भूर्भुवस्व तत्। तत् क्या है, तो हिंदी में जिसे ओह कहते, तत् तद जस्तु आदि हो के तद भी बनता, तो ओह और ओह जब संकेत करते तो ओह माने कौन, तो उसका नाम ले देते, नाम क्या है, एक संज्ञा है। अब जहां पर संज्ञा का प्रयोग न किया जाए और उसके बदले में किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हो, सर्वनाम। तो वैसे ही यहां पर जो सच्चिदानंद संज्ञा दी गई उसका प्रयोग न करके और क्या प्रयोग कर दिया, तत्। तत् माने ओह, कौन, कहने लगे वही सच्चिदानंद परमात्मा, कौन, जिस ओम को जिसको संकेत किया, वही सच्चिदानंद परमात्मा तत् शब्द से हो गया। क्या है, तो आगे संकेत किया सवितुः, वो सच्चिदानंद परमात्मा, ऐसा जब कहते हैं तो साकांक्ष पद है, माने क्या, तो उसके लिए कहा सवितुः, वही सवितुः है, सवितुः षष्ठी व्यक्ति का रूप, तो सवितुः सवित्री आप कहते हो सूर्य को, माने वही क्या है, सूर्य है, सविता है, तो सविता है से क्या मिलेगा, तो ऋग्वेद के भाष्य में संकेत किया सविता प्रसविता इत्यर्थ, ये सविता क्या है, कहने लगे यही सारे संसार का प्रसव करने वाला, सारे संसार की सृष्टि करने वाला सृष्टा कौन है, तो कहा सविता, इसलिए उसका नाम क्या रखा, कहा वही सच्चिदानंद रूप जो परमात्मा, वही क्या है, सारी सृष्टि का सृष्टा है। यथले आप जानते हो जहां पंचभूतों को लेकर के पंचीकरण प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए और संसार की सृष्टि को माना, वही पर श्रुतियों के अंतर्गत सामवेदी आदि श्रुतियों के अंतर्गत छांदोग में चर्चा आई, तत् तेजो अब अन्ना दया सृजा, क्या संकेत किया, वहां आदित्य के प्रसंग को लेकर के चर्चा की, तत् माने उसी से, अर्थात किससे, उसी आदित्य से, उसी सूर्य से, क्या हुआ, तेजो अब अन आदि, तो तेज माने अग्नि, अब शब्द का रूप है तो माने जल, और अन्न पृथ्वी का वाचक है, वहां माने उसी से तेज अग्नि और जल और पृथ्वी, ये तीन तत्व पैदा हुए, और तीन तत्व पैदा हो करके त्रिविधीकरण को लेकर इनको सूक्ष्मता के कारण जो है वायु और आकाश को वहां कथन नहीं किया और वहां त्रिविधीकरण को लेकर के सृष्टि को स्वीकार कर लिया। कहा? श्रुति के अंदर। और भौगोलिक प्रक्रिया के अनुसार, वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार भी हमारे यहां चर्चा की जाती है कि सूर्य से टुकड़ा टूटा और वो नीचे आया, और नीचे आया तो नीचे आकर के फिर उसमें ठंडक आई और ठंडक हादी आई, कहीं पर गर्म रहा कोई भाग ठंडा रहा तो सिकुड़न भी पैदा हो गई, तो कहीं दर्रे बन गए, झीलें बन गई, कहीं पर भाग उठ गया तो पर्वत बन गया, कहीं समतल भूमि हो गई, ये सारा हुआ, ये निर्माण हुआ। और फिर उस पर वनस्पति आदि हो गई और वनस्पति औषधि होकर के ये सारे प्राणी सारी सृष्टि हो गई। ऐसा वैज्ञानिक भौगोलिकों का भी मत है। तो इस प्रकार से वहां सृष्टि, इसलिए यहां संकेत किया कि तत् सवितु, उसे सवितु को प्रतीक रूप से लिया। लेकिन कौन है मूल में? तो ओम सच्चिदानंद परमा।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Shvetashvatara Upanishad, 6th mantra hai.

तत्र संजायते मनः। अब ये प्रसंग चला श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरा अध्याय का छठा मंत्र है। इस मंत्र में क्या बताया जा रहा है, ख्याल है? इस मंत्र में बताया जा रहा है ध्यान कहाँ करना चाहिए। ये ध्यान का प्रकरण है, ख्याल है? हाँ, ध्यान का प्रकरण है। पहले मंत्र था झुंझानो प्रथम मनः। पहले मंत्र पांचवा अध्याय के देखो, आर्या दूसरा अध्याय के पांचवा मंत्र देखो। झुंझानः प्रथम मनः तत्वाय सविता धियः। आया कि नहीं? जोड़ो, क्या जोड़े? प्रथम मनः झुंझानः। कस्मै झुंझानः? तत्वाय, मन को जोड़ो। हे सविता देव, सविता भी ईश्वर के नाम है, याद रखना, परमात्मा का नाम है। हे परमात्मन, मेरा मन को तत्व के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, तत्व प्राप्ति के लिए परमात्मा से जोड़ो। जोड़ना क्या है? टूटा हुआ है क्या? टूटा हुआ व्यक्ति जोड़ा जाता है। तो जोड़ने का मतलब